सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 58 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा

संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वाकई में अगर देखा जाए तो भक्ति भाव इतना पावन और इतना उदात्त है, इतना ऊंचा है कि इतनी सहजता से, इतनी सरलता से अपने इष्ट के प्रति इस कदर एकाकार कर देता है ये भाव कि फिर वहां जाके कहीं कोई दूसरे के होने का एहसास ही नहीं होता है। ऐसा साधारणीकरण भक्त और भगवान के बीच। और इसकी जो मूल में बात है वो है विशुद्ध प्रेम, समर्पित प्रेम। कैसा प्रेम कि सूरदास की कारी कामर चढ़े न दूजो रंग। तो ऐसा जब प्रेम के रंग में ये तन मन आत्मा प्राण ये सब जब रंग जाते हैं तो भक्ति भाव बहुत ही निर्मल होकर अपने आराध्य के प्रति वह सरलता से बहती हुई गंगा जहाँ की फिर अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन रिश्ता कैसा कि प्रभु जी अगर तुम चंदन हो तो फिर मैं पानी, अलग करना कितना मुश्किल है। देखिए बहुत ही सुंदर भजन।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे अभी देशभक्ति परक रचना को संवेद स्वरों में। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे हरी हरन, अनूप जलोटा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर। साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन बंधु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार। आलेख और स्वर लिली खन्ना का है।
1: गद्य मानव हृदय की भावनाओं की नहीं, मानव मस्तिष्क के विचारों की अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसी प्रतिभा का नाम है जिन्होंने उपन्यास, निबंध, आलोचना और इतिहास लेखन में अभूतपूर्व मौलिकता का परिचय दिया है। आपने रूढ़ मान्यताओं को नवीन दृष्टि से परखा। परंपरा और रूढ़ी के बीच में उन्होंने एक स्पष्ट अंतर अनुभव किया। कई मान्यताएं खंडित हुईं, कई नई बनी। आपकी मान्यता थी कि परंपरा तब तक जीवित है जब तक समाज के लिए उसकी उपादेयता है। समाज के लिए जब वह भार स्वरूप हो जाती है तब फिर वह परंपरा नहीं रूढ़ी बन जाती है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र उनके साहित्य के पटल पर अंकित है। आपने स्पष्ट लिखा है, साधना अकेले की साधना ही नहीं हो सकती। समस्त जगत के सुख दुख और हास रोदन आपको प्रभावित करेंगे ही। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित ना होता होगा। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरों का अपकार कर रहा है वह भी बुद्धिहीन है। सुख दुख तो मन के विकल्प हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमेशा ही व्यक्ति मनुष्य की अपेक्षा समष्टि मनुष्य को महत्व दिया। आपके साहित्य का लक्ष्य भी मनुष्य ही है। ऐसा मनुष्य जिसके हित समाज के हित से जुड़े हैं, जिसकी पीड़ाएं समाज की पीड़ाएं हैं। प्रकृति से जीवन का पाठ ग्रहण करने की दिशा को द्विवेदी जी ने इस प्रकार बताया है कि केवल अपने लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए भी जीना, आंधियों और लू के बीच पलकर अपनी वीरता का परिचय देना है और सूखी शिलाओं से भी रस प्राप्त करना है और छाया प्रदान करना है। यही लोक सेवा है। सभी परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना यही समत योग है। वही वीर है, वही परोपकारी है, वही योगी है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र द्विवेदी के साहित्य में अंकित है।
0: आप अभी सुन रहे थे चिंतन बिंदु क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार। आलेख और स्वर लीली खन्ना का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीत बद्ध प्रसारण। गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर और साथियों का है। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे सुबह 9 बजे हिंदी वार्ताक्रम में शिवम चौहान की वार्ता, विषय होगा मानव जीवन और संगीत। सुबह 9:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम आवो हवा। आज इस कार्यक्रम में मोनिका विजय जानकारी देंगी बढ़ती आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। आज इस कार्यक्रम में मंदिर श्री द्वारकाधीश मथुरा के बारे में जानकारी लेंगे।

दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में मृदुला नंदा प्रस्तुत करेंगी कुछ मल्हार गीत। सुबह 9:30 पर सुनिएगा स्वास्थ्य कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर क्रम में आज डॉक्टर बांके बिहारी गर्ग से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा टाइफाइड कारण लक्षण और निदान। फोन इन कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे आप सुनेंगे हेलो आकाशवाणी।

सैफ अली अग्रवाल से रश्मि शर्मा की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा ऐसे रचाएं हाथों में मेहंदी। साथ ही कुछ घरेलू टिप्स और फिल्म संगीत भी बहनें इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी।

NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 2:30 का। संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में योग अपनाए स्वस्थ रहें विषय से संबंधित आज की बात की जाएगी। और संध्या 6:15 पर वृह साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा लोक कथा में शीर्षक मेहनत को फल प्रस्तुत करेंगे यदुनंदन गोस्वामी। संध्या वंदन का प्रसारण समय रहेगा संध्या 6:30 का। शाम 6:50 पर कार्यक्रम हेलो किसानवाणी प्रसारित किया जाएगा।

बहनें कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी वृक्षारोपण और आयुष्मान जन आरोग्य योजना विषय से संबंधित। साथ ही इसी कार्यक्रम में आयना क्रम में

0: श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा शाम 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात SMS दोपहर आप सुन सकेंगे 12 बजे से। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत उस्ताद इकबाल अहमद खां का गाया ख्याल गायन, और प्रातः आप सुनेंगे 7 बजे पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें, आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में विजय सिंह नौलखा से जानकारी। कीटनाशी प्रयोग एवं सावधानियां।
1: किसान भाइयों, आज हम आपको कीटनाशकों का प्रयोग एवं सावधानियां विषय पर जानकारी देंगे। कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अतः कीटनाशक को फसलों में कीट नियंत्रण के लिए काम में लेने से पहले, काम में लेते समय तथा काम में लेने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कीटनाशी को काम में लेने से पहले रखे जाने वाली सावधानियों पर। सबसे पहले कीट को पहचानें या कीट विशेषज्ञ से पहचान करवा लें, वह पता लगाएं कि वास्तव में फसल को कितना नुकसान हुआ है। जब आर्थिक हानि स्तर का नुकसान पहुंच जावे तभी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। कीट नियंत्रण की सही जानकारी हेतु कीट विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। सिफारिश की गई कीटनाशी का ही प्रयोग करें। कीटनाशी के डिब्बे पर तिकोने आकार में लाल या पीले, नीले या हरे रंग का निशान लगा होता है। जहां तक हो लाल निशान वाली कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल रंग वाली से कम नुकसान वाली पीले रंग की व उससे कम नीले रंग की और अंत में सबसे कम नुकसान हरे रंग के तिकोने निशान वाली कीटनाशियों से होता है। कीटनाशी खरीदते समय उसके बनाने व काम में लेने की अंतिम तारीख अवश्य देखें। डिब्बों के साथ ऊपर लेबल या सूचना पत्रक आता है, इसे भी पढ़ लें व दिए गए निर्देशों का पालन करें। जगह जगह समूह में कीटनाशी हो तो एक के बाद दूसरी काम में लेवें। मिश्रण कभी न बनाएं। रिसने वाले या टूटा फूटा स्प्रेयर कभी इस्तेमाल न करें। कीटनाशकों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें और जरूरी है कि ताले में रखें। अब बात करते हैं कीटनाशी मिलाते व छिड़कते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक प्रकार से शरीर की सुरक्षा हेतु कपड़े पहने, हाथों में रबर के दस्ताने अवश्य पहने। बहुत जहरीले कीटनाशी छिड़कते समय अकेले न रहें। कीटनाशी को पानी में मिलाते समय किसी बच्चे या आदमी को पास में खड़ा न होने दें व मिलाने के लिए लकड़ी का डंडा या लोहे की सरिया काम में लें। भरते समय

0: का प्रयोग करें और घोल को इधर उधर न गिरने दें। लेबल व सूचना पत्रक को पुनः पढ़ें व निर्देशों का पालन करें। कीटनाशी छिड़कने वाले यंत्र की जांच कर लें कि कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। त्वचा, खास रूप से मुंह और आंखों का कीटनाशी से बचाव रखें। द्रव्य वाली कीटनाशियों को सावधानी से पंप में डालें। चूर्ण रूप वाली कीटनाशियों के कण आदि मुंह में न गिरें व गलती से गिर भी जाएं तो तुरंत साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह से धो लें। कीटनाशी मिलाते एवं छिड़कते समय खाना पीना या धूम्रपान करना सख्त मना होता है, इसका पालन करें। यह भी निश्चित कर लें कि कीटनाशी ठीक मात्रा में पानी में मिल गई है या नहीं। कीटनाशी या उसका धुआं श्वसन क्रिया द्वारा अंदर न जाने दें। हवा के विरुद्ध दिशा में चलकर कीटनाशी का छिड़काव न करें। छिड़काव सदा कमर के नीचे करें ताकि कीटनाशक सांस के साथ शरीर के अंदर न जाए। मुंह से हवा लगाकर बंद हुए नोजल आदि की सफाई कदापि न करें। यह सुनिश्चित कर लें कि छिड़काव करने वाली जगह पर तौलिया, साबुन व पानी उपलब्ध हो तथा कपड़ों का भी एक जोड़ा अलग से रखा होना चाहिए। एक दिन में जितनी जरूरत हो उतना ही कीटनाशी काम में लें। फूल आने पर फसलों पर बहुत कम मात्रा में छिड़काव तथा सायंकाल में ही इसका छिड़काव करें ताकि मधुमक्खियों को बचाया जा सके। कभी भी कीटनाशी खेत में एकांत में न रखें व घर पर भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशी काम में लेते समय जहर का प्रभाव यदि शरीर पर होता है तो तुरंत काम बंद कर दें और डॉक्टर के पास जाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस सबसे कुछ ही देर में।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रोयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसूचितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वातन्त्र्य दिवसात् पूर्वमेव आईएसआई इत्येतत् समर्थितं शहजाद भट्टी आतंकिजालं ध्वस्तीकृतम्। सः सूचितवान् यत् प्रशासनेन द्विशताधिकान् सदस्यान् गृहीत्वा तस्य विध्वंसात्मकाक्रमणानां योजनाः अपि विफलीकृताः। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे सः उक्तवान् यत् सुरक्षाबलैः चतुर्दशराज्याणां विभिन्नेषु स्थलेषु समन्विताभियानानि प्रचालितानि यैः एतत् जालं ध्वस्तीकृतम्। एतत् भारतस्य आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति। सुरक्षा संस्थाभिः अस्य मासस्य द्वादशदिनांके राज्यारक्षिबलैः सह तत्क्षणं गुप्तसूचनानाम् आदानप्रदानस्य प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा शहजाद भट्टीजालेन सम्बद्धानां विध्वंसात्मकप्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयम् अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखण्डे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां चतुर्विंशति दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्य प्रशासनेन चतुर्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमवर्षस्य जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमण्डलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयम् उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन चतुर्दशाधिक द्विसहस्रतमवर्षादारभ्य झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्तिपरीक्षाणां व्यापकपरीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूषकुमारः उक्तवान् यत् एकादशतः त्रयोदशपर्यन्तानां जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अति विशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म नागिन के इस गीत को। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार हेमंत दाने। और आप साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

और संगीत दिया था हुसनलाल भगतराम ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। अब ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे सुरैया की आवाज़ में फिल्म बड़ी बहन के इस गीत को। ख्वाजा जलाल आबादी ने इस गीत को शब्दों में ढाला था।

हरियाला सावन ढोल बजाता आया, ढिंचक तक मन की मोर नचाता आया।

2 बीघा ज़मीन। आपने सुना अभी इस फिल्म के गीत को, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना गीतकार शैलेंद्र की थी, संगीत सलिल चौधरी का। और अब साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी सुरेंद्र कौर की आवाज़ में फिल्म नदिया के पार का ये गीत। मोती बाई ने गीत को लिखा था, ये मोती बीए ने, और संगीत सी रामचंद्र का। साथियों अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

ये गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, फिल्म थी हमारी याद आएगी का ये गीत था, केदारनाथ शर्मा का संगीत गीत था और स्नेहल भटकर की संगीत। आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही यहीं पर संपन्न होता है साथियों। अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में।

0: बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारम्भ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में खेल संस्कृति में व्यापक बदलाव आया है और सरकार ने खेलों के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित किया है। हर गांव में खेल मैदान, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिलों में स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माफिया प्रवृत्ति युवा शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। शिक्षा, नकल, नशा, खेल या किसी भी क्षेत्र में सक्रिय माफिया युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। सरकार ऐसे माफियाओं की पूरी संपत्ति जब्त कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। श्री योगी ने कहा कि अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और अगले एक महीने में 500 और पदक विजेताओं को नौकरी देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही नई युवा नीति लाएगी और हर जिले में रोजगार जोन विकसित किए जाएंगे। श्री योगी ने निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया।
3: ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। खेल इको सिस्टम जब विकसित होगा, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने ही उसको आज तय किया है, निजी एकेडमी कोई चलाएगा तो निजी एकेडमी के लिए हम सरकार से भी उसको सहायता प्रदान कर।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति

0: कुंतल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहाँ अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई। धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप 1 सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं, अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा, उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय टीम में प्रदेश के 8 चेहरे शामिल किए गए हैं। बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को महासचिव और गोरखपुर से संगीता यादव को मंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपए का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
3: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान DBT के माध्यम से देगी।
0: सहारनपुर में कल से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से प्रदेश भर के PRD जवानों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करेंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित PRD जवान सम्मेलन में मुख्यमंत्री 3,000 रुपए वर्दी भत्ता की धनराशि PRD जवानों के बैंक खाते में भेजेंगे। इसके साथ ही PRD स्वयं सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित कर मुख्यमंत्री PRD परिवार कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान श्री योगी लखनऊ में बनने वाले बहुमंजिला PRD बैरक का शिलान्यास भी करेंगे।

0: नागपंचमी का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश जिलों में आज भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। उधर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की पार्टी के नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

साथियों, ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आओ आज जो है हम सब सुने ये बहुत ही बढ़िया सी जानकारी, ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। आज प्रस्तुत है इसकी कड़ी संख्या 5वीं। आलेख नरेंद्र आत्रेय का है और प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है। तो फिर आओ आनंद लें इस कार्यक्रम को सुन के।

ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे रूपक माला के अंतर्गत सुनिए आकाशवाणी मथुरा वृंदावन पर तैयार रूपक श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। लेखक हैं नरेंद्र आत्रे, संयोजक श्री कृष्ण शरद, प्रस्तुतकर्ता राम किशोर त्रिपाठी।

0: मथुरा का नाम विश्व भर में अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली ये कंचन की नगरी जन जन की आस्था का केंद्र है।
1: तीन लोक से न्यारी इस नगरी में भगवत भक्तों के परम आश्रय जन मन रंजन वे 16 कलाओं के अवतार आज भी अपनी समग्र रूप राशि समेटे हुए श्री द्वारकाधीश मंदिर के भव्य भवन में दिव्य स्वरूप में विराजित हैं।
0: यमुना की श्याम जलधारा पर अर्धचंद्र के समान उदित होती इस परम पुण्य स्थली मथुरा के वासियों तथा विश्व के कोने कोने से पधारे असंख्य भक्तों की दिनचर्या श्री द्वारिकाधीश के चरण कमलों की दर्शन लालसा से ही अनुप्राणित रहती है।

0: स्नान करते हुए सोया करते हैं और प्रातः ही भगवान की मंगला का दर्शन करने की कामना से गोपाल का स्मरण करते हुए भोर में ही जाग जाया करते हैं।
1: पुण्य सलिला यमुना में स्नान कर सुंदर पवित्र वस्त्रों को धारण कर निर्मल मन से मंदिर प्रांगण की ओर लपकते हुए बढ़ते हैं।
0: नगर की बीथियों में से भजन गाते हुए नर नारियों के टोल, राजमार्ग पर प्रवाहमान जन समूह, नगर के लगभग मध्य में अस्कुंडा घाट के समक्ष स्थित इस द्वारकाधीश मंदिर के विशाल प्रांगण में आते चले जाते हैं।

0: मनुष्यों की तो बात ही क्या, सामने यमुना के कूल कछारों में दूर तक फैले हरे भरे फल फूलों से लदे वनों में निर्भय निवास करने वाले सुख सारिकाएं, मोर पपीहे भोर होते ही बंदी जनों के समान मधुर गायन करते हुए प्रभु को प्रातः काल होने की सूचना देते हैं।
1: यमुना जल में विहार करने वाले हंस बतख आदि जल पक्षी अपनी मनोहारी जल क्रीड़ाओं के मध्य कड़न करते हुए उनके स्वर में स्वर मिलाकर मानो प्रभु को जगाते हुए कहते हैं,
0: यहाँ जगमोहन व प्रांगण की तो सीमाएं हैं, परंतु दर्शनार्थी असीम हैं। जो जहाँ समा सकता है वहाँ घुसने और बढ़ने की होड़ में है, चप्पे चप्पे पर लोग छाए हैं।
1: स्त्री पुरुष अपने पद धन आयु की मर्यादा को भूलकर जगमोहन के खंभों तक पर चढ़े हैं। कौन कहां किस तरह खड़ा हुआ है इसका बोध नहीं है, होश है तो केवल इतना कि प्रभु के दर्शन हो जाएं।
0: मंगला के समय दर्शनार्थियों के मुख से निकले ये विधि निषेध वाक्य,
1: मंगला मुखी सदा सुखी
0: तथा
1: जो करे मंगला कभी न रहे कंगला,
0: उनके मनोभावों को पूर्णतः व्यक्त करते हैं।
1: मंदिर खुलने में अभी कुछ पलों की देर है, सारा मंदिर जय घोषों से गूंज रहा है।

0: अब श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला आरती होने ही वाली है। घंटा बज चुका है। सारे भक्तों की चेतना प्रभु विग्रह केंद्रित है। ये लीजिए, प्रज्वलित द्वीप आरती लिए मुखिया जी उपस्थित हैं और श्री विग्रह की आरती उतार रहे हैं।
1: दर्शनार्थियों की दर्शन लालसा देखते ही बनती है। इस मंगलमय झांकी को वे अपने नेत्रों में बसा लेना चाहते हैं। उनकी सारी चेष्टाएं, उनकी कातरता, उनकी आतुरता इसकी गवाह है।
0: सभी ने अपने हाथ ऊंचे करके उनमें सुंदर सुगंधित पुष्प उठा रखे हैं। मुखिया जी की आरती करने की मुद्रा का अनुकरण करते हुए सारे भक्तों के ऊंचे उठे हाथ मानो प्रभु की पुष्प आरती उतार रहे हैं। और ये आरती समाप्त होते ही सभी ने अपने पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए हैं और बाल गोपाल की असंख्य बलैया लेते हुए अपने को धन्य अनुभव कर रहे हैं। जय घोषों से दिगंत गूंज रहा है।
1: जनमानस के आकर्षण के केंद्र इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। अब से लगभग 189 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1871 आषाढ़ कृष्ण अष्टमी 1814 ईस्वी जुलाई को इसका निर्माण कार्य पूर्ण होकर पाटोत्सव संपन्न हुआ था।
0: इसके संबंध में तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर F.S. ग्राउज के मथुरा एड्रेस्टिक मेमोयर में तथा कांकरौली का इतिहास में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है। मथुरा के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी ने श्री द्वारिकाधीश जी संक्षिप्त इतिहास

0: नामक पुस्तक में रोचक जानकारी उपलब्ध कराई है।
1: इस मंदिर का निर्माण श्री गोकुलदास पारीख ने कराया था। वे नागर वैश्य जाति के थे और बड़ौदा राज्य के अंतर्गत सीनोर नामक स्थान के निवासी थे। अपनी प्रतिभा के बल पर ये ग्वालियर के श्री दौलत राय सिंधिया के कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए।
0: उन्होंने श्री सिंधिया के आदेश से उज्जैन के उद्दंड नागाओं को परास्त किया और 20-22 करोड़ रुपए की धनराशि, जिसमें अद्भुत हीरे, पन्ने, माणिक, पुखराज, नीलम जैसे रत्नों की प्रचुरता थी, विजय में प्राप्त की। श्री सिंधिया ने नागाओं की संपत्ति को ग्रहण करने से इनकार कर दिया।
1: श्री गोकुलदास पारीख ने भी उस संपत्ति से एक सुंदर मंदिर बनवाने का दृढ़ संकल्प किया। जब वे लश्कर में मंदिर निर्माण के लिए भूमि खुदवा रहे थे, तो खुदाई में सभी धनों के धन श्री द्वारिकाधीश स्वयं प्राप्त हो गए।

0: स्वयं प्राप्त हो गए।
1: इस श्री विग्रह ने पारिक जी को स्वप्न में ब्रज भूमि चलने को कहा और सिंधिया ने भी नागाओं से प्राप्त धनराशि को ब्रज में ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
0: ब्रज में पधारने पर श्री द्वारकाधीश को गोरपाड़ा स्थित बीकानेरी धर्मशाला मथुरा में विराजित किया गया। ये स्थान आज भी जूना मंदिर अर्थात पुराना मंदिर के नाम से जाना जाता है।
1: इसके बाद ठाकुर जी ने वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त की तो पारिक जी ने मथुरा वृंदावन के मध्य भतरौन नामक स्थान पर सुंदर चौकोर मंदिर बनवाकर विराजमान किया। वहाँ सुंदर बाग भी लगवाया, वो आज भी द्वारिकाधीश का बाग कहलाता है।
0: वृंदावन का वो स्थान उन दिनों बड़ा ही दुर्गम और असुरक्षित था, अतः श्री गोकुलदास जी ने श्री विग्रह को पुनः मथुरा में लाने का निश्चय किया और इस वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया।
1: मथुरा के मुख्य बाजार में दोनों ओर सुंदर गौखों से सज्जित मंदिर ब्रज की आधुनिक वास्तुकला का एक दर्शनीय नमूना है।
0: ये चौकोर सिंहासन के समान ऊंचे भूखंड पर स्थित है। इसकी लंबाई 180 फीट तथा चौड़ाई 170 फीट है। सुसज्जित मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है। इस द्वार से मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने के लिए काफी चौड़ी चौड़ी 16 सीढ़ियां हैं। प्रांगण में तीन ओर बनी 6 सीढ़ियों से मंदिर के विशाल मंडप में पहुंचा जा सकता है।
1: श्री द्वारिकाधीश मंदिर का मुख्य भाग रथ की आकृति का है, जिसे वास्तविकता प्रदान करने के लिए आजकल तो मंडप के सामने के द्वार पर विधिवत दो घोड़े भी लगा दिए गए हैं।
0: मंदिर का जगमोहन मंडप अथवा छत्र के आकार का है। ये बड़ा ही भव्य तथा दिव्य है। ऊपर के भाग में गोल गुंबद के ऊपर स्वर्ण का शिखर है और उसके पश्चिम में उतार चढ़ाव के तीन शिखर हैं, जिनके नीचे श्री द्वारिकाधीश का श्री विग्रह विराजमान है।
1: मंदिर का मंडप बहुत चित्ताकर्षक है। ये कलात्मक खंभों पर टिका है। इसमें श्रीमद् भागवत पुराण तथा अन्य ग्रंथों में वर्णित भगवान श्री कृष्ण तथा गोप गोपियों की मनोहारी लीलाओं के चित्र बने हैं।
0: मंदिर के निर्माण में उस समय 20,000 रुपया लगा था। इसके अतिरिक्त ठाकुर जी के वस्त्राभूषण, सेवा पूजा, साज श्रृंगार और उत्सव समारोहों के निर्बाध संपन्न होते रहने की दृष्टि से जायदाद तथा जमींदारी खरीदने पर कई लाख रुपयों की लागत आई थी।
1: बहुत सारा धन प्रभु की चरण चौकी के नीचे भी रखवा दिया गया। इस अपूर्व राजसी वैभव के स्वामी श्री द्वारिकाधीश जी राजाधिराज के नाम से जाने जाते हैं।
0: यहाँ पीठिका के सहारे खड़े रूप में बनाई गई श्यामवर्णी अनुपम छटा वाली श्री द्वारिकाधीश की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है।
1: चारों भुजाओं में परंपरागत चार आयुध हैं, किंतु उनका क्रम परंपरागत नहीं है। दाहिने श्री हस्तों में ऊपर गदा, नीचे शंख, बाएं श्री हस्तों में ऊपर पद्म तथा नीचे चक्र बने हैं।
0: मस्तक पर किरीट है। सुंदर भ्रकुट के नीचे नेत्र सीधे तथा उभार लिए हुए हैं। प्रकट में यहाँ बल्लभ कुल परंपरा के अनुसार स्वर्ण नेत्र धारण कराए गए हैं, जो कटाक्ष कहलाते हैं।
1: इनकी बांकी चितवन बड़ी अद्भुत है। कंठ में कौस्तुभ मणि है, गले में घुटनों तक की वनमाला है, कंधे पर यज्ञोपवीत है, श्री अंग पर पटका व कच्छा है तथा अंग विभिन्न आभूषणों से अलंकृत हैं।
0: मंदिर में श्री द्वारिकाधीश जी से कुछ दूर बाईं ओर श्वेत संगमरमर की श्री स्वामिनी जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है।
1: पहले मंदिर में प्रांगण वाले पूर्व दिशा द्वार के ऊपर खिड़की में श्वेत गरुण जी की मूर्ति विराजमान थी, जो आजकल मानिक चौक स्थित आदि वाराह मंदिर में प्रतिष्ठित है।
0: पारिख जी के समय में श्री द्वारिकाधीश को नारायण विष्णु के रूप में पूजा जाता था। नारदीय पंचरात्र आगम के अनुसार पूजा संपन्न हुआ करती थी।
1: वैशाख शुक्ल सप्तमी संवत 1930 को पारिख जी के मुनीम सेठ मनीराम के पुत्र सेठ लक्ष्मीचंद के वंशजों ने दस्तावेज लिखकर यह मंदिर काकरौली के तिलकायत गोस्वामी श्री 108 गिरधर लाल जी महाराज को भेंट कर दिया।
0: बल्लभ कुलीय श्री गोस्वामी जी ने 27 दिन में इस मंदिर की सेवा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। उनके नियमों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1930 से राजाधिराज की सेवा पुष्ट मार्ग की रीत से की जाने लगी।
1: गर्भगृह के उत्तर दिशा में गादी जी के दर्शन हैं। यहाँ गोस्वामी गिरधर लाल जी महाराज एवं श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज की छवि विराजमान है।
0: बल्लभ कुल अनुयायियों के लिए ये मंदिर अमूल्य निधि है। गुरु हरि ब्रजभूमि श्री यमुना और श्री कृष्ण लीलाओं का एक साथ

0: दर्शन कर वे अमोघ आनंद का अनुभव करते हैं।
1: वल्लभ कुल में प्रभु की सेवा तथा चरणावेंद्र का स्मरण दो ही तत्व प्रधान हैं। इस संबंध में मंदिर के छोटे मुखिया श्री विनोद शंकर जी ने बताया,
2: प्रभु आनंद चंद श्री कृष्ण चंद्र प्रभु उनकी अष्टयाम सेवा आठ प्रकार की झांकियाँ होती हैं। उसमें मंगला की झांकी मंगलमुखी झांकी है। मंगला की झांकी की प्रधानता है क्योंकि मंगला में सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन कर मुखारविंद के दर्शन कर नित्य कर्म प्रारंभ करते हैं। सकुशल सब दिन पूर्ण हो सकुशल पूर्ण हो। तत्पश्चात श्रृंगार की झांकी है, प्रभु श्री द्वारकाधीश प्रभु के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात गोपी वल्लभ जिसमें कि गौरस का पान करके प्रभु गाय चराने के लिए जाती है। उसके पश्चात राजभोग की झांकी होती है, राजभोग में राजसी भक्तों के कारण राजसी राजभोग आरोपते हैं। उसके पश्चात उत्थापन की झांकी जिसमें कि वन में ग्वाल बालों के साथ में कीड़ा करते हुए उत्थापन की झांकी होती। संध्या आरती झांकी उसके बाद आई, उसमें भगवान श्री कृष्णचंद वन से लौट करके नंदालय के द्वार पर आ जाते हैं। संध्या आरती ये नंदालय में यशोदा जी के द्वारा होती है। तत्पश्चात शयन में भगवान फूलों का श्रृंगार धारण करते हैं ऋतु अनुसार, और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देकर के द्वारकेश प्रभु शयनागार में जाते हैं। तत्पश्चात आश्रय का पद का गायन करके सभी राजसी सात्विक तामसी भक्त श्री दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो के द्वारा भगवान श्री प्रभु को समर्पित करते हैं।
1: प्रभु के दर्शन को झांकी कहते हैं। हर झांकी में अष्टछाप कवियों के ललित पदों का गायन होता है।

0: श्री द्वारिकाधीश मंदिर में प्रतिदिन समयबद्ध 8 झांकियां होती हैं। प्रातः 6:30 बजे दर्शन खुलते हैं। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल भोग और राजभोग ये 4 प्रातःकालीन दर्शन हैं, तथा उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन 4 सायंकालीन हैं। ग्रीष्मकाल में सायं 6:30 बजे और शीतकाल में सायं 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है।
1: प्रातः सर्वप्रथम मंगला भोग की तैयारी होती है। बाल भोग में मक्खन, मिश्री, ठौर, दूध, मलाई, मेवा, दही व ऋतु के अनुरूप मठरी आदि धरे जाते हैं। प्रभु के 12 मास उष्ण जल से स्नान, अभ्यंग आदि संपन्न होते हैं।
0: श्रृंगार में 6 ऋतुओं के अनुरूप सुंदर और कीमती वस्त्र और आभूषण धराए जाते हैं। अक्षय तृतीया से श्रावण मास तक मोती का श्रृंगार होता है।
1: पूरे फागुन मास में सोने का श्रृंगार किया जाता है। सर्वाधिक श्रृंगार शीत ऋतु में होता है। इसमें हीरा, माणिक, पन्ना, फिरोजा, नीलम आदि के जड़ाऊ आभूषण धारण कराए जाते हैं।
0: ग्वाल भोग में प्रभु ग्वाल बालों के साथ दहिया आरोगते हैं। राजभोग में सकड़ी और अनसकड़ी सामग्री प्रभु के समक्ष धरी जाती है।
1: सकड़ी में रोटी, भात, दाल, कढ़ी, पापड़, बाटी, सब्जी, खीर, सिकरन आदि रहते हैं।
0: अनसकड़ी में रबड़ी, बोहन थार, घी, बूरा, इमरती, जलेबी, बेसन के लड्डू, चून के लड्डू, सादा पूड़ी, कचौड़ी, थपड़ी, खासा, सकल पारे आदि रहते हैं। हर भोग के बाद जोड़े में प्रभु के समक्ष पीड़ा धराए जाते हैं।
1: भंडार में अपरस में बना प्रसाद ही ठाकुर जी के समक्ष धरा जाता है, बाहर का नहीं। दूध की बर्फी यहाँ का मुख्य प्रसाद है।
0: दर्शनार्थी रसीद कटवाकर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मंगला में माखन मिश्री तथा शयन में मोहन भोग मंदिर की ओर से नित्य दर्शनार्थियों को बांटा जाता है।
1: प्रसाद की सामग्री को तैयार करते समय

0: अथवा प्रभु के समक्ष धरते समय नाम से संबोधित नहीं किया जाता। कहीं ऐसा न हो कि नाम के साथ ही मन में उसका ध्यान आने से मानसिक रूप से जूठा न हो जाए।
1: अतः उन्हें इस प्रकार संबोधित करते हैं, ढालने की सामग्री जैसे पोहनथाल, छाटने की सामग्री जैसे बूंदी, घेरा की सामग्री जैसे जलेबी, इमरती, घेवर आदि। दूध को सादा, रबड़ी को गाढ़ा तथा खीर को हाड़ा कहा जाता है।
0: सायंकाल उत्थापन के दर्शन वन में ही होते हैं। भोग में वन के फल फूल ही धरे जाते हैं। सायं गोचारण कर लौटने पर माँ यशोदा संध्या आरती उतारती हैं।

0: शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं।
1: ठाकुर जी की दैनिक चार आरती होती हैं, मंगला व राजभोग तथा संध्या व शयन आरती। ये माल की आरती कहलाती हैं। आरती में तीन माल या खंड रहते हैं।
0: सबसे ऊपर चार बत्ती का, दूसरा सात बत्ती का और तीसरा दस बत्ती का। इस प्रकार ये 21 बत्तियों की आरती होती है।
1: भगवान का बाल रूप है, उनको बत्तियों का ताप व दमक अनुकूल रहे, इसलिए ऋतु के अनुरूप बत्तियां घटती व बढ़ती रहती हैं।
0: देवोत्थान एकादशी से होली के डोल तक तीन माल की अर्थात 21 बत्तियों की आरती,
1: डोल के दूसरे दिन से वैशाख शुक्ल द्वितीया तक रथ यात्रा से देवोत्थान तक दो माल की अर्थात 11 बत्तियों की आरती,
0: अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक एक माल की अर्थात 4 बत्तियों की आरती होती है।
1: विशेष पर्व व उत्सवों पर रजत थाल में दीवट रखकर ठाकुर जी की आरती की जाती है।
0: ये मोती की आरती कही जाती है। थाल में अवसर के अनुरूप कुमकुम, हल्दी और गुलाल से माढ़ना माढ़ा जाता है, जैसे श्रावण मास में हिंडोला, रथ यात्रा में रथ, फूल बंगला में बंगला आदि।
1: तीन तथा दो माल की आरती के समय 8 बत्तियों से तथा एक माल की आरती के काल में 4 बत्तियों से आरती होती है।
0: छोटे पर्वों पर राजभोग में मोती की आरती तथा बड़े पर्वों पर चारों आरती मोती की ही होती हैं।
1: सप्ताह में 7 वार तथा 9 त्योहार वाले इस ब्रज क्षेत्र में श्री द्वारिकाधीश मंदिर में वर्ष भर महोत्सवों की धूम रहती है।
0: श्रावण मास में पड़ने वाले सोने और चांदी के कलात्मक हिंडोले विश्व विख्यात हैं। श्रावण मास में बनने वाली घटाओं को देखने देश के कोने कोने से यात्रीगण आया करते हैं।
1: हरियाली तीज से श्रावण मास पर्यंत हिंडोलों व घटाओं का क्रम जारी रहता है। जिस रंग की घटा होती है मंदिर को उसी रंग के वस्त्रों, झाड़ फानूसों व विद्युत दीपों से अलंकृत किया जाता है।
0: गुलाबी घटा वाले दिन जयपुर के रानी बाग के अनुरूप फव्वारों की सज्जा होती है और काली घटा जिसमें घन गर्जना के साथ सौदामिनी दमकती है, इंद्र धनुष दिखाई देता है।
1: तारागण व चंद्रदेव लुकाछिपी का खेल खेलते हैं, अपनी अपूर्व छटा से अपार भीड़ आकर्षित करती है।

0: वरिकाधीश मंदिर में नियमित रूप से आने वाले ये हैं कुछ भक्त जन।
1: मैं सुदर्शन कुमार खत्री पिछले लगभग 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे चाचा उससे पहले 25-30 साल से आते थे, उनके साथ साथ मैं भी आने लगा। यहाँ मुझे आके बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत शांति मिलती है। मक्खन मिश्री का अति उत्तम प्रसाद होता था जो मेरे चाचा जी को मंदिर से मिलता था थोड़ा सा। फिर ये इच्छा हुई कि यहाँ मक्खन मिश्री का प्रसाद बटना चाहिए। मेरे साथियों की भी प्रेरणा हुई, यहाँ आके मक्खन मिश्री का प्रसाद भी लगाते हैं हम, और जहाँ तक हो सके मंगला मिलने वालों को वितरित करते हैं।
2: देवूलाल गुप्ता मेरा नाम है। मैं यहाँ लगभग 10 साल से आ रहा हूँ मंगला दर्शन करने के लिए, और मुझे जितने इस मंदिर में सुकून मिलता है।
3: जन्माष्टमी पर सारा भारत रात्रि में 11:45 पर खुलने वाले द्वारकाधीश के मंदिर में जन्म के दर्शन करने को व्यग्रता से प्रतीक्षा करता है।
4: यहाँ सौराष्ट्र, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, जाने कहाँ कहाँ के भक्त आए हुए हैं, और द्वारकाधीश की जय के नारे, द्वारकाधीश

0: की जग जगंत व्यापनी कीर्त पताका को लेकर आए, इसी क्षण के लिए तो रुके थे। आज भगवान ने जिस प्रकार उस समय देवताओं की प्रार्थना से अवतरित होकर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय।
1: ठाकुर जी का बेश कीमती मनमोहक श्रृंगार होता है, श्री शालिग्राम का पंचामृत अभिषेक होता है।
2: दीपावली पर ठाकुर जी विशाल हटरी में विराजते हैं। लक्ष्मी पूजा वाले दिन अनेक दिव्य आभूषणों से अलंकृत लक्ष्मीपति माधव की रूप माधुरी का किन शब्दों में वर्णन किया जा सकता है।
1: गोवर्धन पूजा के दिन ठाकुर जी के अन्नकूट दर्शन करने को लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। सारा मंदिर तिवारी व जगमोहन भरकर सकड़ी व अनसकड़ी सामग्री को सजाकर प्रभु के समक्ष भोग धरा जाता है।
2: सजाते समय श्री विग्रह के सामने सामग्री ऐसे सजाई जाती है कि तानपुरे की आकृति।
3: तो एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
6: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
5: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और JPSC JSSC न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद JSSC CGL के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य

0: वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान

0: कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला पेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में यह जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्य ने नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत है।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ में फिल्म क्रांति के इस गीत को। गीतकार संतोष आनंद है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

ज्वालामुखी फिल्म के इस गीत को आपने अभी सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा था गीतकार अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म कालिया के इस गीत को संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण साथियों की आवाज़ में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म के इस गीत को। मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था गीत को, आनंद मिलिंग का संगीत था। आज का ये कार्यक्रम साथियों फिल्म संगीत का गीतांजलि अभी यहीं पर संपन्न होता है। हिंदी वार्ता क्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है आज शिवम चौहान की ये वार्ता। विषय है मानव जीवन और संगीत।
1: क्षण को सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो शायद पक्षियों की चहचहाहट कानों में पड़ती है। जब आप मंदिर जाते हैं तो घंटियों की ध्वनि आपके मन को शांत करती है। जब आप उदास होते हैं तो कोई गीत आपके आंसू पोंछ देता है। और जब आप खुश होते हैं तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। वही है संगीत की शक्ति। यह हमारे जीवन के हर पल में, हर सांस में बसा हुआ है। अब हम संगीत के भूमिगत पटल पर बात करेंगे। संगीत मानव सभ्यता जितना ही प्राचीन है, हमारे पूर्वजों ने जब पहली बार पत्थरों को टकराया या अपने कंठ से स्वर निकाला होगा, तभी से संगीत की यात्रा शुरू हो गई थी। आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। बल्कि यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तकनीक के इस युग में संगीत हमारे और भी करीब आ गया है। संगीत कोई भाषा नहीं मांगता, कोई सीमा नहीं जानता। यह एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे बिना शब्दों के भी समझा जा सकता है। संगीत हमारे भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक जीवन में किस प्रकार समृद्ध बनाता है। संगीत में सुर और अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शास्त्रीय संगीत में 7 स्वर हैं, सारे ग म प ध नि। ये स्वर मनमाने ढंग से नहीं बजाए जाते। यह हर राग का अपना एक व्याकरण होता है, अपना अनुशासन होता है। किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा, कौन सा स्वर वर्जित है, कौन सा स्वर बादी है, कौन सा स्वर संवादी है, यह एक सिद्ध गायक या वादक बरसों की साधना के बाद ही इस अनुशासन को अपने भीतर इतना आत्मसात कर पाता है कि वह उसकी सीमाओं के भीतर रहकर भी असीम सृजन कर सके। यही जीवन का भी सत्य है। जो व्यक्ति बिना अनुशासन के जीता है, वह बेसुरा जीवन जीता है। भले ही उसके पास प्रतिभा कितनी भी क्यों ना हो, और जो व्यक्ति अनुशासन को अपनाता है, वह अपने सीमित संसाधनों से भी एक सुंदर, सार्थक जीवन राग रच लेता है। एक संगीतज्ञ जब रियाज करता है तो वह प्रतिदिन एक ही स्वर को, एक ही सरगम को बार बार दोहराता है। यह दोहराव उबाऊ नहीं है और ना व्यक्ति इससे कभी उबता है, बल्कि यह एक साधना है। इसी दोहराव से, इसी नियमितता से एक दिन उसका कंठ या उसकी उंगलियां इतनी सद जाती हैं कि स्वर स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। अनुशासन का एक यही रहस्य है कि जो आरंभ में बंधन सा प्रतीत होता है, वही आगे चलकर स्वतंत्रता का द्वार बन जाता है। रियाज और साधना का एक बहुत

ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय परंपरा में संगीत सीखने की प्रक्रिया को साधना कहा गया है। अभ्यास एक यांत्रिक क्रिया हो सकती है, परंतु साधना में समर्पण, धैर्य और श्रद्धा, ये तीनों ही समाहित होते हैं। पुराने समय में शिष्य बरसों तक गुरु के सानिध्य में रहकर केवल एक राग को सिद्ध करने में जीवन लगा देते थे। जैसे आपने तानसेन का नाम सुना होगा, तानसेन जैसे महान संगीतकारों की साधना की कथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। कहा जाता है कि जब वे राग दीपक गाते थे तो दीपक जल उठते थे, और जब मल्हार गाते थे तो वर्षा हो जाती थी। यह केवल कथा नहीं बल्कि साधना की उस पराकाष्ठा का प्रतीक है जहां कला और साधक एक हो जाते हैं। साधना का अर्थ है निरंतरता। एक दिन का अच्छा प्रयास पर्याप्त नहीं होता। मेरे प्यारे श्रोताओं, साधना वह है जो दिन प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी तत्कालिक फल के, चाह के हो जाती रहे। यही भाव भगवत गीता में भी कर्म योग के रूप में वर्णित है। संगीत की साधना भी हमें यही सिखाती है कि परिणाम की चिंता किए बिना निरंतर अपनी क्रिया में लगे रहना ही सच्ची उपासना है। और संगीत का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन की लय में है। मैं आपको लय की बात कहना चाहता हूँ। संगीत में ताल के बिना कोई भी रचना अधूरी है। ताल वह चौखटा है जिसके भीतर स्वर नृत्य करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जिन श्रोताओं को संगीत का थोड़ा सा भी, तनिक सा भी पता होगा, तो वह जानते होंगे तीन ताल, झप ताल, कहरवा, ये सब जीवन की गति के अलग-अलग रूप हैं। हमारा जीवन भी एक ताल से बंधा है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में सुबह का उठना, कर्म करना, विश्राम करना, फिर नहीं सुबह का आगमन, यह सब एक चक्र है, एक आवर्तन है। ठीक वैसे ही जैसे संगीत में ताल का चक्र सम से शुरू होकर पुनः सम पर आ जाता है। जब जीवन में लय बिगड़ जाती है, जब हर समय सोते नहीं, जब हम समय से सोते नहीं, समय पर उठते नहीं, अपने कर्तव्यों में नियमितता नहीं रखते हैं, तो जीवन बेसुरा और बेताला हो जाता है। परंतु जब हम अपने दिन को एक लय में बांधते हैं, तो जीवन में वही सामंजस्य आ जाता है जो एक सुंदर रचना में सुनाई देता है। प्रकृति स्वयं हमें यह पाठ पढ़ाती है। नदी की धारा में एक लय है, पक्षियों की कलरव में एक लय है, वृक्षों के पत्तों के हिलने में भी एक अदृश्य ताल छिपा है जो मनुष्य इस प्राकृतिक लय के साथ अपने जीवन को जोड़ लेता है। वह भीतर से शांत और संतुलित रहता है। राष्ट्र और समूह में भी संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोगों ने देखा होगा, जब एक वाद्य यंत्र सब लोग मिलकर बजाते हैं, जब एक आयोजन किया जाता है, तो वहां पे अनेकों वाद्य यंत्र मिलकर के एक सुंदर ध्वनि को रचते हैं। एक लय में, एक ताल में लोग सब एक साथ बजाते हैं, तो उसकी रचना एक अद्भुत होती है, जहां हर वाद्य अपनी भूमिका निभाता है। न किसी की धुन दूसरे से टकराती है, न कोई अपनी सीमा लांघता है। उसी प्रकार एक राष्ट्र भी करोड़ों व्यक्तियों के सम्मिलित अनुशासन और सामूहिक लय से भी महान बनता है। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझे, अपनी भूमिका को निष्ठा से निभाए और सबके बीच एक सामंजस्य बना रहे, तभी राष्ट्र का जीवन संगीत सुरीला बनता है। इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों ने अनुशासन और
सामूहिक

0: एक लय को अपनाया, वे समृद्ध हुए और जो इससे भटके वह बिखर गए। आज संगीत हर क्षेत्र में है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां संगीत न हो। संगीत और भावनात्मक जीवन का जुड़ाव एक ऐसा है जो संगीत एक भावना को मन के अंदर तक छू लेता है। मनुष्य भावनाओं से भरा प्राणी है। हम हर दिन खुशी, दुख, गुस्सा, प्रेम, निराशा जैसी अनेक भावनाओं से गुजरते हैं, परंतु इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना हमेशा आसान नहीं होता, पर संगीत हमारी सहायता करता है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलता है। एक विरह गीत हमारे दिल के दर्द को आवाज देता है, तो वहीं एक उत्साह गीत हमारी खुशी को दोगुना कर देता है। संगीत सुनकर हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारी भावनाओं को समझ रहा है, कोई हमारे साथ है। आज के तनावपूर्ण जीवन में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव से जूझ रहा है, संगीत एक सच्चे मित्र की तरह काम करता है। थके हुए मन को संगीत जितनी जल्दी शांति देता है, उतनी शायद ही कोई और चीज दे पाए। यही कारण है कि आज कई लोग तनाव कम करने के लिए ध्यान के साथ साथ संगीत का सहारा लेते हैं। संगीत का आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में भी बहुत योगदान है। संगीत लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता ही है। सोचिए, किसी शादी समारोह में बजने वाला संगीत, किसी त्योहार पर गाए जाने वाला गीत या किसी राष्ट्रीय अवसर पर बजने वाला राष्ट्रगान, ये सब हमें एक सूत्र में पिरोते हैं। हमारे देश की विविधता में भी संगीत एकता का काम करता है। जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो एक अजीब सी एकता और गर्व की भावना हमारे भीतर जागृत होती है। यह संगीत की ही शक्ति है, वह करोड़ों लोगों के दिलों में एक साथ धड़काने पर मजबूर कर देता है। इसके साथ ही संगीत पीढ़ियों के बीच एक सेतु का काम करता है। दादा दादी अपने पुराने गीत सुनाते हैं और आज की पीढ़ी नए संगीत के साथ आगे बढ़ती है, फिर भी दोनों के बीच संगीत के माध्यम से एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है। संगीत और बौद्धिक शैक्षणिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपने एक चीज महसूस की होगी, चाहे वह गायन हो या वाद्य यंत्र बजाना हो, उनमें एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक का विकास अधिक तेज होता है जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके मुकाबले। संगीत सीखने के दौरान मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक साथ सक्रिय होते हैं, जिससे समग्र मानसिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा संगीत अनुशासन और धैर्य भी सिखाता है। किसी वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने के लिए वर्षों का अभ्यास होना चाहिए। यह प्रक्रिया व्यक्ति को सिखाती है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य कितना जरूरी है। टीम के एक समूह के रूप में संगीत प्रस्तुत करना, जैसे कोरस गाना या ऑर्केस्ट्रा में बजाना, सहयोग, आपसी तालमेल से एक दूसरे को सुनने की कला भी सिखाता है। आज के वैज्ञानिक युग में चिकित्सा यानी म्यूजिक थेरेपी को एक मान्यता प्राप्त उपचार पद्धति के रूप में भी अपनाया जा रहा है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय गति संतुलित होती है और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। संगीत एक दिन में सीखी गई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एक दिन में सीख करके आप सब कुछ कर सकें। यह एक निरंतर प्रयास से और दिन प्रतिदिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी अपने जीवन को ये एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में कार्य करेगी।
1: आप अभी सुन रहे थे मानव जीवन और संगीत हिंदी वार्ता क्रम में। ये वार्ता वार्ताकार थे शिवम चौहान। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है। साथियों, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीटा तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता प्रभावी होने के साथ ही भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया युग का शुभारंभ हुआ है। इसी क्रम में पिछले दिनों औद्योगिक नगरी कानपुर नगर स्थित ICD पनकी में कार्यालय महानिदेशक विदेश व्यापार DGFT FIEO एवं कानपुर लॉजिस्टिक पार्क लिमिटेड KLPL द्वारा आयोजित भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता के अंतर्गत व्यापार संचालन का शुभारंभ अवसर पर फ्लैग ऑफ समारोह संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीटा से भारतीय निर्यात को बढ़ावा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। समझौते के अंतर्गत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूनाइटेड किंगडम के बाजार में शून्य शुल्क पहुँच प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त 137 सेवा उप क्षेत्रों के अवसरों का विस्तार होने से भारतीय सेवा क्षेत्र को भी व्यापक लाभ मिलेगा। यह समझौता विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, आद्य प्रसंस्करण, औषधि, MSME इन क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि, निवेश आकर्षण तथा रोजगार सृजन की नई संभावनाएं विकसित करेगा। भारत यूके सीटा के प्रभावी होने से उत्तर प्रदेश विशेषकर कानपुर के निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश और विस्तार के नए द्वार खुलेंगे। चमड़े के सामान, परिधान एवं वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, रसायन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह समझौता भारत की निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करने तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह समझौता के तहत उच्च रोजगार सृजित करने वाले एवं श्रम प्रधान वस्त्र एवं परिधान क्षेत्रों को शून्य शुल्क प्रवेश प्राप्त होगा। इससे भारतीय निर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तुलना में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ़त मिलेगी। CEO हेड उत्तर प्रदेश आलोक श्रीवास्तव ने बताया
2: कि अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क जीरो हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। लेदर के या फुटवेयर में 16% का, केमिकल्स में 8% का था, जेंट्स एंड ज्वेलरी में 4% का था, प्रोसेस फूड में 50-60% का था। तमाम ऐसी कमोडिटी में शुल्क जीरो हो जाएगा, जिससे निर्यातकों ने इस प्रयास को बड़ा सराहा है और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा, शहर से भी बढ़ेगा, प्रदेश से भी बढ़ेगा और देश से भी बढ़ेगा।
1: जनपद कानपुर नगर स्थित IIT के वैज्ञानिक डॉक्टर दूराज करार ने पिछले दिनों अपने शोध के आधार पर बताया कि मौजूदा और पुराने वाहनों में E20 प्रयोग से कोई समस्या नहीं है। इंजन रिसर्च लैब IIT में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर दूराज कराना ने के अनुसार उन्होंने अपने शोध के दौरान पाया कि मौजूदा और पुराने वाहनों में E20 का प्रयोग से कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर दूराज कराना ने लोगों को उपभोक्ता पुस्तिका, यूजर मैनुअल और समय समय पर पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइन पर ध्यान देने की सलाह दिया। उन्होंने बताया कि किए गए एक्सपेरिमेंट के अनुसार टेक्नोलॉजी E85 तक एथेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग तरह के हार्डवेयर चाहिए। डॉक्टर दूराज कराना ने बताया
3: E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं, सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कानपुर मंडल के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कानपुर मंडल के लगभग 31.8 करोड़ की 25 पर्यटन विकास परियोजनाओं का रोडमैप तैयार किया। इसमें अधिक पर्यटन विकास प्रस्ताव के साथ ही मंदिर, संग्रहालय, इको टूरिज्म और संस्कृत स्थलों के विकास पर फोकस रहा। सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किए जाने के साथ ही 1 करोड़ तक की लागत वाली सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं नवंबर तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों शिक्षकों और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुध को सदन करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय में लाभार्थी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुरेंद्र मैथानी विधायक सहित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने किया। योजना के तहत 5 शिक्षकों को उनके और उनके परिवारजनों को सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय 5 लाख रुपए तक निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जबकि सरकारी चिकित्सालयों में उपचार राशि की कोई सीमा नहीं होगी। इस योजना से जनपद के 1000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रदेश सरकार की शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। स्वास्थ्य संबंधी संकट के समय यह योजना शिक्षकों उनके परिवारों को महत्वपूर्ण

0: खाद प्रदान करेगी।
1: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: झांसी नगर निगम क्षेत्र के 13 वार्डों में करीब 4,20,00,000 रुपए की लागत से सड़क और नाला निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी सामने आई है। इन कार्य से स्थानीय नागरिकों और आवागमन और जल निकासी की सुविधा मिलने की उम्मीद है। झांसी नगर निगम क्षेत्र में पिछले दिनों करीब 44,61,00,000 रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें सीएम ग्रिड फेज 3 के तहत बीकेडी चौराहे से गणेश चौराहे तक सड़क, फुटपाथ, साइड पटरी और सुंदरीकरण का कार्य प्रमुख है। जल जीवन मिशन के तहत पाइप डालने से प्रभावित हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। जिले में करीब 170 सड़कें प्रभावित बताई गई हैं। उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार बहाल करने को कहा गया है। प्रेमनगर क्षेत्र में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पानी की टंकी का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पौधारोपण अभियान की समीक्षा की। जिले में इस वर्ष 1,03,00,000 पौधों लगाने का लक्ष्य रखा गया। 27 विभागों से लगाए गए पौधों की जीवित स्थिति और जियो ट्रैकिंग की रिपोर्ट मांगी गई है। गुरसराय और गरोठा क्षेत्र के लिए 63,24,00,000 रुपए की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। योजना से दोनों नगर क्षेत्रों के लगभग 7,440 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। गरोठा क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में हाई टेंशन लाइन गिरने से करीब 40 बच्चों की जान बाल बाल बची। इस घटना के बाद जिले के सरकारी विद्यालयों के ऊपर और आसपास से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। जिले के 119 सरकारी विद्यालयों और विद्युत लाइनों से जुड़े खतरे से मुक्त कराने की कार्यवाही की जानकारी सामने आई है। इसमें करीब 40 विद्यालयों से विद्युत लाइनें हटाई जा चुकी हैं। यह कदम विद्यालयों और शिक्षकों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झांसी में रेलवे से जुड़े अपराध के मामले में RPF और GRP ने कार्यवाही करते हुए करीब 3 टन रेलवे स्क्रैप बरामद किया। मामले में 2 ट्रक चालकों और 1 कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया। झांसी ललितपुर मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने की खबर सामने आई है। पहले चरण में 5 बसों के संचालन की व्यवस्था की गई। इसमें दोनों जिलों के बीच सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जिले में बारिश और जलभराव की स्थिति भी चर्चा में रही। कई इलाकों में बारिश के कारण रास्तों और घरों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन की ओर से जल निकासी और मौसम की स्थिति पर निगरानी रखी गई। पिछले दिनों झांसी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की सुपारी लेने का आरोप था। मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही जारी रही। झांसी जिले में एक और गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। अतीक अहमद के 21 वर्षीय बेटे अवान अहमद और उसके साथी सोनू की सड़क हादसे में मौत हो गई। वाहन के डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ, जिसमें 3 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक स्थानों में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण तथा देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले एक माह में झांसी जिले में पेयजल, सड़क, जल जीवन मिशन, विद्यालयों की सुरक्षा, पौधारोपण, नगरीय विकास, सार्वजनिक परिवहन, अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़े विशेष रूप से गुरसराय गरोठा की 83 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल परियोजना, 44 करोड़ से अधिक की नगरीय विकास परियोजना और 119 सरकारी विद्यालयों को विद्युत खतरे से मुक्त कराने की कार्रवाई जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कानपुर नगर और झांसी जिलों की खबरें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देश गान।
4: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आवो।

0: सभा के अंतर्गत जानकारी, विषय है बढ़ती आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं मोनिका विजय।
1: पर्यावरण बोझ से अर्थ पर्यावरण के समूचे बोझ से है, जिसमें कुछ ज्ञान पूरा और कुछ ज्ञान अधूरा होता है। पर्यावरणविद आर डाउन का मानना है कि पर्यावरण बोध भौगोलिक इकाई की विषय वस्तु है और इसका अध्ययन तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला रचनात्मक पर्यावरण बोध, दूसरा मूल्यांकन पर्यावरण बोध और तीसरा अपेक्षित पर्यावरण बोध। प्रथम रचनात्मक पर्यावरण बोध के तहत किसी स्थान की पर्यावरणीय स्थिति का मानव मन पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव पर जाता है। मानव संस्कृति की विविधता इसी कारण से देखने को मिलती है। दूसरा मूल्यांकन पर्यावरण बोध में पर्यावरण के तत्वों का मूल्यांकन स्थान, काल और अंतर संबंध के परिपेक्ष में लिया जाता है। अपेक्षित पर्यावरण बोध के संबंध में जो ज्ञान उपलब्ध है उसमें रचनात्मक तथा मूल्यांकन दोनों का आधार बनाया जाता है। अर्थात पर्यावरण के संबंध में जो ज्ञान उपलब्ध है उसके क्रम में ज्ञान का संग्रह किया जाता है, तब निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक प्रकोप का जो पुराना अनुभव एक क्षेत्र के निवासियों को, उसके आधार पर इनके घटने बढ़ने की संभावना का पता लगाता है, फिर उसके आधार पर निश्चित करते हैं कि किन उपायों से उसने छुटकारा पाया जा सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। हम जानते हैं कि समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, दावाग्नि, महामारियां आदि प्रकृति की देन है। इसके सृजन पर रोक लगाना मनुष्य के बूते के बाहर है, फिर भी मनुष्य अपनी खोजों और प्रयोगों के द्वारा ये जानने का प्रयास करता है कि समुद्री तूफान की गतिशीलता और व्यापकता का क्या स्वभाव है। इसके लिए राडार या उपग्रह से चित्र लेकर सावधानी की सूचना अग्रिम रूप से देकर धन जन की बचत करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि जापान में लकड़ी के घर अधिक बनाए जाने लगे हैं ताकि भूकंप से जान माल की हानि कम हो। ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप अब जापान में कंक्रीट के बहुमंजिली मकान बनाए जाने लगे हैं। लेकिन भूकंप से सुरक्षा उसकी रचना का प्रमुख आधार है। विश्व के अनेक देशों में प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव समान नहीं है, फलतः इनको झेलने का बोध भी समान नहीं है। कम विकसित देश इसे सहज भाव से झेलते हैं, जबकि विकसित देश इससे आक्रांत होते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसे प्रकोपों पर पूर्ण नियंत्रण किया जाए, अर्थात प्रकृति को वश में किया जाए। स्पष्ट है कि पर्यावरण बोध प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक समाज में समान नहीं होता है। पर्यावरण बोध कठिन साध्य है, लेकिन ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका विश्वव्यापी प्रभाव है। उदाहरण के लिए जलवायु किसी देश की सीमा में बंधी नहीं होती है। इसी प्रकार जलवायु में दूषित गैसों का प्रभाव भी सब तरफ विश्वव्यापी रूप से फैल रहा है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एकमत हैं कि संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण आवश्यक है। वे संसार, समाज, धन जो पुनः स्थापित हो सकते हैं उन्हें भी इस प्रकार के उपायों से लाया जाए कि उनको निर्माण का समय प्राप्त हो, अर्थात अनुपातिक रूप से उपयोग में आने वाले तथा समाप्त होने वाले संसाधनों का संरक्षण हो। तो अत्यंत आवश्यक है कि भविष्य के लिए हमें वर्तमान की पूर्ति को अवश्य कम करना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों न केवल धातुओं, वस्तुओं तथा पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के लिए तरसेगी, अपितु हमारा पर्यावरण भी इतना प्रदूषित हो चुका होगा कि शायद जीवन ही कठिन हो जाए।

0: कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोनिका विजय से जानकारी। विषय था बढ़ती आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर बी गर्ग से ओपी सिंह की ली गई भेंटवार्ता। विषय है टाइफाइड कारण लक्षण और निदान।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, जब भी बरसात आती है तो बीमारियों के होने के जो चांस हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जल भराव होता है, आसपास पानी भर जाता है, मक्खी मच्छर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे देखने में आता है कि बीमारियों का जो प्रकोप है हमारे आसपास काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन आजकल टाइफाइड की भी समस्या काफ़ी देखने में आ रही है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब हम उसकी जांच कराते हैं ब्लड की, तो उसमें टाइफाइड निकल रहा है। तो इस समय क्यों कर टाइफाइड हो रहा है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम हैं, लक्षण इसके, और क्या इसका निदान हो सकता है, कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसका इलाज हम करा सकते हैं, ये चार पांच चीज़ें हैं जिसकी जानकारी के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर बी गर्ग साहब, शहर के वरिष्ठ फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब।
1: मैं बात कर रहा था अपने श्रोताओं से, टाइफाइड तो बड़ा कॉमन सा हो रहा है, इसको क्या हम पुराने समय में जो लोग म्यादी बुखार बोलते थे ये कह सकते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, पहले इसे म्यादी बुखार बोलते थे या मोती झरा नाम से भी जाना जाता था। तो पहले म्यादी बुखार, क्योंकि ये लंबे समय चलता है, 3-4 हफ्ते तक चलता है, और इसका एक सेट पैटर्न होता है, तो इसे हम लोग जो है म्यादी बुखार भी बोलते हैं, मोती जला भी बोलते हैं, टाइफाइड भी बोलते हैं, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। एंट्रिक फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आंतों पे सबसे ज़्यादा असर होता है इसका, इसलिए इसे एंट्रिक फीवर भी हमारी भाषा में बोलते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। एक दूसरा बैक्टीरिया और होता है जिसे साल्मोनेला पैराटाइफी कहते हैं। तो पैराटाइफी वाले बैक्टीरिया से तो कम, लेकिन टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी से ज्यादा,
1: तो उसी से टाइफाइड पड़ा, उसी से टाइफाइड। तो जैसे लोग, पुराने लोग इसको, जैसे आपने कहा मोती जला है, म्यादी बुखार है, तो उस समय के लोगों के सिम्टम कुछ अलग पहचान लेते थे कि हाँ ये है, लेकिन अगर आज के संदर्भ में, क्योंकि नई पीढ़ी भी अब आ गई है और इतना वो नहीं है, वो बुखार को बुखार मान के चल रही, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो पहली दिखाई देते हैं इसमें?
2: सबसे पहले तो बुखार आना,
1: बुखार आएगा, ठीक है।
2: पहले के समय में जो लोग पहचान लेते थे म्यादी बुखार है, तो वो इसका एक सेट पैटर्न है कि डे बाय डे इसका एक ये स्टेप लैडर पैटर्न,
1: इतने बजे आएगा,
2: हाँ एक स्टेप, और इतना ये हर बार बढ़ के आएगा
1: तो या इतने इंटरवल पे आएगा और उतर जाएगा।
2: जी, पहले इसका एक सेट पैटर्न था, पर हम आज की बात करें तो आजकल बुखार आया नहीं कि लोग अपने आप ही दवा ले लेते हैं, आयुर्वेदिक ले लेते हैं, होम्योपैथी ले लेते हैं, बुखार की दवा ले लेते हैं, बहुत से लोग तो एंटीबायोटिक भी अपने आप ही शुरू कर देते हैं क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी
1: इजी है।
2: तो हम लोगों के पास जो पेशेंट्स यूजुअली हम लोग जो देखते हैं वो एक खराब स्थिति में देखते हैं, जो कि
1: बिगड़ के
2: हम लोगों के पास आते हैं, क्योंकि वो कई एंटीबायोटिक खा के आते हैं, कई, तो हमें फिर उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो बुखार ही है, फिर उल्टी, दस्त हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और सर दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आंतों की परेशानी, तो पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, तो हल्का सा कफ भी हो सकता है,
1: आंतों पे आ रहा, तो फिर भूख भी कम लगेगी, कमजोरी आ ही जाएगी, और बाकी चीजें फिर वो बढ़ती जाती हैं।
2: कई बार उसमें रोज स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसे जिसका नाम मोती जला कहते थे। तो हल्के से रोज कलर के स्पॉट्स आ जाते शरीर पे, रैशेज आ जाते हैं,
1: वो दिखाई देने लगते थे,
2: तो वो दिखाई देने लगते थे, तो उसे लोग मोती जला बोल देते थे
1: कि ये मोती।

0: ये देख रही हैं दूर से, बुंद की
1: तो
0: जैसी,
1: ये मोती जला हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके, जो कि पहले दूसरे हफ्ते में आ जाते हैं बुखार के। बेसिकली जैसे कि आज मान लो कोई भी आदमी उससे इन्फेक्ट हुआ बैक्टीरिया से, तो जो बुखार आने में जो समय लगता है वो कई बार वेरिएबल होता है, 1 हफ्ते से 8 हफ्ते तक कई बार लग जाते हैं। जैसे आज आप वो हुए तो 1 हफ्ते से, लेकिन यूजुअली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में
0: सिम्टम
1: हो
0: जाता
1: आ जाते,
0: आ जाते हैं, बुखार भी आ जाएगा।
1: हाँ, यूजुअली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में आ जाते हैं, बट इट मे टेक अप टू 8 वीक्स ऑल्सो।
0: किसी की अगर इम्यूनिटी ठीक है
1: हाँ,
0: तो बहुत लंबा
1: लंबा
0: समय
1: भी खींच जाएगा।
0: तो जितने समय में ये आ रहा है जाने में भी उतना ही समय लगता है, कई बार इसको बताते हैं कि लंबा चलता है।
1: नहीं, यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो 1.5 से 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। और यदि ना ले ट्रीटमेंट तो फिर ये अपना कोर्स पूरा करता है,
0: फिर
1: तो लंबा
0: चलेगा,
1: चल जाता है।
0: अब जैसे बरसात है तो बरसात में क्या होने के चांसेस के ज्यादा बढ़ जाते हैं क्या?
1: वो इसलिए कि कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि
0: पानी
1: हमारा वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, कई बार जो है वो सीवेज से कनेक्ट हो जाता है, तो उससे जो बैक्टीरिया है वो पानी में, हमारे पीने के पानी में आ जाता है, या जो सब्जियां हैं वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम कई बार
0: बाहर
1: रॉ
0: से आ
1: खाते हैं,
0: रही है।
1: हाँ उन्हें हम रॉ खा लेते हैं, तो उनके थ्रू वो बैक्टीरिया आ जाते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, हमारे हाथ हैं, इसका जो बेसिकली ये फैलता है उसे फिकोरल रूट बोलते हैं। फिकोरल रूट का मतलब है कि मुंह से आपका एंटर किया और लेटरिन के रास्ते बैक्टीरिया बाहर भी निकल जाता है,
0: वहीं से फिर
1: वो
0: वो
1: स्प्रेड
0: फैलेगा।
1: करता है। हाँ, तो उसमें इसे इसलिए इसका स्प्रेड भी जो है ऐसे ही होता है। तो उसमें फैलने का ये है कि आप जो है लेटरिन गए, लेटरिन आके आपने हाथ नहीं धोए कायदे से, आपने उसी हाथ से आपने खाना पीना खा लिया, तो इन्फेक्शन जो है आपका सीधे सीधे पहुंच रहा है। तो इसमें हैंड वॉशिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप खाना बना रहे हैं आप उन्हीं इन्फेक्टेड हाथ से बना रहे हैं
0: हाँ,
1: तो बैक्टीरिया
0: तो
1: चला
0: चला
1: जाए,
0: जाएगा।
1: तो और यदि आप खा रहे हैं या बना रहे हैं तो भी उसी से पहुंच जाएगा। तो इसमें यह है कि खाना बनाने से पहले भी और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए, और टॉयलेट से आके भी पहले सबसे पहले हाथ धोने चाहिए, तो उससे चांसेस कम हो जाते
0: साफ
1: हैं।
0: सफाई बहुत प्रॉपर, अगर घर
1: प्रॉपर
0: में
1: सैनिटेशन
0: अपनी भी, घर
1: हाँ
0: की भी और परिवेश की भी,
1: जी
0: तो
1: कम होगा।
0: कम होगा।
1: ऐसे ही कंटेमिनेटेड वाटर नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपने पी लिया जैसे रॉ निकलते हैं ऐसे ही पानी पी लिया, तो सेफ वाटर ड्रिंकिंग होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो आप पानी को पहले उबाल लीजिए,
0: जी,
1: और उबाल के ठंडा कर लीजिए फिर पी लीजिए।
0: हाँ, आप लोग जनरली जब बरसात पहले होती थी तो आप लोग यही कहते थे कि भैया कुछ नहीं है तो पानी को उबाल लो,
1: उबाल लो फिर पी लो,
0: पी लो, ढक लो उसको, फिर ठंडा करके
1: तो
0: पी
1: ये
0: लो।
1: उसके ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं ये सारी
0: तो इसको
1: चीज़।
0: क्या अपन वाटर बॉर्न डिजीज के उस कैटेगरी में रख सकते हैं, पानी से जनित बीमारियां
1: कह
0: जैसे
1: सकते हैं
0: फैलाव,
1: कि
0: क्योंकि पानी गंदा
1: पानी
0: अगर
1: का
0: है
1: हाँ
0: तो वो आपको
1: कंटेमिनेटेड वाटर से तो फैलेगा। अच्छा,
0: फैलेगा।
1: चाट पकौड़ी खाने गए, आपने चाट पकौड़ी खाई, वो जो आपको चाट खिला रहा है उस वो
0: अब हाँ, पूरे
1: हाँ
0: गर्मी का मौसम है, अब पसीना भी आएगा, वो इधर उधर शरीर को
1: हाँ,
0: पहुंचा।
1: तो उसने हाथ में उसके साफ नहीं है, उसमें
0: या
1: इन्फेक्टेड है,
0: किस पानी से वो
1: बना रहा है पानी
0: पानी
1: बना
0: बना
1: रहा
0: रहा
1: है,
0: है
1: तो
0: उसमें।
1: ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
0: तो मतलब यह है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, हाथों को साफ रखें, परिवेश को साफ रखें। खाना, आपने सब्जियों और फलों की बात की, तो फल को तो हम ठीक ही मानते हैं, रोही खा लेते हैं, कुछ
1: साफ करके
0: सब्जियों को
1: खाना
0: हाँ,
1: चाहिए,
0: तो साफ
1: साफ करके
0: करके
1: खाना चाहिए।
0: कम से कम जो पोर्टेबल वाटर है, साफ पानी हो,
1: हाँ, उससे आप साफ करें
0: साफ करें,
1: फिर लें।
0: सुखा लें उसमें। तो अब जैसे कई बार आदमी भीग भी जाता है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो
1: भीगने से तो नहीं
0: इसमें
1: होगा,
0: नहीं होगा ना?
1: नहीं
0: हाँ,
1: नहीं
0: नहीं है,
1: भीगने से इसका कोई
0: क्योंकि
1: संबंध
0: वायरल नहीं
1: नहीं
0: है
1: है।
0: तो
1: नहीं
0: नहीं है
1: नहीं
0: उसमें।
1: नहीं
0: तो
1: भीगने से
0: अब चलिए ठीक है, ये हो गया, किसी व्यक्ति के शरीर में आ गया, निदान भी ऐसा लग रहा है कि भाई है, तो फिर तो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। बचाव की तो बात
1: हाँ
0: हमने कर ली कि भाई
1: नहीं,
0: साफ
1: मैं
0: सफाई
1: इससे पहले
0: रखें।
1: एक बात और कहूँगा,
0: जी
1: आजकल जो है लोग काफ़ी लिटरेट हो गए हैं,
0: हाँ
1: वो अपने आप लैब पे जाएंगे कहेंगे विडाल टेस्ट कर दो,
0: हाँ
1: टाइफाइड
0: ये
1: के लिए
0: टाइफाइड के लिए विडाल
1: विडाल
0: टेस्ट।
1: टेस्ट कर दो। ये विडाल टेस्ट भी बड़ा नोटोरियस है, ये फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है, तो इस और
0: इसका
1: बहुत
0: क्या
1: सारी भी
0: मतलब?
1: मतलब बीमारी नहीं है तो भी आ सकता है पॉजिटिव, और बीमारी है

0: तो भी नेगेटिव आ सकता है, इसका मतलब
1: तो
0: ये है।
1: मतलब ये नहीं कि आपने बिड़ाल
0: हाँ,
1: करा
0: इसकी
1: लिया।
0: सेंसिटिविटी बहुत कम है, स्पेसिफिसिटी बहुत कम है। तो उसकी जगह वैसे तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो ये है कि आपको बुखार आया है एंड यू आर सस्पेक्टिंग कि टाइफाइड हो सकता है, तो आप ब्लड कल्चर कराएं, आपको ब्लड कल्चर कराना चाहिए। लेकिन कौन आदमी कराता है? हम लोगों के पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो वो इतनी दवाएं खा के आते हैं, तो यदि हम ब्लड कल्चर कराएंगे तो वो भी स्टराइल आ जाएगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से सप्रेस हो जाती है, वो ख़त्म नहीं होती, सप्रेस हो जाती
1: दब
0: है,
1: गई, आएगी नहीं वो,
0: आएगी नहीं वो।
1: आएगी
0: हाँ,
1: नहीं।
0: तो वो आएगी नहीं। तो हम लोग भी फिर क्या करते हैं कि भाई एक उससे आगे के थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है टाइफीड और,
1: हाँ
0: तो वो हम करा लेते हैं, उसमें आ जाता है, तो फिर हम मान लेते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, तो हम मान लेते हैं कि भाई टाइफाइड ही होगा। लेकिन ये चीज़ें, ये टेस्ट जो है गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो ब्लड कल्चर है, या जो कैरियर स्टेट में जिनका बहुत लंबा फीवर चला जाता है उनका स्टूल कल्चर करते हैं, क्योंकि आदमी को बुखार नहीं है और वो हमारे आपके बीच में घूम रहे हैं।
1: हाँ, तो वो फिर
0: हाँ, लेकिन वो
1: फैलाव का
0: कैरियर
1: काम
0: है,
1: कर रही
0: आधी
1: काम।
0: अधूरी दवाएं खाई, बीमारी पूरी तरह से गई नहीं, सिम्टम फ्री हो गया, सिम्टम्स नहीं है उसके कोई, लेकिन वो
1: बीमारी को फैला,
0: फैला
1: कैरियर का काम
0: फैला
1: कर रहा है,
0: फैला
1: खुद
0: रहा
1: लेके डोल
0: है,
1: रहा है
0: खुद
1: जो
0: लेके डोल रहा है।
1: सोसाइटी में
0: तो
1: सोसाइटी।
0: ऐसे लोगों में फिर स्टूल कल्चर कराना चाहिए, कभी कभी यूरिन कल्चर
1: मरीज
0: में
1: को
0: भी
1: लगता है
0: होते
1: कि यार मैं ठीक
0: हैं।
1: हो गया और डॉक्टर साहब ने तो मुझे इतने टेस्ट
0: हाँ
1: बता दिए,
0: बता
1: लेकिन
0: दिए।
1: एक्चुअल की तह तक जाना है।
0: हाँ
1: क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कई बार कहते हैं कि टाइफाइड रहा, बार बार आया,
0: हाँ
1: रिपीट हुआ,
0: हाँ
1: तो व्यक्ति की इम्यूनिटी शायद इतनी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उसकी आंतें कमज़ोर हो गई,
0: हाँ
1: खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, भूख
0: हाँ
1: चली गई।
0: ये बेसिकली आंतों की ही बीमारी है, और आंतों से ये ब्लड में जाता है बैक्टीरिया। कई बार तो ये होता है कि आंतों में घाव बन गए, ब्लीडिंग हो गई, उससे ब्लीडिंग हुई, आंतों के परफोरेशन हो गए, आंतों के, ये जानलेवा भी हो सकती है ये टाइफाइड, क्योंकि
1: लंबा
0: आंतों
1: लंबा हो गया।
0: लंबा हो गया, तो आंतों के परफोरेशन का हो जाने पे सर्जरी, इमरजेंसी हो गई, देन सर्जरी। और कई बार ब्रेन पे भी इस इफेक्ट होता है, कन्फ्यूजन और ये सारी चीज़ें करता है, कार्डियक उस पर
1: इसका
0: भी।
1: डॉक्टर साहब क्या कोई वो है, क्या टीका है क्या
0: हाँ
1: इसका?
0: बिल्कुल है टीका
1: क्योंकि
0: इसका।
1: इसके बारे में इसका
0: हाँ
1: टीका है, कभी कम चर्चा होती है इस बात पर,
0: नहीं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में टीका आता है
1: आता है बचाव में।
0: बचाव में, और हमारे पीडियट्रिशियंस इसे लगवाते हैं। वैसे तो 6 महीने के बच्चे पे भी लगवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 9 to 12 month के महीने से लगवाते हैं,
1: अब
0: और
1: रिकमेंडेड उसमें आ गया है।
0: आ गया है 0.5 ml का छोटा इंजेक्शन है, वो लगवा देते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी, उससे इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। बाद में यदि हो भी रहा है तो कम
1: घातक नहीं होगा,
0: घातक
1: लेथल
0: नहीं
1: नहीं
0: होगा
1: होगा उसमें,
0: इतना
1: जैसे आपने कहा कि
0: इम्यूनिटी।
1: ये
0: हाँ
1: जानलेवा हो सकता है, तो
0: क्योंकि
1: अगर टीका लगाए तो
0: हाँ
1: फिर उतना घातक नहीं होगा।
0: हाँ बेसिकली ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बेस्ड हैं, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कम घातक होगा, और यदि आपकी इम्यूनिटी ख़राब है तो फिर ज़्यादा घातक
1: ज्यादा
0: ज़्यादा
1: घातक,
0: घातक
1: ज्यादा।
0: होगा।
1: तो अब ऐसे लोग जो बचपन तो अपना निकाल चुके हैं, जवानी भी है, तो
0: लगवा
1: वो भी
0: सक
1: लगवा सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल लगवा सकते हैं इन कंडीशंस में, या तो वो बाहर एंडेमिक एरियाज में जा रहे हों जहाँ टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, या ऐसा उन्हें लगता है कि यहाँ टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन एडल्ट के लिए ये है कि कुछ कहते हैं 2 साल, कुछ कहते हैं 3 साल बाद एक बूस्टर डोज लग जानी चाहिए,
1: कि टाइफाइड खतरनाक हो सकता है अगर हम लापरवाह हैं,
0: जानलेवा भी हो सकता है।
1: तो हमें लापरवाह नहीं होना है। और दो तीन चीज़ें कि बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनका वैक्सीनेशन करा लें, हालांकि इस पर इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन टाइफाइड का भी वैक्सीनेशन है और बहुत महंगा नहीं है, और जो अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको रिकमेंड भी करते हैं। आपकी भी उम्र बढ़ गई है, कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ टाइफाइड हो सकता है, आप भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उस इस उम्र में भी हो जाता है। तीसरे यह है कि अच्छा पानी पिएं, साफ पानी पिएं। आजकल तो ज़्यादातर लोग RO का पानी पी रहे हैं, लेकिन नहीं है जिनके पास, तो पोर्टेबल वाटर, अच्छा पानी पिएं, अपने आसपास साफ सफाई रखें, और हाथ की और घर की, खाना बनाते समय, खाते समय, अपने आसपास में बहुत सफाई का हमें ध्यान रखना है। कोरोना में इस बात को हमने बहुत अच्छी
0: अच्छे
1: तरीके
0: से
1: से
0: सीखा
1: जिया है और
0: तो।
1: महसूस किया, और उसके रिजल्ट्स भी देखे। और भारतीय परंपरा और परिस्थितियों में सफाई का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण वो है। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उस पर निश्चित तौर पर आप गौर करेंगे, अपनाएंगे, और उस अपनाई हुई जानकारी से बेहतर स्वास्थ्य और समाज में बेहतर मैसेज आप

0: दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आए, जानकारी दी,
1: एक
0: इसके
1: बार
0: लिए
1: फिर
0: बहुत
1: से
0: बहुत
1: शुक्रिया आपका।
0: जी। थैंक यू सर।
2: हो गया।
3: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये भेंट वार्ता डॉक्टर वीवी गर्ग से ली हुई। विषय था टाइफाइड कारण, लक्षण और निदान, और इस विषय पर इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ गैर फिल्मी गजलों का। कार्यक्रम की ये पहली गजल प्रीति उत्तम की आवाज में है। कभी मेरी याद उनको आती तो होगी, कभी मेरी याद उनको आती तो होगी, अकेले में उनको रुलाती तो होगी।

हमने हसरतों के दाग आंसुओं से धो लिए। आइए सुनते हैं ये अगली गजल गुलाम अली साहब की आवाज़ में।

हमने हसरतों के दाग आंसुओं से धो लिए। आपने अभी सुना ग़ुलाम अली खान साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल। आज का ये कुछ गैर फिल्मी गज़लों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आपने सुना भी साधना सरगम और साथियों की आवाज़ में फिल्म विश्वात्मा के इस गीत को आनंद बख्शी के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था वीजू शाह ने। और आप आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

जहाँ अब्बास फिल्म के इस गीत को आपने अभी सुना किशोर कुमार और सपना की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

0: किंग अंकल फिल्म से आवाजें थी सुदेश भोसले कविता कृष्णमूर्ति की। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।
1: एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

आप अभी सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म जीने की राह का ये गीत। और साथियों, आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

डकैत फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। इस गीत को आर डी वर्मन ने संगीतबद्ध किया था और आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

बाबुल बोस की संगीतबद्ध इस गीत को लिखा था राहुल रवेल ने और आवाज़ें थी यशुदास और राधा पौडवाल की। अभी आपने जो फिल्म का गीत सुना था वो फिल्म थी प्यार भरा दिल। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम एस जानकी की आवाजों में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आप अभी सुन रहे थे यारा दिलदारा फिल्म के गीत को। आवाज़ें थी उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की, और गीत को लिखा था शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत जतिन ललित का था। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज प्रस्तुति है संजय सारस्वत की।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो।
1: जी आदरणीय सारस्वत जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: सर आपका नियमित श्रोता ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम नगला राणा सिहोरा मथुरा से। जी
0: स्वागत है चौधरी साहब कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आपकी कुशलता की कामना करते हैं।
1: सभी लोग कुशल मंगल हैं सर। ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे।
0: जी, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बारिश हो नहीं रही है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। क्या किया जाए, मौसम ज्यादा ही कुछ खराब है।
0: हाँ, काफी जिलों में बरसात हो रही है, हमारे जिले में थोड़ा अभाव है अभी।
1: इंद्रदेव रूठे हुए हैं सर हमसे।
0: चलिए कोई बात नहीं, कभी तो कृपा होगी उनकी।
1: हाँ इंतजार कीजिए, बारिश तो होनी है सर इस सावन के महीने में, नहीं तो भादों में होगी। होगी जरूर, थोड़ी बहुत तो होगी, मिलेगी, राहत मिलेगी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी सर कार्यक्रम में।
1: फरमाइश बोलने से पहले मैं एक निवेदन करूं सर। देखिए सावन के महीने में अक्सर हमने देखा है कि हमारे ब्रज में यानी खास तौर से मथुरा वृंदावन में जो यात्री आते हैं दर्शन हेतु,
0: जी,
1: हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग उनका विशेष ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें और अपने नगर की इतनी सफाई रखें, साफ सफाई, कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो और उनकी हिफाजत करें, उनकी विशेष उनका ध्यान रखें, उनका पूरा पूरा ख्याल रखें, ताकि जब वो यहाँ से दर्शन करके वापस लौटें तो कुछ न कुछ यहाँ की यादें लेके लौटें।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए, और भी जिस तरीके से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये सब बातें बहुत अच्छी कही आपने, इनका हमें सभी को ब्रजवासियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: महोदय गाना है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से,
0: जी
1: लता और मुकेश साहब ने गाया है, मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा।
0: चौधरी साहब, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: नमस्कार
1: दिसावर से विजय कुमार कश्यप बोल रहा हूँ मैं।
0: विजय भाई, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: राधे राधे अंकल जी,
0: राधे राधे।
1: और बढ़िया हो आप?
0: हाँ, हम तो अच्छे हैं, आप बताइए, आपके घर परिवार में आप सब ठीक हैं?
1: हाँ सब बढ़िया है, घर परिवार में सब बढ़िया। आज बड़ा मौसम मस्त सुहाना हो रहा है, सावन का महीना बहुत अच्छा लगता है हम सभी को।
0: हाँ, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का, आराधना का महीना है। हरियाली होती है हर जगह, तो अच्छा लगता ही है।
1: और क्या, ऐसे ही अच्छा लगना चाहिए सभी लोगों को। पहले
0: जी
1: मेरे बच्चे हैं, उनका नाम मैं चाहता हूँ। कुछ मेरी मम्मी है, मेरी
0: जी
1: माता जी गीता देवी, और मेरे बच्चे हैं ईशु हर्ष खुशी, और मेरे दो भतीजे मुन्नू मुन्नू, और फिल्म का नाम है याराना। गाने के बोले हैं, भोले ओ भोले मेरे यारी को बना ले, ये वाला गाना है।
0: विजय भाई, आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
1: हमारी कॉल सामने करने के लिए आपको भी धन्यवाद। राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी, ग्राम नरबजरी राया, आपसे बात कर रहा हूँ जी।
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में नेत्रपाल जी।
1: अब आप बताए, आप कहते हैं, आप टीम के सर?
0: सब अच्छे हैं, आप बताएं, आप ठीक हैं?
1: हाँ सर, बिल्कुल सही हूँ। अब क्या, बस दिन पूरे हो जाए मेरे, बस
0: दिन पूरे मत करिए, भगवान का भजन करिए।
1: भरोसा कर रहा हूँ रोज
0: हाँ बस,
1: दिन रात, कोई दूसरा काम नहीं मेरे पास, और कोई काम नहीं मेरे पास।
0: अच्छी बात है, जिंदगी भर काम कर लिया, अब तो आराम का समय है थोड़ा।
1: जैसा नौकरी कर ली, खेती में कर लिया, सब कुछ कर लिया, पूरा
0: जी जी जी
1: दुनिया देख रही सर्विस में।
0: बिल्कुल सही बात है। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे नेत्रपाल जी
1: आज
0: कार्यक्रम
1: वो है,
0: में?
1: हे रोम रोम में बसवा ले रहा हूँ।
0: जगत के स्वामी है अंतर्यामी,
1: हाँ यही है सर।
0: सुनवाते हैं नेत्रपाल जी आपकी पसंद का ये भक्ति गीत। बहुत
1: ठीक है
0: बहुत
1: सर,
0: धन्यवाद आपका।
1: कष्ट के लिए माफ करना सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
1: हारून भाई, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: जी, और आप कैसे हो?
1: बहुत अच्छे हैं, दुआएं हैं आपकी।
0: जी,
1: आपके यहाँ सब अच्छे हैं?
0: हम हमारे इधर तो सब अच्छे हैं। हेलो आकाशवाणी के लोग कैसे हैं?
1: बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे।
0: जी,
1: बारिश वारिश हो रही है आपके यहाँ कि नहीं?
0: अरे हमारे इधर तो 15 अगस्त को अच्छी झमाझम बारिश हुई थी, तीन
1: अच्छा अच्छा
0: चार घंटे से सताता पानी।
1: तो मौसम अच्छा हो गया आपके यहाँ।
0: जी, मौसम अच्छा है, कल नहीं गिरा पानी, आज भी बादल छाए हुए हैं। और आपके इधर मथुरा में?
1: यहाँ तो बहुत गर्मी है, पानी नहीं पड़ रहा है बिल्कुल।
0: अच्छा, बारिश नहीं हो रही क्या आपके इधर?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो रही।
0: जी,
1: आज बताइए हारून भाई, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: विजय पथ का ये आपका इंतजार है, सुनवा देना आप। और दो ले सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मथुरा के हैं महेंद्र चौधरी जी और शारदा प्रसाद प्रजापति जी, और आपको रहेगा। जी,
1: आइए सुनते
0: धन्यवाद।
1: हैं आप।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: साहब गांव उत्पाद से ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ साहब।
0: स्वागत है आपका ज्ञान सिंह जी कार्यक्रम में। आप बताइए कैसे हैं।
1: मैं साहब ठीक हूँ।
0: जी
1: मेरे एक यादराम मित्र है, उनके लिए ये गाना संपर्क कर रहा हूँ।
0: जी
1: हम दोनों साथ ही पढ़े हैं, एक ही गांव से हैं। किशोर
0: जी जी
1: कुमार जी के बाद में है, ओ मेरी हंसनी कहाँ चली।

0: दोनों के लिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गाना।
1: ठीक है सर,
0: बहुत
1: मेरा
0: बहुत
1: ठीक
0: धन्यवाद आपका।
1: है सर, मेरा कॉल लेने के लिए नमस्कार साहब।
0: ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत
1: ठीक है।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति थी संजय सारस्वत की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

साथियों नमस्कार, फिल्म संगीत के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सफर के अंतर्गत आपसे एक विशेष चर्चा पर, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि दिवस के विषय में। साथियों, उस परिवार की जिसकी मेहनत हमारे हर भोजन की थाली तक पहुंचती है, उस किसान की, उस परिवार की और उस किसान के परिवार की जो सुबह सूरज से पहले उठता है, मिट्टी को सींचता है, बीज बोता है, मौसम की मार सहता है और तब जाकर हमारे घरों में अन्न पहुंचाता है। जी हाँ साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि दशक। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं उससे पहले ये गीत।

साथियों, एक बार फिर से फिल्म संगीत के इस सफर में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जैसा कि साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस समय फिल्म संगीत के सफर के अंतर्गत हम आपसे बातचीत करते हैं किसी न किसी विषय पर। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि दशक, यानी यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। साथियों, कृषि केवल खेत में फसल उगाने का नाम नहीं है। कृषि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था है और सबसे बढ़कर हमारे जीवन का आधार है। जब यही कृषि परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं तो वो केवल रोजगार नहीं रहती बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली परंपरा बन जाती है। साथियों, मिट्टी से जिसका रिश्ता है वही जीवन का सच्चा किस्सा है। बीज छोटा हो या सपने बड़े, किसान के हाथों में दोनों खड़े। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए कि आखिर पारिवारिक कृषि है क्या। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी परिवार की आजीविका का एक महत्वपूर्ण आधार खेती, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन या कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां होती हैं और परिवार के सदस्य उसमें अपनी मेहनत, ज्ञान और संसाधनों का योगदान देते हैं तो इसे पारिवारिक कृषि कहा जा सकता है। ये खेती केवल बड़े खेतों तक सीमित नहीं है साथियों। कई परिवार छोटे खेतों पर खेती करते हैं, कुछ सब्जियां उगाते हैं, कुछ फल और फूल पैदा करते हैं, कुछ पशुपालन करते हैं, कुछ मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन या मत्स्य पालन से जुड़े हैं। अर्थात पारिवारिक कृषि का दायरा बहुत व्यापक है और इसकी सबसे खूबसूरत बात है परिवार की सामूहिक भागीदारी। दादा दादी का अनुभव, माता पिता की मेहनत, महिलाओं की भूमिका और युवाओं की नई तकनीक, जब ये एक साथ मिलकर आते हैं तो खेती की एक मजबूत तस्वीर बनती है। पारिवारिक कृषि क्यों महत्वपूर्ण है? कृषि हमारे भोजन की साथियों पहले

सीढ़ी है। हम बाजार से चावल, गेहूं, दाल, फल और सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन इनके पीछे किसी किसान परिवार की मेहनत होती है। एक किसान केवल फसल नहीं उगाता, वह भविष्य उगाता है। वह मिट्टी में बीज डालता है, लेकिन उसके साथ उम्मीद भी बोता है। वह पौधे को पानी देता है, खाद देता है, उसकी रक्षा करता है। हर मौसम के साथ अपनी मेहनत को बदलता है। कभी तेज बारिश, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, कभी कीट, कभी बाजार की कीमतें। किसान परिवार इन तमाम चुनौतियों के साथ अपना काम जारी रखता है। वो खेत में पसीना बहाता रहा, हम घर में निवाला खाते रहे। उसकी मेहनत का एहसास है हम पर, और हम उसे बस किसान कहते रहे। हम उसे बस किसान कहते रहे।

साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने पारिवारिक कृषि को दुनिया भर में अधिक महत्व देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पारिवारिक खेती को मजबूत करने का उद्देश्य केवल किसानों की आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़े कई बड़े लक्ष्य हैं। खाद्य सुरक्षा, पोषण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और टिकाऊ कृषि। आज दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है साथियों, बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, जबकि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में पारिवारिक कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि साथियों, स्थानीय परिवार स्थानीय परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके क्षेत्र में मिट्टी कैसी है, कौन सी फसल किस मौसम में अच्छी होगी, किस बीज ने पहले बेहतर परिणाम दिए और पानी की उपलब्धता कितनी है। यह स्थानीय ज्ञान किसी किताब से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अब हम बात करते हैं परिवार की उस शक्ति की, जिसके बिना पारिवारिक कृषि की कल्पना अधूरी है, वो है महिलाएं। साथियों, कृषि में महिलाओं का योगदान अक्सर दिखाई कम देता है, लेकिन उनका काम बहुत व्यापक होता है। बीज चुनने से लेकर खेत में काम करने तक, पशुपालन से लेकर खाद्य प्रसंस्करण तक, घर के भोजन से लेकर पारिवारिक आर्थिक व्यवस्था तक, ग्रामीण महिलाएं अनेक भूमिकाएं निभाती हैं। कई बार महिला खेत में काम करती है, पशुओं की देखभाल करती है, घर संभालती है और बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाती है। इसीलिए पारिवारिक कृषि को मजबूत करना है तो महिलाओं को मजबूत करना जरूरी है। उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीक, ऋण, बाजार और निर्णय लेने के अधिकारों तक बेहतर पहुंच मिलनी चाहिए। जिसने बीज बचाए वह भविष्य बचाती है, जो खेत संभाले वही घर भी संभालती है। मिट्टी से जुड़ी उस शक्ति को प्रणाम, किसान परिवार की नारी को सलाम।

साथियों, आज खेती में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नई तकनीक, मोबाइल ऐप, मौसम की जानकारी, ड्रोन, आधुनिक सिंचाई, जैविक खेती, डिजिटल बाजार, ऑनलाइन बिक्री, ये सब खेती को नई दिशा दे सकते हैं। आज का युवा अगर अपने परिवार की पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ दे तो खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। हमारे युवा किसान केवल खेत में काम करने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि कृषि उद्यमी भी बन सकते हैं। वे खेती के साथ साथ अचार, मुरब्बा, दाल, आटा, मसाले, जैविक उत्पाद, डेयरी उत्पाद जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर सीधे बाजार तक पहुंचा सकते हैं। यानी खेत से बाजार तक की पूरी श्रृंखला में परिवार की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। परिवार कृषि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। श्रोताओं, प्रकृति के साथ संतुलन हमें बनाना होगा। हमारी पुरानी कृषि परंपराओं में स्थानीय बीज, जैविक खाद, फसल विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का विशेष महत्व था। आज जब जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने है तब हमें ऐसी कृषि पद्धतियों की ज़रूरत है जो पानी, मिट्टी और जैव विविधता का संरक्षण करें। कम पानी वाली फसलें, वर्षा जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, जैविक पदार्थों का उपयोग और फसल विविधता जैसे उपाय इस दिशा में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि धरती माँ है, खेत उसका आंचल, बीज हमारी उम्मीद का संबल, इसे बचाएंगे तो कल बचेगा, मिट्टी बचेगी तो जीवन बचेगा। पारिवारिक कृषि की चुनौतियाँ बहुत हैं साथियों, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पारिवारिक किसान अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। छोटे और बिखरे हुए खेत, बढ़ती लागत, सिंचाई और समस्या, मौसम में बदलाव, बाजार तक पहुंच, उचित मूल्य, भंडारण की कमी, कृषि संबंधी जानकारी की कमी, ये सभी समस्याएं परिवार की खेती को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार किसान मेहनत तो पूरी करता है लेकिन उसे अपनी उपज की उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसीलिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, ज़रूरत है कि किसान को बेहतर तकनीक मिले, बाजार तक सीधी पहुंच मिले, उसकी उपज की उचित मूल्य मिले। जी हाँ, ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें परंपरा और आधुनिकता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानना चाहिए। पुराना अनुभव, नई तकनीक यानी बेहतर कृषि। दादा दादी जानते हैं कि मिट्टी का स्वभाव क्या है, माता पिता जानते हैं कि स्थानीय मौसम और फसल का व्यवहार कैसा है, और युवा जानते हैं कि मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए।

अगर तीनों पीढ़ियां साथियों एक साथ मिल जाएं, यानी ज्ञान एक साथ आ जाए तीनों पीढ़ियों का, तो परिवार की खेती बहुत मजबूत हो सकती है। पुरखों की सीख हो, तकनीक का साथ हो, खेतों में मेहनत हो, हाथों में हाथ हो, जब परिवार साथ चले खेती की राह पर, तो खुशहाली खुद चल कर आएगी घर की चौखट पर।

साथियों, अब वक्त हो गया है हमारी चर्चा को और फिल्म संगीत के इस सफर को यहीं समाप्त करने का। लेकिन चलते चलते हम यही कहेंगे कि जब हम अपनी थाली में रोटी देखते हैं तो हमें उस किसान परिवार का चेहरा भी याद करना चाहिए जिसने उसके पीछे अपना श्रम दिया है। जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमें उनका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बीज से अन्न तक, खेत से थाली तक, किसान चलता है अपनी खुशहाली तक। उसके श्रम को सम्मान मिले, हर किसान परिवार को पहचान मिले, मिट्टी की खुशबू घर घर पहुंचे, हर खेत में उम्मीद की फसल उगे। बस जिस मिट्टी ने हमें जीना सिखाया उसे हमने कभी नहीं समझा, लेकिन आज हमें समझना होगा और उनको धन्यवाद कहना होगा कि जो हाथ अन्न उगाते हैं खेतों में, उन हाथों को कभी कम मत समझना। इसी उम्मीद के साथ पारिवारिक कृषि मजबूत होगी, किसान परिवार समृद्ध होंगे, गांव आत्मनिर्भर होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिलता रहेगा। स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

0: साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। और आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। मित्रों, स्वभाव में ही किसी व्यक्ति का स्वभाव झलकता है। राज सिंहासन पर बैठ जाओ या ना बैठ पाओ, पर किसी के हृदय में बैठ पाओ यानी किसी के दिल में जगह बना पाओ, या समझो आपका जीवन सार्थक हो गया। और यही विशाल और उदार व्यक्तित्व का भी लक्षण है। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अपनी सेहत का रखिए ख्याल, क्योंकि ये वो खजाना है जिससे सारा कर्ज चुकाना है। समझ गए? नहीं समझे तो हम समझाते हैं। साथियों, स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो खुद के साथ अपनों को भी खुश रख पाएंगे, उनकी छोटी सी छोटी बात का ख्याल रख पाएंगे। अब बढ़ते हैं आपके संदेशों की ओर, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।
1: परसों बाद
0: मैं
1: निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी।
0: गीत का आनंद लेते रहेंगे, उससे पहले कुछ संदेश साथियों हम पढ़ लेते हैं। 11:45 पर फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजाबर, सबीहा मुजाबर, मिखाइल और जैना मुजाबर का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस हांवकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र के नारायण इंगले, सोपान और आशीष मुरहेकर का संदेश भी हमें मिल चुका है। प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी गुजरात गांधीग्राम से हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है बर्फ गांव नांदूरा से शिवाजी उगले, राहुल उगले का। धामड़ गांव महाराष्ट्र के भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे और समर्थ दादा कुमारी सानिका का संदेश भी हमें मिल चुका है।

साथियों, इस गीत को हमने फिल्म आंधी से लिया है। गीत को अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत राहुल देव वर्मन का।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
1: हमसे जुड़ चुके हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर चावला बानी, लोकेश, पायल, अकीता, लक्ष्मी ध्रुव बेबी, वैदेही जोशी बेबी हांसी की, और जगदल छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू का भी संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का संदेश भी प्राप्त हुआ।

साथियों हमसे जुड़ चुके हैं वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। इसके साथ ही हमें संदेश मिल चुका है शिवागोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप का। ये हमसे जुड़े हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। अगला संदेश हमें मिला है श्री राम गोंधली उषा वैष्णवी पूनम युवराज गोंधली का। हमारे अगले श्रोता साथी हैं संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। संदेश मिल चुका है हमें अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा का। ये हमसे जुड़े हैं सदर बाजार

कुरावली से। हमारे अगले श्रोता साथी हैं सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम। अगले फरमाइश करता हैं सुशीला देवी मंदूलकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूलकर, डाबकी रोड अकोला से आप हमसे जुड़े। मधुबनी बिहार के नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी देवी, क्रांति सिंह, प्रदीप कुमार नायक, राज बहादुर शाह, शंभू शाह, करिया गुप्ता, लबरी गुप्ता का संदेश भी हमें मिल चुका है। रसेड़ा छत्तीसगढ़ के मुरलीधर साहू, लक्ष्मी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश साहू का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा, आजमीन, गुड़िया हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे अगले श्रोता साथी हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी के अकरम हुसैन, प्रिंस उर्फ डाग बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी, कलेर बिहार के मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन का संदेश भी प्राप्त हो चुका है। तुलसी मस्कीन, बीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमसे जुड़े, और साथ ही पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और समस्त खुराना परिवार हमसे जुड़ चुका है। राहुल मनवर, सरला, रोशनी चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी, साहूनगर, यवतमाल से हमसे जुड़े। अगले फरमाइश करता हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय सेन, संदेश हमें मिल चुका है। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, अक्षय लाल, राय बुल्की वाली, फलना झा, गोकुल चौक, गंगजला, सहरसा, बिहार से आप हमसे जुड़े। आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र के गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, रशिता का संदेश हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंछोर। अगला संदेश हमारे पास आया है जिला किशनगंज बिहार के रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा, सुमन, देवाश्री का। हमसे जुड़ चुके हैं अपना अगला संदेश भेज करके चंडीगढ़ सिटी से शैफाली, शैफी, डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा। हमारे अगले फरमाइश करता हैं राजनगर कांति निकेतन के रुद्रा भाई रुद्रा, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, मधुवनी एक्सटेंशन से कुशवेश्वर, कांति गुप्ता, फूलन देवी, विजय राणा, स्वर्णिमा राणा, चुलबुल स्वीटी, रागनी राय, भागलपुर से वासुकी प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, रामचंद्र, गणेश पासवान और देव आनंद मामा जी का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। आइए सुनते हैं आपका ये अगला फरमाइशी गीत।

साथियों, गीत के साथ आइए पढ़ते हैं आपके संदेश। दादरी गेट भिमानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा का संदेश हमें मिला। हमसे जुड़ चुके हैं पुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा नूतन, अमन पारा सरबेवी आराध्या और लल्लू पंडित, सौगा मगर लोड छत्तीसगढ़ के फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन का संदेश भी प्राप्त हुआ।

कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले का संदेश भी हमें मिल चुका है। चंडीगढ़ के सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनेजा का संदेश हमें मिला जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से।

हमारे अगले फरमाइश करता हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और नामदेव। ये हमसे जुड़े हैं ज़िला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। हमें अगला संदेश भेजा है हमारे अगले फरमाइशकर्ता ने, जिनके नाम इस प्रकार हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान के रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष का संदेश भी हमें मिल चुका है। अगले फरमाइश करता है तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार के काय रायकारी, मीनाकारी पुंजराज, आरती आकर्षण, जय श्री का संदेश भी मिल चुका है। बंगाली पंजा नागपुर के प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े और जानवी वैष्णवी हर्षैल का संदेश भी हमें मिल चुका है। भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार का संदेश भी प्राप्त हुआ। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमसे जुड़ चुके हैं। अगले फरमाइश करता है नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साई गायकवाड़ हमसे जुड़े हैं कोली नांदेड़ से। तेलंगाना से हमसे जुड़े हैं खाजा रिजवानुद्दीन, ख्वाजा फासीउद्दीन, आयशा तबासुम और जुबेरिया। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामड़ शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने। ये ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं। संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन लातूर से और नांदेड़ से प्रकाश जैन का संदेश हमें मिल चुका है। साथियों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को यही विराम देने का, आपसे अनुमति लेने का। चलते चलते बस यही कहेंगे कि छोटी सी उम्र में खुशियां ज़्यादा हुआ करती थी, मन में न कोई गंदगी थी, साथ खेलते लड़ते थे, एक हो जाते थे, ऐसी बचपन की ज़िंदगी हुआ करती थी। आपकी उन्हीं प्यारी यादों के साथ आपको छोड़ती हूँ। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं मृदुला नंदा।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत कलाकार मृदुला नंदा के गाए हुए कुछ ब्रज लोकगीतों का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय आप आनंद ले रहे हैं कलाकार मृदुलानंदा के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रज लोकगीतों का।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत के अंतर्गत मृदुला नंदा के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रजलोक गीतों का। आइए सुनते हैं मृदुला नंदा के ही स्वर में कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी ब्रजलोक गीत।

0: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज की कलाकार थी मृदुला नंदा। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इस समय अपराह्न के 1 बजने को है। समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा

0: कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुड्डा और म्यांमा की थेत हतारथुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। संवेद सर्वा में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे देशगान अपराह्न 1:10 पर। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक अपराह्न 1:15 पर, जिसमें होगी चर्चा, विषय होगा वृक्षारोपण एवं आयुष्मान जन आरोग्य योजना विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे आईना भेंटवार्ता, ऐसे रचाएं हाथों में मेहंदी, जानकारी देंगी सेफाली अग्रवाल और इनसे बातचीत करेंगी रश्मि शर्मा। अपराह्न 1:45 पर श्रोता साथी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित आप सुन सकेंगे अपराह्न 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी के साथ, जिसमें आज की बात के अंतर्गत गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना विषय पर होगी चर्चा। साथ ही योग अपनाएं स्वस्थ रहें विषय पर भी होगी चर्चा। संध्या 6:10 पर समवेत स्वरों में आप सुनेंगे देशगान। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में लोक कथा के अंतर्गत मेहनत को फल, कथाकार होंगे यदुनंदन गोस्वामी, आप सुन सकेंगे संध्या 6:15 पर। फिल्मी व गैर फिल्मी संगीत

गीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे संध्या 6:30 पर। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आप सुन सकेंगे संध्या 6:50 पर।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 पर पेश किया जाएगा। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम मनी टॉक और रात्रि 9:45 पर कार्यक्रम मंथन दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण लखनऊ केंद्र से आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें उस्ताद इकबाल अहमद खां का ख्याल गायन राग होगा। मारू विहाग तबले पर संगत करेंगे गुलाम साबिर।

अभी आप सुन रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मीनू अग्रवाल।

दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। सूरज की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर, तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, तभी कर पाओगे इस पर बसेरा। जी, इन लाइनों को सुनने के बाद ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने अनमोल हैं। लेकिन कुछ लोग ये सब जानते हुए भी मानते और समझते क्यों नहीं? अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा। अब जरा सोचो, ऐसा सभी सोच लेंगे तो फिर कोई भी पेड़ पौधे लगाने की पहल क्यों करेगा? यही तो मनुष्य का स्वार्थ है। पेड़ों से छाव, फल, फूल, औषधि आदि तो सभी

को चाहिए, लेकिन जब बात वृक्षारोपण की आती है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार हो जाता है। अरे जब पेड़ पौधे हमें निस्वार्थ सब कुछ देते हैं तो हम ही पीछे क्यों रहें? हमारी एक छोटी सी पहल भविष्य में ना जाने कितने काम आएगी। जब एक नन्ना पौधा पेड़ बनता है तो इसने की छाव में ना जाने कितनों को शीतल कर देता है। चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली हमारे मन को खुशी से भर देती है। यदि आप यही हरियाली चाहते हैं तो पेड़ पौधों को लगाने की पहल सबसे पहले अपने घर से ही करनी होगी। यदि आप घर में थोड़ी सी जगह गार्डनिंग के लिए छोड़ दें तो उसमें सभी तरह के पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और तो और, जगह की कमी के कारण छोटे छोटे पौधे घर की छत या रसोई पर लगा सकते हैं। इससे छत और रसोई गार्डनिंग को नया रूप मिलेगा और जब दूसरे लोग हमें ऐसा करते देखेंगे ना, तो ये सभी घर से होकर समाज और धीरे धीरे दुनिया के हर कोने में पहुँच सकता है। अब बात आती है पेड़ पौधों के कटाव को रोकने की। तो हमें पेड़ पौधों की कटाई रोककर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि जितने पेड़ पौधे होंगे बारिश भी उतनी ही अच्छी होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम होगा। ये हमें ताज़ी हवा और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम पर्याप्त खुलकर सांस ले सकें। पेड़ पौधे न केवल हवा व पर्यावरण का प्रदूषण कम करते हैं, बल्कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। बच्चों को भी प्राकृतिक के नज़दीक रहना सिखाएं, जिससे वो भी पेड़ पौधों को लगाकर उनकी देखरेख कर सकें। हरियाली भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। इसी से जीवन में आशा, उल्लास, उत्साह, उमंग व ताजगी जैसे भाव जगते हैं। हरियाली ना हो तो किसी भी ऋतु का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हरियाली बचाएं। जी, ये तो थी हमारी आज की चर्चा। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, तेरी दीवानगी का आलम क्या कहें साहिब, तेरी दीवानगी का आलम क्या कहें साहिब, तेरी परछाई तक मुझको ढूंढा करती है।

मेहंदी जो मिटकर हाथों पर रंग लाती है, मेहंदी जो मिटकर हाथों पर रंग लाती है, दो दिलों को मिलाकर कितनी खुशियां दे जाती है। जी, मेहंदी का रंग होता ही ऐसा है, जिसमें भी हाथ जिसके भी हाथों में लगती है, प्रेम और खुशी का संदेश दे जाती है। इस समय तो त्यौहार ही ऐसे चल रहे हैं जिसमें इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनों में मेहंदी लगाना तो बनता ही है। और बहनों, मेहंदी तो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन बात आती है कि मेहंदी किस तरह से लगाई जाए।

0: जिससे ये हमारे हाथों पर अच्छा रंग दे सके। तो इन सभी की जानकारी के लिए हम लाए हैं आईना क्रम में ये वार्ता, ऐसी रचाएं हाथों में मेहंदी। जानकारी देंगी शेफाली अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि शर्मा।
1: बहनों, मेहंदी का हम महिलाओं के लिए हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है और इसीलिए कहा भी गया है, दुल्हन के लिए सुहाग का श्रृंगार है मेहंदी, हथेली पे सजा साजन का प्यार है मेहंदी, महका कर सांसों को जब भी रंग लाती है, मन की फुलवारी की हर कली मुस्कुराती है। बहनों, इसी संदर्भ में आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है अपनी मेहंदी एक्सपर्ट शेफाली अग्रवाल को। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: शेफाली जी। आज हम आपसे मेहंदी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इस समय अभी जो सावन का महीना चल रहा है, और सावन का महीना ही क्या, हमारे यहाँ तो पूरे साल भर त्यौहार रहते हैं, और इन त्यौहारों पे अगर हम महिलाएं मेहंदी ना लगाएं तो हमारे त्यौहारों का जो मज़ा है वो अधूरा सा रह जाता है। तो इसलिए मेहंदी तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आज इसी विषय में हम आपसे बहुत सारी जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मेहंदी लगाने से पहले आप हाथों को किस प्रकार से तैयार करेंगे, यानी हाथों को कुछ खास उनके लिए देखभाल की जरूरत होती है, किस तरीके से आप पहले उसका बेस तैयार करेंगे?
2: देखिए, जब भी हम मेहंदी लगाएं तो सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से धोकर तौलिए से सुखा लें। ये नहीं है कि हमारे हाथों पे किसी तरह से कोई ऑयल वगैरह लग रहा हो। फिर रुई से मेहंदी का तेल पूरे हाथ पे अच्छे से लगा लें। तेल हम इसीलिए लगाते हैं ताकि वो मेहंदी ना तो फैले और उसका रंग भी उस पर अच्छा ही आता है।
1: अच्छा जी। अच्छा, अब ये तो बात हो गई हाथों की
2: जी।
1: अब इसका जो पेस्ट है वो किस तरीके से तैयार करें हम, कि हमारा जो मेहंदी का पेस्ट है अच्छी तरीके से हम अपने हाथों पे कलात्मक डिज़ाइन जो भी बनाना चाहते हैं वो अच्छे बने।
2: देखिए, मेहंदी का जो पेस्ट है वो हमारी मेहंदी की डिज़ाइन उसी पेस्ट पर निर्भर करती है
1: जी।
2: जैसे मेहंदी पाउडर को सबसे पहले हमें दो बार किसी बारीक मलमल के कपड़े में छानना चाहिए। फिर हम उसे 2 घंटे तक चाय के पानी में भिगो कर रखें, उसके बाद उसे अच्छी तरह से फेंटे। हमारा जो घोल है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए,
1: यानी मीडियम
2: मीडियम ही होना चाहिए। हाँ जी। और कोन की नोक को डिजाइन की मांग के अनुसार मोटा या बारीक करें और मनचाहा डिजाइन बनाएं। हम उसके सूखने के बाद उस पर नींबू चीनी का मिश्रण भी उसके ऊपर लगा सकते हैं।
1: देखिए, आपने ये जो बात कही नींबू चीनी के मिश्रण की, तो अब आप नींबू चीनी का जो मिश्रण हम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, क्या कोई फायदा होता है?
2: हाँ जी, देखिए नींबू चीनी लगाने से मेहंदी एक तो इसका ये फायदा है कि वो सूखकर तुरंत झड़ती नहीं है। जब हमारी मेहंदी सूख जाती है वो झड़ने लग जाती है, तो फिर हमारी मेहंदी का उस पर कलर नहीं चढ़ता है। और यदि हम इसे लगा लेते हैं तो हमारे जो इसका कलर है मेहंदी का वो अच्छी तरह से इसके ऊपर आ जाता है,
1: मतलब चिपक जाती है नींबू और चीनी।
2: हाँ जी, हाँ जी। चिपकने से उसका कलर अच्छा आता है,
1: ज्यादा समय तक वो लगी रहती है। तो ये जो नींबू चीनी का मिश्रण है इसको हम किस तरीके से बनाएं, क्या इसमें पानी में मिलाया जाता है या फिर डायरेक्ट नींबू चीनी घोल बनाते हैं?
2: इसे नींबू चीनी के मिश्रण में पानी नहीं मिलाया जाता है
1: जी।
2: पहले आप नींबू को निचोड़ लीजिए कटोरी में, उसके बीज अलग कर दीजिए और उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालकर उसे चम्मच से मिला लीजिए। जब वो मिल जाए तब आप उसे रुई की सहायता से उसे मेहंदी पर हल्के हल्के हाथ से लगा लीजिए।
1: तो ये क्या बस एक बार ही लगा लें तो काफी होता है या बार बार रिपीट करते?
2: इसे बस एक बार लगाइए, यदि ज्यादा लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही चिपकन हो जाती है। बस एक बार लगाने से ही मेहंदी उस पर अच्छी तरह से चिपक जाती है,
1: पकड़ लेगी,
2: पकड़ लेती है
1: हाथों को, पकड़
2: जी, जी।
1: अब हमारी जो महिलाएं हैं अक्सर कर उनको ये शिकायत रहती है कि भाई हम कितना भी कुछ भी कर लें हमारे जो हाथों की मेहंदी का रंग है वो गहरा नहीं होता।
2: हाँ जी।
1: हल्की मेहंदी रचती है
2: जी।
1: तो जब मेहंदी अगर हाथों में हल्की रचे तो मजा भी नहीं आता।
2: नहीं, बिल्कुल सही बात है।
1: और इसीलिए हम सभी का यही प्रयास होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं या तो हम खुद लगाते हैं या फिर किसी और के थ्रू हम अपने हाथों में लगवाते हैं, तो हमारा प्रयास ये होता है कि मेहंदी डार्क लगे, जो देखने में भी अच्छा लगे। तो ये डार्क कलर किस तरीके से आ सकता है?
2: देखिए, इसके लिए ये तो एक तो अपने हाथ जो हमारी हथेली की गर्मी होती है उस पे भी मेहंदी का रंग निर्भर करता है, पर उसके लिए हम थोड़े से प्रयत्न भी करते हैं। इसके लिए या तो पहले आप मेहंदी पाउडर में नींबू का रस छान के और उसमें नीलकरी के तेल की 8-10 बूंदे डालकर 2 घंटे तक मिलाएं, 2 घंटे तक मतलब उसको मिला के रख दें, और हाँ तो वो जो है और लुगदी जैसा बन जाएगा। फिर आप उसको

0: में भर के और लगा सकती हैं।
1: जी
0: या इसके अलावा ये भी कर सकती हैं आप कि पानी में इमली और चाय की पत्ती डालकर उसे उबालें और उस पानी को ठंडा करके छान करके मेहंदी पाउडर में डालें, फिर उसे 2 घंटे तक उसे भिगोकर मेहंदी को, और उसके बाद उसे मिला के और कोन में भरकर लगा लें।
1: यानी आपने 2 चीजें बताई, पहला नीलगिरी का तेल आप इसमें मिला सकती हैं, दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में नीलगिरी का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप इमली का जो पानी है चाय की पत्ती के साथ में उसे उबालें और उसमें आप अपना पेस्ट मेहंदी का बनाएं।
0: हाँ, हाँ, बस उसे छान जरूर लें उस पानी
1: हाँ,
0: को।
1: तो ये आप कर सकती हैं
0: जी।
1: तो मेहंदी को हम आमतौर पर कितनी देर तक अपने हाथों में रखना चाहिए?
0: देखिए मेहंदी को कम से कम 4-5 घंटे तक उसे हाथ में, कम से कम 4 घंटे तो उसे हाथ में रखना चाहिए। पर ये ध्यान रहे कि हाथों पर उसको मेहंदी को जब हम उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद उस पर पानी का स्पर्श 10-12 घंटे तक ना होने पाए। ऐसा करने से मेहंदी का रंग अधिक गहरा होता है।
1: पानी में आपको हाथ नहीं डालना
0: हाँ, मेहंदी हटाने के बाद भी 10-12 घंटे तक हम पानी में हाथ ना डालें, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए।
1: पर फिर भी शेफाली जी अक्सर होता है कि जैसे हाँ, सपोज हमने रात को मेहंदी लगाई है, सुबह हम जब उठते हैं तो हमें घर के जो रूटीन वर्क है वो करने ही होते हैं, तो क्या मेहंदी लगाने के बाद में कुछ ऐसा और कुछ लगाया जा सकता है अपने हाथों पे जिससे कि बहुत ज्यादा पानी का हमारे हाथों पे असर ना हो?
0: देखिए मेहंदी हटाने के बाद जब मेहंदी हम उखाड़ लेते हैं तो बहुत से लोग उस पर सरसों का तेल जो है, अचार का जो तेल है वो लगा लेते हैं, इससे भी रंग बहुत अच्छा आता है। नहीं तो एक ये है कि आप एक तवा गरम कीजिए, उस पर 4-5 लौंग डाल दें और देखिए धुआं जब जैसे उठने लगे उस पर दोनों हाथों को सेकें, इससे मेहंदी का रंग खूब गहरा आता है। जिनके हाथों पर मेहंदी नहीं रसती है उनके लिए नुस्खा बहुत ही कारगर होता है
1: जी। तो लौंग का धुआं भी आपके हाथों को बहुत डार्क कर सकता है आपकी मेहंदी को,
0: बहुत अच्छा रहता है ये।
1: अब आजकल यूँ तो बहुत सारे डिज़ाइन हैं मार्केट में, कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहता है। पहले राजस्थानी मेहंदी का, मारवाड़ी मेहंदी का बहुत क्रेज था, आज भी है, लेकिन अब एक जो नया ट्रेंड आया है अरेबियन मेहंदी का
0: जी,
1: तो उसके बारे में और थोड़ी सी आप हमें जानकारी दीजिए।
0: देखिए अरेबियन मेहंदी में क्या होता है, जो उसकी आउटलाइन होती है वो डार्क होती है और सेंटर लाइट होता है। आउटलाइन हमें बनाने के लिए आजकल क्या करते हैं, हेयर डाई के पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं और आधे घंटे के बाद उसी पेस्ट को कीप में भरकर उसकी आउटलाइन बना लेते हैं। जी
1: तो मतलब 2 तरीके से इसके आपको कोन रखने पड़ेंगे, एक डार्क जिसका कलर आए
0: जी, जी।
1: और एक थोड़ा सा लाइट जिसका कलर आए, तो 2 तरीके के आप अरेबियन में कोन यूज कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप एक कौन से भी काम चला सकते हैं,
0: एक कौन से काम चला सकते हैं, जो आउटलाइन के लिए जो कोन बनाते हैं वो थोड़ा हम मोटा रखते हैं जिससे कि उसकी आउटलाइन जो है वो थोड़ी डार्क,
1: यानी उसको थोड़ा सा कैंची से काट के
0: उसका छेद जो है थोड़ा मोटा रखते हैं जी। और जो है बीच का लगाने के लिए उसका जो कोन है वो महीन रखते हैं जिससे आउटलाइन हमारी अलग ही उभर कर दिखाई देती है।
1: शेफाली जी मेहंदी जब लगाते हैं हम कई बार तो उसमें तिनके आ जाते हैं
0: जी,
1: तो इसके लिए कहते हैं कि भाई मेहंदी को आप जब घोल है तो उससे पहले आप छानिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है
0: जी। ये तिनके इसीलिए आते हैं क्योंकि यदि हम मेहंदी को अच्छी तरह से नहीं छानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मेहंदी को 2 बार उसे महीन कपड़े में छानना चाहिए, जिससे कभी कोई तिनका रह भी जाता है वो यदि हम दूसरी बार छानते हैं तो वो निकल जाता है। यदि तिनका होगा तो कौन से मेहंदी निकलेगी ही नहीं
1: जी। अभी तो हमने जैसे आपसे बात की अरेबियन मेहंदी के बारे में, इसके अलावा और कौन कौन से तरीके आजकल हम अपना सकते हैं मेहंदी लगाने के लिए?
0: देखिए मेहंदी लगाने के लिए हम बारीक सलाई से या प्लास्टिक के कागज के कोन का बना करके उसका उपयोग करते हैं। आजकल तो सभी कोन से लगाने में इच्छुक होते हैं, उसका यही फायदा होता है कि छोटी से छोटी बालिकाएं भी आसानी से मनचाहा डिजाइन बना सकती हैं। नहीं तो आजकल बाजार में बने बनाए टैटू भी मिलते हैं जिनको भी हम हाथ पर लगा सकते हैं।
1: तो आजकल ये जो बाजार में बने बनाए टैटू मिल रहे हैं तो कि इनको क्या कितने समय तक ये बने रहते हैं, कितने टाइम तक आप इनको लगा के रख सकते हैं?
0: ये टैटू ज्यादा समय के लिए नहीं लगाए जाते हैं, ये तो वही लोग लगवाते हैं जो थोड़े समय के लिए ही मेहंदी अपने हाथ पर सजाना चाहते हैं, या किसी को तुरंत पार्टी में जाना हो तो वो अपनी ड्रेस की मैचिंग के अनुसार टैटू लगा सकते हैं। पर टैटू ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी हमारे हाथों पे एलर्जी भी हो सकती है,
1: स्किन एलर्जी हो जाती है। यानी टैटू जो है एक शॉर्ट टर्म में आप इसको यूज कर सकती हैं, अगर आपके पास में आपको समय

0: नहीं मिला है मेहंदी लगवाने को, तो आप अपने हाथों की शोभा इससे बढ़ा सकती हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा आप यूज ना करें क्योंकि इनसे आपकी स्किन को एलर्जी हो सकती है।
1: हमारी सांस्कृतिक पहचान तो पारंपरिक मेहंदी ही देती है
0: जी।
1: मेहंदी जहाँ सौभाग्यशाली होने का गौरव प्रदान करती है, वही बदलते मौसम में ठंडक और राहत का एहसास देती है। इसीलिए यदि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारी
0: पारंपरिक मेहंदी है
1: इसी
0: वही हम इस्तेमाल करें, उसी का ही हम प्रयोग करें
1: जी।
0: एक और आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी कि हाथों में तो हम मेहंदी लगाते ही लगाते हैं, हम अपने बालों में भी कंडीशनिंग के लिए या फिर उनको कलर करने के लिए हम मेहंदी का प्रयोग करते हैं, तो वो पेस्ट हम किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से हम अपने बालों को, उससे पहले हमारे बाल कैसे होने चाहिए, उसके बाद में हमें कुछ खास देखभाल की जरूरत होती है, तो वो भी बताएं।
1: देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल जो हेयर कलर वगैरह चल रहे हैं जिनका आजकल बहुत प्रचलन है, वो किसी ना किसी रूप में हमारी जो सिर की त्वचा है उसको हानि पहुंचाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो ये मेहंदी है इसी का पेस्ट बालों में लगाएं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बालों को रंगने का तरीका होता है जो हमारे सिर की त्वचा को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाता है और एक जो है कंडीशनर के साथ साथ अच्छा रंग भी देता है। इसके लिए ये है कि मेहंदी लगाने से पहले बालों को शैम्पू से धो लें और मेहंदी को रात में एक लोहे की कढ़ाई में मेहंदी को भिगोएं, उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती का पानी, दही, कत्था ये डाल करके रात में उसे, या आप चाहे तो उसमें कॉफी, अंडा ये डाल के उसे पेस्ट बना के रात में, आंवला पाउडर, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है तो आप चाय पत्ती के पानी में ही भिगो के कत्था डाल करके और थोड़ी सी नींबू की बूंद डाल करके मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में रात में रखिए और उसे सुबह बालों में लगा के 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद पानी से बालों को धो लीजिए। 2-3 दिन के बाद आप उसमें बालों में फिर से आप शैम्पू कर सकती हैं, तो इससे बालों में एक अपना ही एक प्राकृतिक रंग आता है और ये किसी तरह से हानिकारक नहीं होता है।
0: अच्छा, जब हम बालों में मेहंदी लगाते हैं तो क्या उससे पहले भी हमारे बाल शैम्पू से धुले हुए हों या अगर ऑयल लगा हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं है?
1: देखिए यदि बालों में पहले से ऑयल लगा होगा तो मेहंदी का रंग उतना अच्छा नहीं चढ़ेगा। कोशिश करना चाहिए हमें कि शैम्पू करने के बाद बाल सुखाकर हम मेहंदी लगाएं और मेहंदी लगाकर हम जब बालों को धो लें उसके बाद तेल लगाएं। जैसे हाथों पर हम मेहंदी हटाने के बाद तेल लगाते हैं तो मेहंदी का कलर और ज्यादा चढ़ता है, उसी तरह से बालों में भी हम पानी से धोने के बाद तेल लगा के दूसरे दिन शैम्पू कर लें तो कलर ज्यादा अच्छा आता है
0: जी। चलिए आज शेफाली जी आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी आयनक्रम में ये वार्ता, ऐसी रचाएं हाथों में मेहंदी, जानकारी दे रही थी शेफाली अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रही थी रश्मि शर्मा। किस्मत की लकीरें भी आज इठलाई हैं, तेरे नाम की मेहंदी जो हाथों पर रचाई है।

हम सभी अपनी जिंदगी में एक अच्छे स्वास्थ्य की चाह तो जरूर रखते हैं। अच्छा स्वास्थ्य पाना या पूरी तरह से स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता। छोटी मोटी बीमारियां का तो कुछ नहीं है जो ज़्यादातर लगी रहती हैं, लेकिन बात जब ऐसी बीमारी की हो जिसका इलाज तो संभव है लेकिन खर्चा इतना हो कि हम मैनेज ना कर सकें तो ये बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है। तब कितना कठिन हो जाता है ज़िंदगी को बचाना। इसलिए इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत कवर की जाने वाली गंभीर बीमारियों की सूची प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक की निशुल्क उपचार का लाभ दिया जाता है। इसमें योजना के तहत देश भर में किसी भी चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की जांचें, भर्ती के दौरान उपचार व भोजन और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद तक का चेकअप व दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। अब बात आती है आयुष्मान कार्ड एवं निशुल्क उपचार का लाभ कैसे प्राप्त करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप पारिवारिक संपूर्ण आईडी के साथ एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, सरकारी पहचान पत्र ले जाएं और फिर कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, यूटीआई, ITSL केंद्र पर जाकर पात्रता जाँच कराएं और आयुष्मान कार्ड बनवाएं। फिर भर्ती के समय अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाएं और निशुल्क उपचार का लाभ उठाएं। तो ये तो थी हमारी आज की चर्चा। हमारा समय हो गया है, घड़ी ने इशारा कर दिया है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, सब कुछ हासिल नहीं होता ज़िंदगी में यहाँ, सब कुछ हासिल नहीं होता ज़िंदगी में यहाँ, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। इन्हीं कुछ लाइनों के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मीनू अग्रवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आपकी परछाइयां के इस गीत को। इस गीत को अपनी आवाज दी लता मंगेशकर ने, राजा मेहदी अली खान साहब ने इसे लिखा और संगीत मदन मोहन का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फ़िल्म फ़र्ज़ के इस गीत को अभी आपने सुना। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

इस गीत को हमने फिल्म बलमा से लिया है। आवाजें हैं आशा भोसले और नितिन मुकेश की। गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का।

साथियों, फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा

0: कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे डीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइयाह अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्र

0: खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला

0: जंगल शब्द भारत की ही देन है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
0: जी।
1: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना
0: जी,
1: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया। है ना मजेदार बात?
0: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
1: जी।
0: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
0: जी।
1: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
0: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
1: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
0: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
1: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
0: जी।
1: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
0: जी।
1: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
0: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
1: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
0: जी।
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
0: जी।
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
0: इसका संबंध खानपान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
1: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT Book PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: आशुतोष, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं, YouTube ऑफिशियल चैनल पर आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, पंडित बिरजू महाराज।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
1: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम

0: और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
1: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था। यही ब्रिजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
0: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम ब्रिजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
1: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
0: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
2: प्रणाम पिताजी।
3: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन
2: लेकिन क्या पिताजी?
3: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
2: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
3: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
2: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
3: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
2: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
3: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
2: जी पिताजी।
0: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
1: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर साहब जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है। और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ, पर नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया

0: हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था, तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
1: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
0: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा, पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या है। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू मैं, अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए, और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, करें अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
0: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेही ताते ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथेही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं। तो
2: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान

0: विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
1: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला।

0: परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया। नाट्य आलेख अजीत होरो। संपादन जगबंधु जाना। निर्माण विमलेश चौधरी। विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
1: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
2: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
1: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
2: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
1: भगत सिंह।
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
6: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
7: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
6: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
7: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
6: ये इस शीशी में क्या है?
7: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
6: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
7: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
6: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
7: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
1: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
3: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
3: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
1: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
2: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
5: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मैं एनसीसी कैडेट भी हूँ,
1: जी
0: तो मेरे हिसाब से एक जो स्टूडेंट के लिहाज से एक नौजवान को ब्लड डोनेशन कैंप में पार्ट लेना चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव में पार्ट लेना चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, प्लांटेशन ड्राइव हो उसमें पार्ट लेना चाहिए। अभी हमारे मुल्क में तिरंगा रैली हो रहा है, नौजवान चाहे तो उसमें पार्ट ले सकता है, उससे हमारे
2: भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी

लिसनर्स के लिए, क्योंकि आपके नाम, आपकी रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल की जाती है। कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु कामचोर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं और अपने दिल से प्रोग्राम पसंद करें। संदीप मक्कड़ भी है हमारे साथ, और आप याराना फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत, कमल साहनी के साथ जालंधर से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। सुमेरा परवीन का भी मैसेज हमें मिलता है, आपके साथ है मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सदस्य हैं आपके साथ। और मैसेज मिलता है हमें स्वरूप आनंद सरजल का, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ हैं और जिंदगी और तूफान फिल्म से आपने गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। इसके बाद प्रवीण

में लिख भेजी है। इसके बाद प्रवीण रंपारा का भी ईमेल हमें मिला है। पूजा पायल जगदीश जौहरी आपके साथ है, गांधीग्राम गुजरात से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और मैसेज आता है प्रकाश गोगिया साहब का भी आपके साथ हैं मैसेज भेजने वालों में। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप गैम्बलर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, भगवती सोलंकी, प्रेम गुरु, नन्हे पहलवान, प्रकाश गोगिया, सत्य प्रकाश गोयल, मनोहर लाल गांधी, बाजार सीताराम, बहुत पुराने लिसनर हमारे एफएम गोल्ड के, सब एक साथ एक ईमेल में नाम लिखकर भेज रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। मल्होत्रा साहब का मैसेज आता है, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। कालका से आपके साथ हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी। अगला मैसेज है हमारे पास, देखिए अब ये जो पॉज है ना ये क्यों आता है, इसका कारण है कि एक ही सेंडर 8-10 ईमेल एक साथ भेज देता है, तो जब तक हम दूसरे ईमेल पे पहुंचते हैं तो ये होता है। लुबना अंसारी का मैसेज हमें मिला है, और लुबना अंसारी प्रेम पर्वत फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, गंजुंडवारा से आपके साथ है रियाज अंसारी, आफ्ताब, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना और आलिया अंसारी। साथ ही मैसेज आता है हमारे पास गुप्ता जी का, ये गुप्ता जी कौन है, वीरेंद्र कुमार, अंजलि, योगिता, गजेंद्र और बाजार चौक से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। साथ ही भारत भूषण का मैसेज हमें मिलता है आपके साथ है अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष, जिंदगी और मौत फिल्म से आपने गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। संदीप मकड़ का मैसेज मिलता है, और ये मैसेज मैं दोबारा पढ़ रही हूं ऐसा मुझे लगा। अगला मैसेज हमारे पास आता है साधना गोयल का, मस्कीन दादा हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं तुलसी, वीना, आशीष, मस्कीन, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। अजीत भावसार हैं हमारे साथ, आपके साथ है प्रमिला, भावेश कुमार भावसार, और मैसेज मिलता है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और आप किसी भी गाने को सुनना चाहते हैं, अफरोज शेख प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, साधना गोयल है हमारे साथ, रजनीगंधा फिल्म से श्रीपाल गोयल के साथ गाना सुनना चाहती हैं, और मुकेश कुमार साहब का मैसेज मिलता है, और आप क्या कहते हैं आज काशवी का बर्थडे है, वो पूरे एक साल की हो गई है, उसके बर्थडे पर आप अपनी पसंद का कोई गाना प्ले करें, मुकेश, जतिन, अनन्या, पूनम, ममता, ऐसा लिखकर भेजते हैं कटिहार से। तो आपने हमें मैसेज लिखकर भेजा छोटी नन्नी परी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष। ये प्यारा सा गाना फर्ज फिल्म से हम एफएम गोल्ड में आपके लिए प्ले कर रहे हैं।

0: बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू
0: कोई लाता गुड़िया मोटर।

बिल्कुल, जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही हूं, और ये मैसेज हमारे पास आया है राजे जाधव देशमुख परिवार का। प्रशांत राजे माधव जाधव देशमुख, जग्गुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख, सन्यासी फिल्म से आपने इस गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में। जाने से पहले ये गाना आप सबके लिए, आप सभी ने मैसेजेस लिखकर भेजे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर नाम किसी का छूट गया है तो माफ कर दीजिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकलनों का अनावरण किया। इन दस्तावेजों में सदस्य देशों की बेहतरीन कार्यप्रणालियों, ज्ञान और नवाचारों को शामिल किया गया है। ये संकलन ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह में हुए विचार विमर्श का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा नहीं करना चाहिए।
1: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सहप्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का ये अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। इसे देश के सबसे चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले ट्रेकिंग मार्गों में से एक माना जाता है। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। केरलम में विजयंगम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयंगम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जहाज में 2 कंटेनर भेजे गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विजयनगरम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।

0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The 12th BRICS Environment Ministers meeting concluded successfully today at Bharat Mandapam in New Delhi under India's BRICS chairship in 2026. The two-day meeting aimed to foster consensus and strengthen environmental cooperation among the BRICS nations.

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, देश में रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने को सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गरीब और बेरोजगारों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और मजदूरी रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एक योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये योजनाएं देश के गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें गांव में ही कमाई देने के साधन के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों को सीधे रोजगार देकर मजदूरी प्रदान करना है जिनके पास अपनी जमीन या व्यवसाय नहीं है। मनरेगा योजना के बारे में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत अकुशल शारीरिक श्रम मजदूरी की सुरक्षा देना, ये कानूनी अधिकार आधारित योजना है जिसमें काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। गरीब कल्याण स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को उनके गांवों के पास ही 25 अलग अलग प्रकार के कार्य क्षेत्रों जैसे कुआ निर्माण, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य में रोजगार देना, जो स्वरोजगार योजनाएं हैं जिससे कि गरीब अपना खुद का छोटा व्यापार शुरू करके आर्थिक मदद और बैंक लोन और सब्सिडी ले सकते हैं। इसमें है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर स्वरोजगार के अवसर देना, बैंकों से कम ब्याज पर लोन वित्तीय सहायता और आजीविका चलाने के लिए कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में ट्रेनिंग, नया उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 50 लाख तक का लोन और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक का लोन मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए 25-35% और शहरी क्षेत्रों के लिए 15-25% तक सरकारी सब्सिडी मिलती है। ग्रामीण बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवसायों जैसे सिलाई, कंप्यूटर, डेयरी फार्मिंग आदि, इनकी मुफ्त ट्रेनिंग और कौशल विकास देना, ट्रेनिंग के बाद बैंक से लोन दिलाने में मदद की जाती है।

0: हड्डी संबंधी समस्याएं और उनका निदान विशेषज्ञ वार्ताकार हैं डॉक्टर निर्विकल्प और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, यूं तो हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में आपको समय समय पर बताते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक विशेष समस्या जो हड्डी संबंधी हम और आपके सामने आती है, कभी हम अचानक जा रहे होते हैं या कुछ ऐसा हो जाए तो हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, तो हड्डियों को जोड़ दिया जाता है, ये एक बात है। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि बढ़ती हुई उम्र हो तो जोड़ों का दर्द हो जाता है, घुटनों के दर्द की अक्सर हमारे बुजुर्ग लोग शिकायत करते रहते हैं, मौसम भी कभी बदलता है, ठंड का होता है तब भी समस्याएं होती हैं, कई बार मौसम नमी वाला होता है जिसमें हवाएं चलती हैं पूरब की, तो उसमें भी लोग शिकायत करते हैं पुरानी चोट के बारे में कि दर्द हो रहा है। तो हड्डियों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हमारे और आपके सामने आती रहती हैं। ये क्यों कर पैदा होती हैं, क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, कुछ सुझाव जो हमारे और आपकी जानकारी में होने चाहिए जिनको हम ट्रा करके हम बच सकते हैं, तो ये आज हमारे चर्चा के विषय हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर निर्विकल्प अग्रवाल साहब हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार
1: जी।
2: जैसा कि सिंह साहब आपने अभी बताया कि आजकल जोड़ों में समस्याएं ज़्यादा बनती हैं, लेकिन मैं इसमें अपनी तरफ से एक बात और जोड़ना चाहूँगा।
1: बिल्कुल जी।
2: कि ये केवल बढ़ती उम्र की समस्या अब नहीं रह गई है, ये मध्यम उम्र के लोगों में भी जोड़ों में दर्द काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, और घुटनों के साथ साथ गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, ये भी अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन समस्या बन गई है। और जहाँ तक मैं इसको जोड़ कर देखता हूँ, ये इसका बहुत सारा संबंध हमारी जीवन शैली और हमारे खान पान से है
1: जी,
2: कि हम अपने लिए समय जितना हमको चाहिए नहीं निकाल पाते हैं, जितना व्यायाम हमको करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये समस्याएं आजकल और ज़्यादा जटिल रूप में और ज्यादा कॉमन रूप में देखने में आ रही है
1: जी। आपने कहा कि जो बुजुर्गों की या बढ़ती उम्र की समस्या सामान्यतः हड्डियों से हम जोड़ के देखते थे, लेकिन अब उम्र काफी घटती जा रही है, जीवन शैली की आपने बात की, तो लोग मतलब कार्य करने का जो तरीका है वो इस तरह का हो गया है, कार्य करने का जो वातावरण है उस तरह का हो गया, या काम ही कुछ इस तरह के हो गए, या फिर हम ध्यान नहीं देते, लापरवाही अपने जीवन के प्रति हमारे स्वभाव में एक आ गई है, ये एक जो मिला जुला सा वातावरण बन रहा है, इसमें कैसे लोगों को अवेयर होना चाहिए, जानकारी
2: ये को सभी कुछ का मिला जुला स्वरूप है, जिसके फलस्वरूप ऐसा होता है। जीवन शैली के अंदर जैसे पहले होता था कि हमारा एक जैसे सुबह हमको ऑफिस जाना है या काम पर जाना है, शाम को नियत समय वापस आ जाना है, घर पर लौट कर आ जाना है, बाहर उतना जाना नहीं होता था, आदमी घर में ज्यादा रहता था, घर का बना हुआ खाना ज्यादा यूजुअली खाया जाता था, आजकल वो चीजें थोड़ा कम हो गई हैं, एक्सरसाइज के लिए समय होता था, आजकल आप बच्चों को ही देख लीजिए कि वो सुबह स्कूल जाना है, शाम को पढ़ना है, तो खेलने के लिए तो कई बार बच्चों के पास समय नहीं होता, फिर उसमें आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, तो जब तक आप बाल्यावस्था से ही आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करोगे, आप खेलोगे नहीं, तो आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, तंतु कैसे मजबूत बन सकते हैं, वो इंडोर गेम्स खेलने से या इंडोर में मोबाइल देखने से या टीवी देखने से तो मांसपेशियां मजबूत नहीं बनने थे। दूसरा जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल में लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जहां पर आपको एक जगह बैठकर काम ज्यादा करना है, तो उसमें भी आपको गर्दन पे स्ट्रेस पड़ता है, आपका ठीक पोस्चर नहीं रहता, कई बार जो कुर्सियां हैं वो आरामदायक नहीं होती या फिर बहुत ज्यादा आरामदायक होती हैं, जिससे कमर दर्द बनने लग जाता है, तो सभी कुछ का प्रभाव है। खाना पीना, पहले खाने का नियत समय होता था कि दोपहर को हमको इतने बजे खाना खा लेना चाहिए या शाम को रात को उतना बजे खाना खा लेना चाहिए, वो काफी कुछ अब डिस्टर्ब हो गया है, तो ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं
1: जी। तो निश्चित तौर पे इतनी सारी समस्याएं, चाहे वो जीवन शैली की पद्धति को लेकर के

0: हो, खान पान को लेकर के हो, या फिर काम करने के जो तरीके हैं या जो वर्किंग स्टाइल बन रही है उसको लेकर के हो। निश्चित तौर पे कुछ ऑर्थोपेडिक्स में या हड्डी संबंधी जो क्षेत्र है चिकित्सा का, उसमें कुछ शोध और अनुसंधान तो हो रहे हो, तो कुछ चिकित्सा पद्धति में भी बदलाव आए, कुछ नए नए पहलू निकल करके आ रहे हैं इन सब
1: बिल्कुल आते
0: समस्याओं के
1: हैं,
0: समाधान के लिए।
1: बिल्कुल आते हैं, लेकिन मूलभूत किसी भी चीज से उसको इलाज करने के बजाय उसका बचाव
0: जी
1: ज्यादा
0: जी
1: जरूरी है कि हम उन कारणों को पैदा ना होने दें। जैसे सबसे ज्यादा कॉमन जो आजकल मिलता है उसमें विटामिन डी की कमी
0: हो रही
1: काफी
0: है
1: ज्यादा मिलती है,
0: जी।
1: विटामिन B12 की कमी काफी ज्यादा मिलती है, और विटामिन डी की कमी होने की वजह से शरीर के ज्यादातर हिस्सों में दर्द रहने लग जाता है। बल्कि जिन घरों में धूप नहीं आती है या जो धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, उनमें तो बिना गिरे बिना चोट लगे ही फ्रैक्चर्स तक बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत मरीज देखने में आते हैं जिनको कूल्हों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, चल पाने में असमर्थ हैं, या छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, जिनके पैर टेढ़े हो गए हैं। तो वो आमतौर पे जो कमी है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, और विटामिन डी आमतौर पे किसी खाद्य पदार्थ में नहीं होता, ये केवल धूप की रोशनी से हमारे शरीर में जनरेट होता है, उसके लिए धूप लेना जरूरी है। तो
0: तो कहीं ना कहीं जीवन शैली में जो प्राकृतिक वातावरण के प्रति हमारा जो एक्सपोजर था, यानी यह या कहें कि जीवन जीने का ये तरीका था कि भाई सुबह सूरज निकलेगा तो बिस्तर छोड़ के हम वहाँ बैठेंगे ही बैठेंगे, 10-20 मिनट आधा घंटा वहाँ बैठ के उसमें प्राकृतिक तौर पर जो है अपने शरीर को गर्म करना है, तेल लगाना है, या दादी नानी के साथ जो बच्चे रहते थे तो उनका तो काम ही यही होता था कि धूप में लेके बैठ गए और बच्चे की मालिश हो रही है, तो वो चीज़ें कहीं छूटती जा रही हैं इसमें
1: वही सबसे बड़ा एक कारण है,
0: जी।
1: क्योंकि धूप लगना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को छोड़ दीजिए, यंग एज में या मिडिल उम्र में भी ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, अन्यथा विटामिन डी की डिफिशियंसी सब जगह बन जाता है, इसकी वजह से हड्डियों में कमजोरी आने लग जाता है, जो दर्द का कारण भी रह सकता है और फ्रैक्चर होने का कारण भी रह सकता है। क्योंकि इनकी वजह से जो फ्रैक्चर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जोर से गिरने की या चोट लगने की जरूरत नहीं होती, हल्का सा पैर मुड़ा, हल्का सा झटका लगा और आपको हड्डियों में, कूल्हों में फ्रैक्चर हो गया।
0: तो मतलब जो हड्डियां कमजोर हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा प्राकृतिक वातावरण में न रहना या धूप सेकना नहीं है इसमें। अब इसमें जैसे आपने कहा कि बहुत छोटा सा जर्क भी उसको हमें एक उस अवस्था में पहुंचा देता है जो कभी एक दुर्घटना होती थी, भाई रोड पे चल रहे हैं हम, एक्सीडेंट हो गया, वो अब घर में भी हुआ जा रहा है उसमें। तो इसके लिए अब क्या कुछ बचाव की अगर हम बात करें तो कैसे जीवन शैली में बदलाव कैसे लाएंगे हम
1: धूप
0: उसमें।
1: में जरूर बैठें, दूध या दूध से बनी चीजें जिनमें कैल्शियम ज्यादा होता है उनका सेवन जरूर करें, क्योंकि हड्डियों में मजबूती के लिए कैल्शियम, और जो कैल्शियम हम खा रहे हैं वो हमारी हड्डियों तक पहुंचे, उसके जो उसको पहुंचाने के लिए जो जो सोर्स हैं
0: जी
1: वो
0: जी
1: हमारे शरीर में रहना जरूरी है, उसके लिए विटामिन डी चाहिए होता है जिससे कि हम उस कैल्शियम को यूटिलाइज कर सकें, तो वो लेना जरूरी है। विटामिन डी धूप की रोशनी से मिलता है, तो 15 मिनट कम से कम, 10 से 15 मिनट यदि हम प्रतिदिन धूप का सेवन करते हैं या हफ्ते में 3 दिन भी हम धूप में बैठते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है,
0: जी प्राकृतिक तौर पर उसमें।
1: प्राकृतिक तौर पर।
0: इसमें आजकल जैसे जीवन शैली जो हो गई है, रहन-सहन का हमारा जो तरीका हो गया है, सामान्यतः हम इसी वातावरण में रहते हैं उसमें, चाहे हमारे ऑफिस का वातावरण हो, परिसर हो, चाहे घर का हो, या मूवमेंट में गाड़ी भी इवन एसी रहती है, तो जब धूप पर्याप्त मात्रा में होती है तब भी हम धूप के साथ नहीं हो जाते, तो ये जो रहन-सहन है कि आधुनिक और सुविधाजनक जीवन की तरफ हम कहीं ज्यादा जा रहे हैं, तो वो भी कहीं हमारे इस शरीर की क्षमता को, प्रतिरोधक क्षमता को और इन हड्डियों की समस्या को बढ़ावा दे रहा है इसमें।
1: यही तो मैंने सबसे पहले कहा था
0: जी
1: कि
0: जी
1: हमारी जो जीवन शैली आजकल की बन गई है वो सबसे बड़ा एक कारण है जो हमको ज्यादा परेशानियां बनने लगी हैं। क्योंकि पहले भी व्यक्ति काम करता था पहले, लेकिन शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत होता था, वो अब उतना मजबूत नहीं रह गया है, वो चाहे अपनी जीवन शैली हो या अपना अपना रहन सहन हो, तो वो कहीं ना कहीं हमको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि हम काम भी करें, हम जो बाकी चीजें हैं उन पर भी ध्यान दें, लेकिन साथ में जो प्राकृतिक चीजें हैं हम उनका भी उपयोग करें जिससे कि हम सर्वरूपेण स्वस्थ रह सकें।
0: जी
1: खाली मेडिसिन खाने से या दवाई खाने से इलाज नहीं होता।
0: तो ये तो श्रोताओं बात थी सामान्यतः कि हड्डियां हमारी कमजोर हो रही हैं, सामान्यतः हमारी जीवन

0: शैली बिगड़ रही है, हमारा खान पान बिगड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिन लोगों की उम्र बड़ी हो गई है, जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या कहीं भी चलने फिरने में परेशानी है, तो उनसे जीवन की जो सहूलियत है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि विशेषज्ञ के तौर पर, तो उनको कैसा जीवन होना चाहिए, घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको सुविधाजनक हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए इसमें।
1: जो आम तौर पर उम्र बढ़ने के साथ आर्थराइटिस होती है, उसमें घुटने में, कूल्हे में, कई लोगों में हाथ के अंगूठों में, इनमें परेशानियां होने लगती हैं। घुटनों में आर्थराइटिस सबसे कॉमन है, जिसको
0: जी
1: हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, या उम्र बढ़ते जाने की वजह से जोड़ों में जो ह्रास होता है उसकी वजह से वो आर्थराइटिस बनती है। ये इसमें ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको हमारी

0: प्रॉपर डाइट से और बाकी जो थोड़ा मॉडिफिकेशन है, जैसे किसी घुटने में दर्द थोड़ा करता है कभी कभी या हम थोड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, तो हम स्टिक लेके चल सकते हैं जिससे हमारी गिरने की संभावना कम रहे, जोड़ों में जो विकृति बन रही है उसका प्रभाव हम पर कम से कम पड़े। तो हम उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में बदलाव थोड़ा करके हम उसके अंदर सामंजस्य बिठा सकते हैं।
1: इसमें जैसे कई बार क्या होता है कि घर में हमारी जो सुख सुविधाएं होती है उसमें भी थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। मान लो आप देसी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां कमोट कर लिया है, बढ़ती उम्र के साथ कुछ सुविधाएं भी हमें जो है हमारे लिए आराम
0: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। पाश्चात्य शैली की हम टॉयलेट का यूज करें, बल्कि आजकल तो टॉयलेट में के बगल में भी जो उठने में जैसे परेशानी होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: तो जो नॉर्मल सीटें होती हैं टॉयलेट की उनके ऊपर लगाने के लिए अटैचमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक सर्टेन हाइट तक आपको बैठने में परेशानी नहीं होती
1: जी, जी।
0: उसके बाद आपको उठने बैठने में परेशानी होती है तो आप उसको उसका लेवल भी आप थोड़ा ऊंचा करा सकते हो, वो एक एक्स्ट्रा
1: उठने के लिए
0: सपोर्ट लगा सकते हैं। जो साइड में बार्स लगे होते हैं, ग्रैब बार्स वगैरह लगे होते हैं बाथरूम में, उनका यूज कर सकते हैं। बेड साइड बार्स लगा सकते हैं जिससे हमारे घुटनों पर जोर ना पड़े, हम थोड़ा उनका सपोर्ट लेके उठ जाएं, बल्कि वो चलने में भी हमको कई बार सहारा प्रदान करते हैं कि गिरने की आशंका थोड़ा सा कम रहता है।
1: कुछ लोगों के डॉक्टर साहब काम करने की जो वो होती है, मतलब जहां उनको लगातार बैठना पड़ता है, लगातार उनको या तो जैसे खड़े होना पड़ता है, तो वहां भी कुछ इस तरह के कर सकते हैं कि भाई आप अगर बैठना है तो एक कंफर्टेबल लेवल हो, अगर जैसे खड़े रहना है तो एक ऊंची चेयर रख रहे हैं उसमें बीच बीच में बैठ जाए, तो ये भी इस तरह के मॉडिफिकेशन क्या है वो कर सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से जिन चीजों को करने में हमको आराम रहता है तो उस तरह का हम अरेंजमेंट वहां पर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं जिससे कि हमारे को दर्द कम से कम रहे और हम अपना काम भी आराम से कर सकें और बेडरिडन भी ना रहें। तो इसी को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसमें सारी एक्टिविटीज शामिल हैं जो कि हमको काम करने में आसानी दें और हमारी जो दिनचर्या है वो भी भली भांति चलती
1: जी,
0: रहे।
1: जी जी, कई बार डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दर्द के साथ उनको रहने की आदत हो जाती है, तो वो कई बार उस समय चेकअप के लिए जाते हैं जब असहनीयता हो जाती है, तो कहाँ आप एक सुझाव देंगे कि किस लेवल पे एक आदमी को कि उम्र का एक तकाजा है या कोई इतना दर्द हो रहा है, तो जहाँ कम से कम एक अच्छे डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, जांच कराएं, मिलें, सलाह लें, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो वो शुरुआत व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की एक जो चौकीदारी करनी चाहिए उसको, वो कहां से शुरू हो जाती है?
0: आजकल वैसे समाज में जागरूकता काफी बढ़ी है और बहुत सारी लैब्स और हॉस्पिटल्स में हेल्थ पैकेजेस भी आजकल काफी चलने लगे हैं। तो अनुमान तौर पर 40-45 साल के बाद कम से कम साल में एक बार तो अपना सारा जो जनरल बॉडी चेकअप है वो करा लेना चाहिए। और उसके अंदर चूंकि मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं तो मैं एक चीज और ऐड करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जनरल पैकेजेस में हम डेक्सा स्कैनिंग वगैरह नहीं कराते हैं, क्योंकि उनके अंदर लिपिड प्रोफाइल, जो किडनी के लिए टेस्ट हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, इको, ये सब ECG, ये सब चेस्ट एक्सरे, ये सब होते हैं, तो हम उनके अंदर एक डेक्सा स्कैनिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। किसी एक पार्ट की करा लिया डेक्सा स्कैनिंग, स्पाइन की करा सकते हैं, पेल्विस की करा सकते हैं, जिससे हमको ओवरऑल स्टेटस जो हमारी हड्डियों में है उसका अंदाजा लग जाता है। उसको फिर हम ग्रेड कर सकते हैं कि हमको नॉर्मल हम कितने हैं, या हमको ऑस्टियोपेनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, या हम किस ग्रेड में आते हैं, तो हम टाइमली इंटरवीन कर पाएंगे, बजाय इसके कि हम जब हमको ज्यादा दर्द हो या हमारी उम्र 60-65 साल हो जाए तब हम चेक कराने जाएं और पता लगा तब हमको काफी ज्यादा सेवेरिटी तक हम पहुंच चुके हैं। यदि हम यही चेकअप 45-50 साल की उम्र से कराना शुरू करें तो क्या पता हम चीजों को थोड़ा जल्दी पकड़ पाएं और जल्दी उस दिशा में कार्य कर सकें।
1: जी जी, तो समस्या बढ़ने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। कुछ और चलते चलते कहना चाहें इसमें आप?
0: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, रेगुलर थोड़ा थोड़ा सा व्यायाम करें। आजकल तो वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस भी मनाना शुरू किया है
1: जी जी,
0: और प्रोत्साहित भी करते हैं योग के लिए, और काफी सारे YouTube पर अवेलेबल्स भी हैं कि कौन कौन से योग हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी जहां तक अपनी सोच है, यदि हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे हमारे लिए ओवरऑल एक बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। तो केवल एक प्राणायाम करने से आप काफी कुछ चीजें ठीक रख सकते हैं
1: जी।
0: तो थोड़ा सा समय निकाल कर...

0: कर सुबह केवल सूर्य नमस्कार करिए तो काफी कुछ फिट रहने में आपको मदद मिलेगी।
1: जी, तो श्रोता बंधु, यूँ तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, और हड्डी और जोड़ों की समस्या भी बढ़ती हुई उम्र में कहें या स्वास्थ्य की देखभाल से कहें, जैसी अन्य समस्याएं उसी तरीके के, इस पर भी हमें गौर करना है। खान पान में, दिनचर्या में, अपनी व्यायाम को थोड़ा सा शामिल कर लें, थोड़ा प्राकृतिक चीज़ों के साथ जुड़ें, बाहर निकलें। तो मैं समझता हूँ जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप निदान के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं, और समय से अगर हम एक अच्छे डॉक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, ओपिनियन ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, तो चीज़ों को बढ़ने से भी हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आए और हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, हड्डी संबंधी समस्याएं और निदान, विशेषज्ञ थे डॉक्टर निर्विकल्प। इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह, और कार्यक्रम में चलते चलते आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति

0: प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने विजयंजम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 6:50 पर किसान वाणी और संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 6:15 पर होगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे लोक कथा मेहनत को फल। कथाकार होंगे यदुनंदन गोस्वामी। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगी राधा शर्मा।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। रात 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। रात 10 बजे होगा राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग मारू बिहाग में ख्याल गायन। कलाकार होंगे उस्ताद इकबाल अहमद खां। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे गुलाम साबिर। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम, यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज लोक कथा मेहनत को फल कथाकार हैं।

0: यदुनंदन गोस्वामी।
1: सुखनगण राज्य अपने नाम के ही समान सुखन को गढ़ हतो। सबई चैन से सुखपूर्वक अपनी गुजर बसर कर रहे है। लेकिन पंडित रामदीन राम के संग दीनता भी अपने संग लिए भये है। पंडित रामदीन नेम धर्म बारे शांत चित्त व्यक्ति है, मगर पंडित जी की घरवारी रमा जई शिकायत रहती वाकू कि अगर जई तरह या घर के आसार रहे तो बच्चन को आगे चल के भविष्य काय होगो। पढ़ावे लिखावे की तो बात ही अलग है। पंडित जी के पुरखव कोई ऐसो धन दौलत नाय छोड़ गए जाते के घर गृहस्थी सही ढंग से चल पाती। घर के हालचाल देख के रमा ने पंडित जी को कई बेर राजा चंद्रसेन के पास जाएवे की सलाह पंडित जी को दई, पर पंडित जी हर बार जेई कह के टाल देते। पंडितायन समय ते पहले और भाग्य ते ज्यादा काय को कबहू नाय मिलो है, भगवान पे भरोसा रखो। पंडितायन तब चुप है जाती, पर जब मौको मिलतो तबे ही वो पंडित जी को यही बात कहती कि राजा के पास जाए के अपनी गुहार लगाओ। एक दिना पंडित जी इधर उधर न जाए के सीधे राजा चंद्रसेन ते मिलवे को राजा के महल की ओर चल दिए। दुर्भाग्य ऐसो के महल पे जाए के जब उन्हें देखो तो दरबारीन ने उन्हें बतायो कि राजा साहब तो महल में है ना, वो तो शिकार पे गए हैं। जी सुन के पंडित जी भाग्य को कोस भी लगे और वापस घर आए गए। पंडित जी को खाली हाथ देख के पंडितायन भड़क गईं, वो बड़बड़ाती रहीं और पंडित जी चुपचाप सुनते रहे। अगले दिन पंडित जी फिर महल पहुंच गए। बादना भी पंडित जी को निराशा ही हाथ लगी और जब उन्हें ये पतो लगी कि राजा अभी शिकार से वापस नए आए हैं तो पंडित जी चुपचाप अपने घर को चल दिए। दो चार दिन बाद पंडित जी ने फिर मौको देखो और पूजा पाठ से फारिग है के वो महल की ओर चल दिए। बाद में राजा चंद्रसेन महल में ही उनको मिल गयो। महल के बाहर ही द्वारपाल ने पंडित जी को खुशखबरी दे दी। पंडित जी बहुत ही प्रसन्न मन ते द्वारपाल के पीछे पीछे राजा ते मिलवे को महल के अंदर चल दिए। राजा के सामने जाके पंडित जी ने राजा को हाथ जोड़ के अभिवादन कियो तो राजा साहब ने भी खड़े है के पंडित जी के अभिवादन को स्वीकार करके स्वयं भी पंडित जी को आदर सत्कार के संग पूछो के आप यहाँ का प्रयोजन से आए हो। तो पंडित जी बड़े ही संकोच के संग कहवे लगे, महाराज मोए आपकी अपनी मेहनत की कमाई के केवल चार पैसा चाहिए। राजा के कान में जे बाक घुसे तो सही, मगर राजा समझ ना पायो भाई विश्वास ना भयो कि पंडित जी चार पैसा ही क्यों मांग रहे हैं। राजा मुस्कुरा के पंडित जी की तरफ देखो और बड़ी नम्रता से पंडित जी से पूछो कि महाराज मोए सिर्फ आपकी कमाई के चार पैसा ही चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हों। मैं तो मात्र चार पैसा ही चाहूं, यदि आप दे सको तो दे दो और ना है तो कोई बात ना है, आप सुखी रहो हम तो यूं ही चले जाएंगे। राजा ने अब बात को ढंग से समझो, ये सब धन दौलत तो वाकई महल वैभव जो कछु हमारे पास है सब हमारे पुरखान को मिलो भयो है। कछु देर बाद राजा बोलो, पंडित जी अभी तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगो पर आप दो दिन बाद पधारो। पंडित जी राजा ते विदा लेके वापस अपने घर आ गए। पंडितायन ने जब सिगरी बात जानी तो आग बबूला है गई। माने पंडित जी को कही कैसे मट्टी के माधो हो, इतनी बड़ी जगह पे गई और माते भी केवल चार पैसा ही मांग के लाए। तो बोले के अभी तो पैसा मिले भी ना है, उनने दो एक दिन बाद की कही है। पंडित जी की यह बात सुन के पंडितायन उनसे और भी कुछ बुरो भलो कहवे लगी, लेकिन पंडित जी चुपचाप सब सुनते भये बाहर को निकस गए। इधर राजा जा चिंता में आ गयो और इधर उधर महल में चक्कर काटे कि ये चार पैसा मेहनत के मैं कैसे दूंगो और क्या करूं। राजा ने कही, देखो रानी हम एक काम कर रहे हैं, हम भेष बदल के शहर में निकल जाएं और नगर में कहीं कोई काम हमें मिले तो हम जरूर बातें अपनी मेहनत से चार पैसा पैदा करके लाएंगे। रानी ने जब ये सुनी तो रानी भी राजा के संग महल से निकस गई। दोनों घूमते घूमते इधर उधर काम के तलाश में भटक रहे, तभी उन्हें एक लोहार दिखो जो अकेलो ही भट्टी पे लोहो गरम कर करके पिघलाए के उनते तरह तरह के औजार अस्त्र शस्त्र बना रहे हो। राजा ने बातें विनती करी कि हे लोहार अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दे दो। तो बाने की चलो एक से भले दो होंगे। राजा बोलो हमारी रानी भी आपके यहाँ काम करेगी। राजा बोलो ठीक है तुम दोनों लग जाओ, मैं तुम दोनों

0: रात भर के दो दो आना दोंगो। राजा तैयार है गए, बोले दो दो आना तो चार आना हुए, हमें तो चार पैसा ही चाहिए। तो पहले तो राजा बड़े उत्साह के संग काम कर रहे हो, मगर जब लोहे पीटे कूटे और वाय पानी में ठंडो करे, थोड़ी देर में ही राजा थकान ते चूर है वे लगो। इधर रानी को धोखनी दे दी के देखो रानी, तुम चुपचाप ये काम करो के जा में आँच ठंडी ना पड़े, धोखनी चलाती रहो। बीच बीच में रानी पानी भर के भी लावे लगी। कुछ समय बाद राजा और रानी ही थक के चूर है गए। तब राजा बोलो कि भैया अब हम पे ये काम ना है पारो। लोहार चुपचाप बोला, भैया तुमने काम तो पूरा करोना है, फिर भी मैं तुम्हें दो दो पैसा दे सकू हूँ। और वो विदा है के चल दिए। चार पैसा अब उनके पास में आते, राजा बड़ो खुश हो गए, चलो चार पैसा पंडित जी को दे देंगे, तो पंडित जी अपने खुश है के चले जाएंगे। महल पहुंच के राजा ने दूसरे दिन पंडित जी को बुलवाया और आदर के संग वो चार पैसा उन्हें दिए और बोलो ये पंडित जी मेरी मेहनत की कमाई है। पंडित जी उन चार पैसा इनको लेकर अपने घर आए और पंडितायन के हाथ पे रख दिए। पंडितायन पहले ही झुंझला रही, बाने बाहर निकस के जो तुलसी को थाम रहे हो बापे वो चारों पैसा रख दिए। और कुछ दिन बाद वो पैसा इनकी बात वो भूल भी गए। वो पैसा कब कैसे तुलसी के पूजा करते करते व तुलसी के थामरे की मट्टी में घुस गए। कुछ दिन बाद उनमें चार छोटे छोटे पौधा निकल आए। थोड़े ही दिन में वो पौधा झाड़ बन गए और उन पौधान में थे तरह तरह के फूल निकस के आंगन में बिखरवे लगे। पंडिताइन बोली ये तो और एक मुसीबत आई, रोज कूड़ा और रह जाए। बाने वो पौधा झाड़े तो उनमें देखो सफेद सफेद दाने से भी हैं। उन दाने को भी बाने समेट के भीतर कोठरी में जमा कर दियो। एक दिन वहां साग सब्जी बेच व्यवारी आई तो पंडिताइन बोली हम पे भैया पैसा तो है ना, ये फूल है अगर चाहिए तो ले लो। बस साग सब्जी वारी ने बामे देखो क्या वो कुछ गोल गोल मोती से भी हैं। वो उन मोती के चक्कर में बोली गया ठीक है मोती तुम दे दो, मैं तुम्हें साग भाजी दे दूंगी। और ये अब क्रम बन गया कि रोज वो आती और बामे थे अपने साग भाजी के बदले में कुछ फूल ले जाती। कुछ दिन बाद पता लगी कि राजा साहब ने अन्न जल छोड़ दियो है और राजा कुछ भी खाए पी ना रहे हैं। बाद में पता लगी कि राजा साहब के यहाँ कुछ हंस हैं जो मोती चुगे हैं। राजा के महल में सब चीज तो है पर मोतीन को अभाव है। राजा साहब भी बड़े परेशान है कि कहां से मोती लाके इन्हें चुगाऊं। पंडित जी ने जब सुनी तो उन फूलन के जो ढेर लगा हुआ बामे से थोड़े से फूल अपने अंगोछा में बांध के राजा साहब के पास पहुंचे। राजा साहब ने देखो कि अरे ये पंडित जी आप क्या ले आए। पंडित जी बोले भैया ये हमारे यहाँ पेड़ उगे बामे से झड़े, अगर आपके हंस खा लें इन्हें तो ये मोती हैं जो क्या है ये उन्हें खवा के देख लो। राजा ने वो हंस के सामने डाले तो हंस बड़े जोर से उन पे झपटे और जो भी हंस वो दौड़ दौड़ के उधर आवे लगे और उन मोती इनके खा के शांत है जाए। राजा बड़े प्रसन्न बोले भैया ये मोती कहाँ से आए, ये तो मोती से ज्यादा सच्चे हैं। उनने पूछी तो राजा ने सब बात बताई कि महाराज मैं आपसे मेहनत की कमाई के चार पैसा ले गए हो, वो पैसा ही ये पेड़ और झाड़ बन के ये फूल दे में और फूल में से ये मोती निकस रहे हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बड़ो प्रसन्न भयो और बाने उन मोतीन के बदले में जो उनके पंडित जी के घर पे और भी रखे है सब मंगवाए लिए। इतनी प्रसन्नता भई राजा को कि बाने पंडित जी को बड़े मान सम्मान और धन दौलत के संग विदा करो। पंडित जी बोले ये आपकी मेहनत की कमाई ही जामे से ये मोती निकस रही है।
1: अबे आपने जो लोक कथा सुनी मेहनत को फल, कथाकार है यदुनंदन गोस्वामी। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब आपको सुनवा में एक लोकगीत राधा शर्मा के स्वर में।

राधा शर्मा के गाए यह लोकगीत के संग गई आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। FM 102.2 दुनिया का हर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल और साथियों को सुना, और आइए सुनते हैं रविंद्र जैन और साथियों को। फिल्म है चिंतामणि सूरदास।

ये थे लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज और साथी, फिल्म थी सौदागर। इसी भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रति

0: लेकिन
1: सौरभ भैया,
0: हाँ सरलाविनी,
1: देखो अपन खेती पाती जो है ना वो बहुत मेहनत मांगत है, और हम पंच दिन रात अपने खेत में मेहनत भी करत हन, और यही समय देख लो अपने खेत में धान के फसल लगी है, और अपन फसल जो है पूरी देख रेख मांगत है ताकि अपने कोनो तरह के खर पतवार ना पन पाए।
0: बिल्कुल सरलाविनी, और देखो बारिश का मौसम है और अपने खेतन में पानी जो है बहुत भर जात है, और इस समय ज्यादातर खर पतवार है या कीट पतंगा है, इनका आवे की संभावना बहुत जो है अधिक रहा है, तो जरूरी है कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन क्या प्रयोग किया जाए।
1: बिल्कुल सौरभ भैया, और देखो हम सब अपने खेती

0: संबंधित उपाय भी अपना लिए थे, जैसे कि बुआई फसल चक्र अपनाव चाहिए, स्वस्थ और रोग मुक्त बीज के चुनाव करे चाहिए और खेत के साफ सफाई करके नाशी जीव के प्रकोप कम कर सका था हम।
1: बिल्कुल, और प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनका चयन करे चाहिए, है ना, और जो उर्वरक है उनका संतुलित प्रयोग करे चाहिए, और विशेषकर नाइट्रोजन का जो अनियंत्रित उपयोग है उसका रोके चाहिए, और साथ में जो है सहली खेती है, ट्रैप क्रॉप है, तो इस सब चीजन का प्रयोग करे चाहिए।
2: और सौरभ भैया देखो, खेती

0: प्रयोग करना चाहिए।
1: और सौरभ भैया देखो, खेती से संबंधित तमाम खबर अगर पहले से पता चल जाए तो कितनी नीक बात है। तो आओ जान लें जाए आज के खबरें।
2: आम के पुराने और घने बागों में कम पैदावार की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए विंडो ओपनिंग तकनीक फायदेमंद साबित हो सकती है। इस तकनीक में पेड़ की जरूरत से ज्यादा घनी और आपस में उलझी शाखाओं की वैज्ञानिक तरीके से छटाई कर पेड़ के बीच में विंडो यानी खुला स्थान बनाया जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी और हवा पेड़ के अंदर तक पहुंचती है, जिससे धूप से भोजन बनाने की प्रक्रिया बेहतर होती है और फलदार शाखाओं का विकास बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार विंडो ओपनिंग आम की तुड़ाई के बाद करना बेहतर रहता है। हालांकि एक बार में पेड़ की 15-20% से अधिक हरियाली नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक छटाई से पेड़ पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बड़ी शाखाओं की कटाई भी सावधानी से करनी चाहिए ताकि छाल न फटे। छटाई के बाद कटे हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाने और काटी गई शाखाओं को बाग से बाहर हटाने की सलाह दी जाती है। सही समय और वैज्ञानिक तरीके से की गई यह तकनीक पुराने आम के पेड़ों में नई शाखाओं के विकास, बेहतर फल फूल और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार में मदद कर सकती है।
1: सौरभ भैया देखो, ये जो बरसात के मौसम है ना, ये मौसम में हम सब कई तरह फसल लगाए हैं और वही देखो अपन गन्ना की फसल भी बढ़वार हो रही है और जरूरी है क्योंकि देख रेख भी करी और देख रेख के भाई बात आओ थे तो हम सब पूरी मेहनत और लगन के साथ ही लग जाते हैं। और यही क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह भैया, बता रहे हैं गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। तो आओ हम सब जाना जाए।
3: बिल्कुल जाना जाए और ध्यान से सुना जाए और कोनो जरूरत की बात हो तो कल लिख लीन जाए।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां गन्ने की फसल इस समय खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
5: नमस्कार किसान पंचों, गन्ना इस समय अपने बढ़वार की स्थिति में चल रहा है और ये एक दो महीने और इसका बढ़वार होना है। इस अवस्था में अगर गन्ने में कीट या बीमारी लगती है जिससे किसान का भारी भरकम नुकसान होता है और चीनी मिल की पेराई सत्र में भी जो है वो काफी गिरावट हो जाती है। जहां तक बीमारियों की बात करें तो लाल सड़न रोग गन्ने की महामारी के नाम से, कैंसर के नाम से जाने जाने वाली बीमारी है और आप लोग खुद भी ये अनुभव कर रहे हैं कि 0238 एक प्रजाति थी जो से ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती थी, 7-8 साल से उसकी रोग रोधक क्षमता घटने की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है लाल सड़न से। तो उस प्रजाति के लिए मेरा एक निवेदन यह है कि किसान भाइयों उसका बावक फसल ही लें और बावक फसल का जो बीज लें उस बीज को देख लें, उस गन्ने में किसी भी तरह का लाल काटने पे नजर आ रहा हो तो निकाल दें। 0.1% के घोल बना के बेवेस्टिन नामक एक फफूद आती है कार्बेंडाजिम, 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें डुबो दें। डुबोने के बाद कम से कम उसमें 20 मिनट आधा घंटा अगर उसमें रहने देंगे तो उत्तम होगा। और मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा बीमारी तो कम करता ही है और उसके साथ साथ वो एक तरीके का टॉनिक भी है और जैसे हमें आपको वैक्सीन लगती उसी तरीके से बीज शोधन आवश्यक है।
4: इसके अलावा पक्का बोइंग की भी समस्या आ रही है डॉक्टर साहब?
5: जो प्रजातियां प्रचलन में है जिसकी खेती हो रही है उसमें उकठा रोग एक आ रहा है, पक्का बोइंग आ रहा है और कंडुआ रोग आ रहा है। ये 4 बीमारियां गन्ने में ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदेह हैं।
4: इनकी पहचान क्या है?
5: देखिए, लाल सड़न गन्ने में ऊपर से तीसरी पत्ती पीली पड़ती है और करीब 10 से 15 दिन में पूरा अगोला सूख जाता है और पत्तियां वैसे खड़ी रहती है जैसे नीचे से काट के चपका दिया गया हो। लेकिन जब पक्का बोइंग आता है तो ऊपर से नई पत्तियों निकलने वाली जगह में हरियाली की कमी हो जाती है, उसको हरी भावनाहीनता कहते हैं और वो पत्तियां मुड़ जाती हैं, मरोड़ उठती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं बना पाता। तीसरी बीमारी जो बिल्ट है, बिल्ट में गन्ना लगभग 2 महीने में सूखता है, इसलिए पत्तियां उत्तियां धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती हैं और हल्की भूरी हो जाती हैं। और कंडुआ बीमारी में गन्ने के जो अगोला है वहां से नई पत्तियों के बनने के बजाय एक काला रंग का चाबुक नुमा

0: एक फफूद निकलता है जो रोग को फैलाने में काम करते हैं। वो फफूद जो है हवा से टहलता है और कई किलोमीटर तक वो जाके गन्ने को प्रभावित कर देता है, और जिस गन्ने पे गिरता है उसमें उस सीजन में वो बीमारी का लक्षण नहीं आता, वो अगले साल का बैना दे जाता है। तो ये जानकारी नहीं होती कि गन्ना स्वस्थ है जिसका बीज उपयोग कर रहे हैं। अब जो मैंने बताया कार्बेंडाजिम से बीज शोधन जब करेंगे तो लगभग सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी।
1: सब इस समय जब खेत में फसल है तो कुछ उपाय कर सकते हैं प्रबंधन में किसान भाई बहन?
0: निश्चित रूप से इस समय थायोफिनेट मिथाइल एक फफूंद नाशक है, उसका 0.01% का घोल बनाना है
1: 1 ml प्रति लीटर पानी।
0: जी जी, 1 ml प्रति लीटर पानी में, और उसका छिड़काव कर दें। उसके छिड़काव से आपका पुक्का बैंक पे भी नियंत्रण होता है और बाकी की बीमारियां भी उससे नियंत्रित होती हैं।
1: कुछ जैविक उपाय भी है डॉक्टर साहब?
0: जैविक उपाय में देखिए, हम किसान को सलाह देते हैं कि बीज को ठोक बजा के ले और स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग अवश्य करें,
1: बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों में
0: करें।
1: डॉक्टर साहब, कुछ हानिकारक कीट भी इस समय लग रहे हैं बेधक की?
0: जी हाँ, कीट एक बहुत बड़ी समस्या है, और गन्ने में बेधक कीट और गन्ने का रस चूसने वाले कीट, ये दो तरीके के कीट ऐसे हैं जो गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेधक कीटों में आप जानिए कि चोटी बेधक सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद तना बेधक आता है और फिर जड़ बेधक आता है।
1: डॉक्टर साहब, इनका प्रबंधन हो कैसे?
0: एक कीटनाशक आता है जो क्लोरेंट्रानिलीपोर, वो 150 ml की एक शीशी आती है, उसको 1 एकड़ के गन्ने में उसको जमीन के पास छिड़काव कर दिए, ट्रेंचिंग करना है, और वो गर्मी के महीने में करना है, मई जून में करना है। तो वो अपने आप फसल को 3 महीने तक के लिए किसी भी बेधक कीटों से वो मुक्ति दिलाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा गन्ने में समस्या है इस समय, जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उस पे मिली बग नाम का एक कीट आता है,
1: गन्ने को भी नुकसान पहुंचा रहा है,
0: बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। किसान को जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये नई पत्तियां जो निकलती हैं वहां नहीं होता, पुरानी पत्तियों में सबसे पहले घुसता है, गन्ने से चिपक के अंदर चला जाता है और वो दिखाई नहीं देता है, तो वहां से वो रस चूसता है और ऊपर की सारी गोला पीला हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए एक तो पत्ती निकालना पड़ेगा, उसको छील के बाहर फेंकना पड़ेगा, और उस पर जो है एक कीटनाशक आता है इमिडाक्लोरपीड, उसका 3 ml 5 लीटर पानी के अनुपात में उसको मिला के उस पर छिड़काव करना है। और इसके लिए एक और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ये छिड़काव कम से कम 45 दिन बाद दोबारा अवश्य करें, क्योंकि उसके अंडे जमीन में होते हैं, मेड़ पे होते हैं, एक बार मरने के बाद वो दोबारा फिर से आके गन्ने को प्रभावित करता है।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं पायरिला की भी, रस चूसक कीटों की भी समस्या है?
0: पायरिला की समस्या तब आती है जब गन्ने में चीनी बनने लगता है, और गर्मी की अवस्था में भी कभी कभी आती है, लेकिन पायरिला के लिए एक अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार एक कीट है जो उसको खाता है,
1: यानी पीछे पीछे आता है मित्र की,
0: पीछे पीछे मित्र कीट आता है, और जहां बहुत ज्यादा पायरिला हो जाता है वहां हम उस मित्र कीट के अंडे को रिलीज भी करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-52-65-53-52 9452655532 94-52-65-53-52।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: जितना बच सके 238 प्रजाति का खाली आप बावक फसल लें और बीज शोधित करके बोएं, बाकी अभी और जो प्रजातियां हैं उनमें 14-201, 15-201, CO 15-023 ये कुछ प्रजातियां हैं, और इनके चयन में आप कोई भी प्रजाति को अगर बढ़ाते हैं तो 30-40% के क्षेत्रफल में ही ले जाएं।
1: डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सौरभ भैया देखो, सावन का महीना चल रहा है और भाई देखो, बाजा पे तो हम आपका झूला नहीं झुला सकते, मुला की देखो कजरी के माध्यम से हम आपका झुमा जरूर सकत हैं। तो आवाज सुना जाए यू कजरी पूजा तोमर बहनी के स्वर माँ, तो हम सब झुमा जाए और पंच भैया भी झूमे।

0: देखो सलाह भी नहीं, किसान वाड़ी प्रोग्राम में अपने साथ जो है कोई ना कोई पंच भाई जुड़त हैं, जो अपनी फसल का लगा रहे हैं उनके बारे में बतावत हैं। तो वह क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिलजिंदर सिंह भैया, जो जानकारी दे रहे हैं वर्टिकल सिंगल वर्ड से गन्ना के उत्पादन कैसे की जाए, तो इसका सुना जाए और भैया के अनुभव जाने जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के नकहा ब्लॉक के शीतलापुर गाँव के गन्ना उत्पादन से जुड़े दिलजिंदर सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
2: डॉक्टर साहब आपको नमस्कार और हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को भी नमस्कार। मैं करीब 20 एकड़ जमीन के ऊपर खेती करता हूं।
1: पूरे परिवार की सम्मिलित जमीन?
2: परिवार की 20 एकड़ जमीन पर हम खेती करते।
1: तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
2: प्रमुखता से हम गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने के बीज का उत्पादन करते हैं। तो 75% खेत यानी कि करीब 15 एकड़ के करीब हमारे पास गन्ने के बीज लगे हुए हैं।
1: कुछ खास तरीका अपनाते हैं गन्ने के बीज उत्पादन में?
2: गन्ने के बीज क्योंकि कुछ वैरायटियों के जाने के बाद गन्ने के बीज में बहुत भारी कमी आई है, तो हमने वर्टिकल सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई करनी शुरू की। इसमें हम कम बीज में और कम लागत में अधिक गन्ने की पैदावार कर पा रहे हैं।
1: तो जो सिंगल बड है और ये वर्टिकल सिंगल बड, इसमें क्या फर्क है?
2: जो सिंगल बड विधि है वो बहुत समय से कई सारे किसान भाई करते आ रहे हैं।

0: सिंगल बड को वर्टिकल बोने का अर्थ यह है कि पारंपरिक तरीके में गन्ने की जो बड होती है उसको जमीन पे लटाया जाता है, और जो सिंगल बड वर्टिकल विधि है, वर्टिकल अंग्रेजी में कहा जाता है कि जब हम गुल्ली या गन्ने की बड को खड़ी करके बुआई करते हैं,
1: यानी ऊपर की तरफ।
0: उसको हम ऊपर की तरफ खड़ी करके मेड़ के किनारे उसकी बुआई की जाती है।
1: तो क्या पहले आप किसी पॉलिथीन में इसको जमाते हैं?
0: इसकी बुआई डायरेक्ट होती है खेत में,
1: अच्छा,
0: इसकी नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नर्सरी तैयार करने में भी अतिरिक्त खर्चा लगता है, लेबर लगती है। हम इसकी बुआई सही समय पे डायरेक्टली खेत में ही करते हैं।
1: यानी सिंगल बड गन्ने के जो बीज है उससे निकाल लेते हैं और उसकी सीधी बुआई करते हैं।
0: जी, इसकी कटाई भी एक विशेष रूप से की जाती है। ये
1: जैसे
0: गन्ने की कटाई जड़ की तरफ से शुरू करते हैं काटना, और ऊपर जो उसके पलई की तरफ हम गन्ने की कटाई करते हुए चलते हैं,
1: ऊपरी हिस्सा।
0: ऊपरी हिस्से की तरफ चलते हैं, तो जो गांठ के नीचे का हिस्सा होता है उसको थोड़ा कम काटा जाता है, और गांठ के ऊपर, आंख के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। ग्रेविटी की वजह से जब हम बड को लगाते हैं जमीन पे,
1: जी
0: तो उसका जो भोजन होता है उसकी ऊपर वाली इंटरनोड में होता है, और वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे, जब तक बड अपनी जड़ें नहीं बना लेती है तब तक उसको भोजन उसी बड की इंटरनोड से मिलता रहता है। उसके बाद जब बड चल जाती है, उसकी अपनी जड़ें होती हैं, तो वो अपना पोषण जो है वो जमीन से लेना शुरू करती है।
1: तो इस साल आपका कितना रकबा है बीज उत्पादन का?
0: हमने करीब इस समय 12 एकड़ जमीन पे बीज उत्पादन वाला गन्ना बोया हुआ है, और बाकी जो है वो फैक्ट्री में सप्लाई के लिए चला जाता है।
1: तो इसमें कुछ शरदकालीन होगा, कुछ बसंतकालीन होगा?
0: जो वर्टिकल सिंगल बड विधि से हम गन्ना बोते हैं, ये वो वाले गन्ने बोए जाते हैं जो नए बीज इस समय रिलीज होके आते हैं, और
1: अच्छा,
0: जिनकी मात्रा बहुत कम
1: यानी
0: गिनती है।
1: उसको बढ़ाते हैं आप।
0: उसको बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम तरीका जो है वो वर्टिकल सिंगल बड विधि से है। अगर हम इसको 4.5 बाई 2 फुट पे 1 एकड़ खेत में लगाते हैं, तो हमारे सिर्फ 4750 बड 1 एकड़ खेत में लगते हैं, जो करीब करीब हमें 4 क्विंटल गन्ने से मिल जाते हैं।
1: और जबकि पूरा गन्ना का टुकड़ा बोने पर उसके बीज की मात्रा काफी।
0: उस समय जब हम पूरे गन्ने से बीज बना के बोते हैं, तो हमारे पारंपरिक तरीके में करीब 25 से 35 क्विंटल तक का बीज लग जाता है
1: प्रति एकड़।
0: प्रति एकड़।
1: तो कौन कौन सी वैरायटी का गन्ना बीज आपके पास है?
0: हमारे पास वो बीज हैं जो रिलीज हो चुकी वैरायटीज हैं,
1: जैसे
0: IISR लखनऊ से 16202, हमारे शाहजहानपुर इंस्टीट्यूट से जो हमें बीज मिलते हैं 17231 है, 18231 है। इन वैरायटियों का हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, और ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं।
1: तो इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ या उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की जो नई वैरायटी हैं, उनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं अपने खेत?
0: इस समय ये वैरायटियां बिल्कुल नई निकली हैं, और इनका उत्पादन तो समय के साथ धीरे धीरे, जब ये हमारी जमीनों में अडाप्ट करेंगी, 2-3 साल बाद ये अपने चरम पे पहुंचेंगी जिसमें ये अपना पूरा उत्पादन देंगी। अभी इस समय ये रिकवरी के पक्ष से बहुत बढ़िया वैरायटियां हैं, और ये अभी रोग से लड़ने की जो शक्तियां हैं वो अच्छी हैं।
1: यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी
0: प्रतिरोध
1: अच्छी है और चीनी मिल के लिए रिकवरी भी अच्छी है,
0: चीनी मिल
1: तो
0: के लिए
1: चीनी
0: रिकवरी।
1: मिल के डिमांड भी होगी।
0: जी, उनकी डिमांड की वैरायटी है। उत्पादन के लिए अभी किसान भाइयों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेती है। हर वैरायटी जलवायु के हिसाब से जब अडाप्ट करती है, तो 1 से 2 साल के बाद ये अपना पूरा उत्पादन देने लग जाती है।
1: तो इस साल शरदकालीन गन्ने की बुआई का रकबा कितना होगा?
0: इस समय हम शरदकालीन गन्ने की बुआई की हमने शुरुआत कर दी है।
1: अच्छा, अभी से
0: वर्टिकल सिंगल बड का सबसे उत्तम समय जो है वो ये समय है।
1: अगस्त
0: अगस्त के महीने से इसकी बुआई शुरू हो जाती है, और आप सितंबर के आखिर तक इसकी बुआई अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम बीज में। उससे बाद जब हम और आगे लेट करते हैं, तो हमें बीज की जो दर है वो बढ़ानी पड़ती है।
1: तो कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखते हैं बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के बुआई और खड़ी फसल की देखभाल?
0: तो वर्टिकल सिंगल बड विधि जो है, जैसे हमने पहले चर्चा की कि सिंगल बड तो काफी सालों से किसान भाई करते आ रहे हैं, वर्टिकल सिंगल बड में हम लोगों ने जो गन्ने का उत्तम समय है बुआई का, कुदरत की तरफ से जो निर्धारित है, वो अगस्त के महीने से शुरू हो जाता है, और आप सितंबर के महीने तक बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें आप कुदरत के अटल नियमों के हिसाब से गन्ने की बुआई करते हैं, जिसमें जो दिशा है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
1: जैसे
0: आप पूर्व पश्चिम की कूड़ बनाए जाते हैं या बेड बनाए जाते हैं, और जो दक्षिण की तरफ बेड की ढलान होती है उसके ऊपर गन्ने का बीज लगाया जाता है, जिसका एक विशेष कारण है कि आगे आने वाले समय में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है,
1: जी।
0: और सर्दी में धूप, क्योंकि

0: गन्ने की जो फसल है वो धूप बहुत पसंद करती है, उसको बहुत लंबे समय के लिए धूप चाहिए होती है। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सर्दियों का समय जो होता है वो बहुत लंबा होता है,
1: जी
0: तो उस समय के लिए हम जब दक्षिण वाली बाही पे जब इस पे लगाते हैं गन्ना, तो इसको सर्दियों में सबसे ज्यादा धूप उस
1: मिलती है।
0: मिलती है, तो इससे गन्ने की जो बढ़वार है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमको इसको जमीन के अंदर, नाली के अंदर लटा के नहीं लगाना, हम इसको थोड़ा सा गन्ने की मेड़ के बेड के किनारे उठा के गन्ने को लगाते हैं
1: जी
0: ऊंची जगह पे, जिसमें कि कुदरती तौर पे पानी जो है वो गन्ने की फसल के नीचे रहता है और गन्ना अपनी जरूरत के अनुसार पानी या नमी को लेता रहता है,
1: यानी अपनी प्यास बुझा लेता है
0: बुझाता है, और वो कभी भी पानी की वजह से स्ट्रेस में नहीं आता।
1: और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
0: जब हम उसको कम पानी देते हैं या पानी की जो स्ट्रेस से उसको बचा लेते हैं गन्ने को, तो उसकी जो भूख है वो अपने आप मिट्टी से पूरी करता है।
1: आप प्रति एकड़ कितनी कार्बनिक खादें देते हैं, कितनी रासायनिक और जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन में?
0: हम इसको सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खेत में कोई भी फसल अवशेष जो है वो खेत से बाहर नहीं जाता, ना ही जलाया जाता है। हर फसल अवशेष को हम खेत में ही जोत के उसकी मिट्टी में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम हरी खाद की बिजाई हर साल करते हैं, जिससे कि हमारे कार्बनिक जीवांश जो है वो खेत में भरपूर रहे, जिसकी वजह से हमें रासायनिक खादों पर हमारी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जो मिट्टी की सेहत है वो तंदुरुस्त रहती है, रोग कम लगते हैं, और आपका जो खादों पर हमारा निर्भरता है वो कम हो जाती है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन का या गन्ना उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो मिठास की फसल की खेती करना चाहते हैं?
0: देखिए, आज तक के जितने भी मेथड हैं गन्ने की बुआई के, सभी कामयाब हैं। हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। सिंगल बड वर्टिकल मेथड जो है वो किसान भाइयों को अभी उनके लिए नया है, तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पहले इस विधि को समझें, कम रकबे में अपने खेत में इसकी शुरुआत करें, और इसके बाद जब एक बार उसको समझ लेंगे तो उसके बाद इसको वो बढ़ा सकते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
0: चलते चलते सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक नई विधि है, इसको अपनाइए, कम रकबे पे इसको करिए, इसको समझिए और इससे लाभ उठाने की कोशिश करिए, जैसे कि हम अपने खेतों में कर रहे हैं।
1: दिलजिंदर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और मिठास की फसल उगा रहे हैं जिसमें ज्यादातर रकबे में वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें आपकी लागत भी कम हो रही है, आपका उत्पादन अधिक मिल रहा है और आपको मुनाफा भी अधिक मिल रहा है। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: सरला बहनी,
6: हाँ जोर भैया।
5: देखो, अपन पंच भाई जौन है, मौसम की जानकारी के बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, कहे कि समय मौसम ऐसा चल रहा है, पता नहीं कब पानी बरसा लगे, पता नहीं कब धूप निकल आवे, तो इसलिए जरूरी है कि अपने पंच भाई के यहाँ मौसम की जानकारी आप उपलब्ध करा दो।
6: बिल्कुल भैया, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 7 दिनों के बरसात के पूर्वानुमान यह प्रकार से है। आज यानी 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। यूं भैया रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में अनेक स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़ने की संभावना है।

0: और कुछ स्थानन पर तेज बौछार पड़े की संभावना है।
1: सरला बहनी, देखो हम उनके यू प्रोग्राम तो अपन पंच भाई सुनत हैं, लेकिन साथ में अगर कोई सुझाव देवैया हैं, कोई विशेष विषय पर जानकारी लेवैया हैं, तो ये अपना पत्र हम लोगन के लिख सकत हैं, ताकि उनकी पार्टी के माध्यम से ने जो बात है वह हम लोगन तक पहुंच जाए।
0: और भैया चिट्ठी पाती लिखे खातिर हमारा पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 226001। और यह पता पे चिट्ठी पाती जरूर लिखें।
1: और अगर ईमेल करिया हो तो हमारी ईमेल आईडी का है, वहाँ अपने पंच भाई क्या बता दो।
0: और भैया मेल करा चाहत है तो हमारा पता है farmandhomeairlko@gmail.com, यह पता पर मेल जरूर करें। और सौरभ भैया अब बैठके के समय हो रहा है समाप्त, तो पंच से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। 600 रुपए प्रतिदिन किया ड्यूटी भत्ता। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन आज से हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वाराणसी के छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल श्योराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पीआरडी जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया। श्री योगी ने प्रांतीय रक्षक दल के सम्मेलन में जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 600 रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विपरीत परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों का सेवा भाव और अनुशासन प्रदेश की प्रगति तथा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी के स्वयंसेवकों के लिए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है।
1: अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है।
0: पीआरडी जवानों के सम्मेलन में राज्य मंत्री, राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल डॉ सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पीआरडी जवान के सैनिक शांति, सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद 2017 से पहले पीआरडी का बजट मात्र 2300 रुपए था, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूपी जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। 5 दिवसीय इस निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और जापान प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल विकास, एआई, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में नए आयाम तलाशने के लिए एकजुट हो रहे हैं। गृह विभाग ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पहली गठित विशेष जांच दल एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। एसआईटी ने यह रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर पहली एसआईटी का गठन गत 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित दूसरी जांच टीम की जांच अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। श्री तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि उनकी शैली सबको साथ लेकर चलने की है और वे संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह देश का 109वां पीएम दिव्याशा वयोश्री केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव, एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चहवाड़ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। वह पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। उधर महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत के निशानेबाज अखिल चौराण और मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाह अरू मैनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टेली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में यह बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कल देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 22 मजदूर घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 719 पर गोहद क्षेत्र के छीमका गांव के पास हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश के मृतक मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमरोहा में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एसीपी अतुल अंजान ने बताया कि गंगा में नावों का संचालन फिलहाल अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सचेत कर रही है।
1: गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज 66.90 मीटर लेवल है और अभी भी 4 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। श्रावण मास भी चल रहा है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। नाविकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ में पूरे घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। 600 रुपए प्रतिदिन किया ड्यूटी भत्ता। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन आज से हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वाराणसी के छोटेलाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल श्योराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित प्रेम संगीत का कार्यक्रम शाम सुहा।

रूहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं नाज पैलेज अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनास, सलमा, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, मंजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, नेहरू चौक पैंठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ और उनके परिवारीजन, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, वैष्णवी पूनम, युवराज गोंधली और उनके परिवारीजन, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, रजमत वर्मा, मुरली, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकेत और उनके माता पिता, गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और उनके परिवार के सभी सदस्य, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, श्वेता, रंजन विद्यार्थी और उनके परिवारीजन, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर नामदेव, डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये, गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, संजना और उनके माता पिता, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और उनके परिवारीजन, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शहादर दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन और मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशोर विधान खुराना, नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा, ये संदेश भेजा है नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने, आप हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज को, फिल्म है नसीब अपना अपना, गीत SH बिहारी का है, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नसीब अपना अपना इस फिल्म का गीत अभी आपने आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में सुना। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम सेन, अक्षय सेन और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये संदेश भेजने वाले श्रोता हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अकीता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू और उनके परिवारीजन, मुल्ढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, ज्ञानेश्वर और संजय माठे, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर और जिया हलक डाबर,

चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, काजल पूर्वी, हेजल रेशमा साहू और राजेश साहू, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नाना लामसे, मीना लामसे, तेजस, जय, हर्षिता और उनके परिवारीजन, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहिन हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना और निवान शर्मा, मामलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान तायडे, मोहन करांगले, जिंगगांव विदर्भ से बसंतराव भोजने और उनके मित्रगण, जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का और डुग्गू सिक्का, आप हैं मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी, क्रांति गोदावरी और उनके प्रभारी जन। आइए आप सुनते हैं आपके लिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत निर्देशक है राहुल देव बर्मन।

1942 लव स्टोरीज फिल्म का गीत अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में सुना, और अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों को। फिल्म है लम्हे, गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशक शिव हरी। हमें जो संदेश मिले उनका नाम है चंपा छत्तीसगढ़ से, दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत, गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बम्बलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा, शेरगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले, गटके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और उनके परिवारीजन, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देवता मोरिया और तुषार देवता मोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभाव देवी तामोरिया और अल कबीर, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया, डोगरगांव अकोला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मोहन नेवारे, पद्मा नेवारे और विशाल नेवारे, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह और उनके परिवारीजन, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आइए सुनते हैं आप सबके लिए ये गीत।

0: ये थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम। फिल्म थी वंश। हमें जो संदेश मिले उनके नाम है जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। वाइट फील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री ढोमने, वैष्णवी और चंचल ढोमने। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नास और सरिता गौतम। सदर बाजार मारवाड़ बेलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। वाणीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। आप हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन और उनके परिवारीजन। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टल्लू नायक और मधु नायक। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: ऐसे क्या देख रहे हो?
2: सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें।
1: बहुत दिनों बाद क्या?
2: बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना सजते संवरते देखा है।
1: तुम्हारा जन्मदिन जो है, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू।
2: फिर कहो।
1: आई लव यू।
2: जोर से कहो।
1: आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।

ये थे सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक, फिल्म थी दीवाने। गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे संजीव दर्शन। और अब सुनते हैं सावन कुमार की शब्द रचना, संगीत निर्देशक बेतपाल, गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और कुमार किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है स्वतन की बेटी।

ये थे शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल। फिल्म थी मेरा हक। गीत निवेर का था, संगीत निर्देशक थे अनु मलिक। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति परक रचनाएं। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म है हम। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पहले सुनिए इस फिल्म में मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी को।

0: ये थे मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी। और अजीब सुनते इसी फिल्म में मोहम्मद अजीज के साथ उदित नारायण, सुदेश भोसले और साथियों को।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक।

0: अमित कुमार और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी हम। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों

0: की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा मर्रा के उस पर भी काफी रोक लगाया गया है और हालात ऐसी है कि जो वहां पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच

0: जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जांच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
2: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा।

0: हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal test against Sri Lanka on day 4. Host reel at 84 for 4 at stumps, chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said that BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges, while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advance.

लता मंगेशकर की आवाज़ में बैराग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी। और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत निर्देशक आर डी बर्मन, गायक स्वर किशोर कुमार के, फिल्म का नाम अजनबी।

0: साजन। वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: नमस्कार
1: श्रोताओं, नमस्कार। खेल दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। इस बार मैं सुंदरम तिवारी। आज के अंक में आप सुनेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश की खेल नीति से बदलता खेल परिदृश्य विषय पर उप क्रीड़ाधिकारी देवी प्रसाद से की गई बातचीत, और प्रयागराज के उभरते प्रतिभावान पोलवार्ड खिलाड़ी आर्य देव तथा शॉटपुट खिलाड़ी नवीन यादव से भेंटवार्ता।
2: एक बड़ी आम चर्चित या यूं कहे कि लोग कोकती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज के दौर में ये कहावत उतनी समीचीन नहीं बैठती, क्योंकि खेल की दुनिया में आजकल सफलता के मायने अलग ही हो गए हैं। भारत में क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेल जो हैं उनकी क्षेत्र में खिलाड़ियों की और उन तमाम निवेशकों की सफलताओं के मायने बदले हैं, और भारत के साथ साथ पूरा विश्व इस समय खेल के प्रति जागरूक हुआ है, और न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ाव हुआ है। भारत सरकार ने भारत में खेल की स्थिति सुधारने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम का निर्माण किया। 2017-18 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसका उद्देश्य ये रहा कि ग्रामीण स्तर पर और जो निचले तबके के लोगों को खेल से जोड़ना और उसके प्रति जागरूक करना। भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी हाल ही में 2023-24 या यूं कहें कि 2022-23 में अपनी एक खेल नीति जारी की और खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन खेलों का निचले स्तर पे या यूं कहें कि ग्रास रूट लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है या इससे कितना प्रभाव बढ़ा है, खेलों की दशा कैसी हुई है या उनमें किन चीजों की किन सुधारों की आवश्यकता है या उनको किस तरह के दिशा निर्देश की आवश्यकता है, इन तमाम विषयों पर इन तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इलाहाबाद के उप क्रीड़ाधिकारी श्री देवी प्रसाद जी हैं। देवी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद सर।
2: तो देवी प्रसाद जी, आप उप क्रीड़ाधिकारी हैं और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पोस्टेड हैं। किस तरह देखते हैं आप खेलो इंडिया कार्यक्रम को, किस तरह से इसने खेल की दशा ग्राउंड लेवल पे बदली है?
3: जब से खेलो इंडिया कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया 2017 और 2018 से
2: जी,
3: तब से फर्स्ट टाइम था, उतना जागरूकता नहीं था खिलाड़ियों को, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है उस कार्यक्रम के बाद फर्स्ट टाइम 14 गेमों को स्टार्ट किया था। उस समय स्कूल गेम्स के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था।
2: अच्छा।
3: उसके बाद जब कार्यक्रम स्टार्ट किया गया तो उसके बाद ग्रामीण अंचलों से लड़कों ने उस कार्यक्रम में जो जो लड़कों ने मेडल किया उसको 1,000 पूरे देश से लड़कों को चयन किया गया।
2: अच्छा।
3: और 10,000 पर मंथ

0: स्टार्ट किया गया था कि लड़के आगे चल के अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करें और देश के लिए मेडल दें
1: 10,000 रुपये पर
0: पर
1: मंथ
0: मंथ
1: की स्कॉलरशिप दी गई है।
0: स्कॉलरशिप।
1: अच्छा,
0: उसमें हमारे प्रयागराज से कई लड़कों, बिपिन कुमार सिंह थे और थे, दो तीन लड़के थे जो उनको स्टार्ट हुआ था,
1: स्टार्ट हुआ जी।
0: आज वो प्रेजेंट टाइम में सब नौकरी में है, खेलो
1: अच्छा,
0: इंडिया की देन है। और उसी से फिर बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ, अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में दिव्यांग
1: अच्छा
0: पैरा ओलंपिक भी खेलो इंडिया में शामिल हो गया, जिसका इस समय 20 मार्च से 27 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है।
1: जी,
0: उसमें हमारे प्रदेश से भी लड़के प्रतिभाग किए हैं। और खेलो इंडिया स्कीम को देश के प्रत्येक जनपद में,
1: जी
0: हमारे यहाँ भी उसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में खेलो इंडिया के तहत एक एक खेल को
1: जी
0: विकसित करने के लिए भारत सरकार के जो खेलो इंडिया स्कीम के तहत से उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काम कर रही है। इसे
1: अच्छा
0: हमारे प्रयागराज में खेलो इंडिया के तहत लॉन टेनिस का कैंप चल रहा है, जिसमें हम
1: अच्छा
0: लोग 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसमें हम लोग चयन करते हैं, जिससे कि हम उन बच्चों का
1: जी
0: चयन करके स्पोर्ट्स कॉलेज, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो नियम है, जो खेला स्थापनाएं हैं, जिसे स्पोर्ट्स कॉलेज, एक स्पोर्ट्स छात्रावास, जिसमें हम लोग
1: अच्छा
0: चयन कर सकें।
1: चयन कर सकते हैं। देवी प्रसाद जी, ये बताइए कि आपके मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में जो
0: जी
1: छात्र आते हैं, है ना, तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले कोई छात्र अगर, या कोई सामान्य एक लड़का इच्छुक है किसी खेल में जाने के लिए, तो कैसे वो एडमिशन पा सकता है आपके कॉलेज में?
0: हम लोग का नया सत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है।
1: अच्छा,
0: और एक साल के लिए उसका चलता है
1: जी।
0: फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही प्रक्रिया होती है।
1: अच्छा,
0: उसमें हम लोग कम एज के बच्चे, जिसे जिम्नास्टिक है 7-8 वर्ष के बच्चे
1: जी,
0: ताइक्वांडो है, या इस तरह के जो छोटे बच्चों के गेम है, जिसमें
1: हाँ।
0: 6-7 वर्ष, ताइक्वांडो हो गया, जूडो हो गया, जिसमें वो सब बच्चे को हम लोग एडमिशन लेते हैं। और इससे एथलेटिक्स हो गया, कुश्ती हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें 9-10 साल के बच्चे, उन नए बच्चों का हम लोग चयन करते हैं। हमारा काम है कि एक तो आवासीय छात्रावास के लिए, एक स्पोर्ट्स कॉलेज जो हमारा मेन है।
1: अच्छा,
0: स्पोर्ट्स जो यूपी का अपना जो मेन है, तो स्पोर्ट्स कॉलेज में हम लोग कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं।
1: अच्छा,
0: इसमें खिलाड़ियों की आयु 9 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वो कक्षा 6 के लिए होता है। तो उसमें जो हमारी सुविधाएं हैं, बच्चे का एडमिशन होने के बाद फीस, पूरा उनका ड्रेस, स्पोर्ट्स किट, पढ़ाई लिखाई सब आवासीय कैंपस के अंदर होता है,
1: ठीक है,
0: उनको कहीं बाहर जाना नहीं है। और एक हमारा आवासीय छात्रावास व्यवस्था है, जो 12 वर्ष के ऊपर, मतलब अंडर 15, 15 वर्ष से कम आयु की, जो कक्षा 9 में एडमिशन होता है, तो उसका चयन प्रणाली में यह है सिस्टम कि बच्चा अभी, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब खेल साथी पोर्टल पर बच्चा फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है,
1: ऑनलाइन अप्लाई करें और फिर चयन किया। तो जब किसी बच्चे को आप चयन करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कि क्या कोई लिखित परीक्षा होती है या सिर्फ आप ग्राउंड पे उसका टेस्ट लेते हैं? उस
0: नहीं,
1: संबंधित
0: हम लोग के लिए सर ग्राउंड पर ही लेते हैं ओवरऑल।
1: अच्छा,
0: कुछ उनका देखते हैं कि IQ क्या है, किसी चीज को अगर टेक्निक को पकड़े तो कितना जल्दी पकड़ सकता है, IQ उसकी जैसे है तो उसको उस गेम के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग उनका बैटरी टेस्ट रखते हैं।
1: अच्छा, बैटरी टेस्ट क्या होता है?
0: बैटरी टेस्ट में उसमें हम लोगों ने, जैसे 100 मीटर है,
1: अच्छा,
0: शटल रन है, मेडिसिन बॉल थ्रो है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, और 800 मीटर है।
1: अच्छा,
0: उसमें हम लोग इसलिए टेस्ट लेते हैं कि जिसे उसका 100 मीटर स्पीड चेक करते हैं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि स्प्रिंटर बाई बर्न होता है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी अच्छा भाग रहा था, इसका मतलब हम लोग स्प्रिंट इवेंट में ला लेते हैं।
1: अच्छा,
0: एक एजिलिटी टेस्ट है जिसको शटर रन कहते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है लेग स्ट्रेंथ के लिए, मेडिसिन बॉल थ्रो है आर्म स्ट्रेंथ के लिए, 800 मीटर उसके इंड्योरेंस और ऑक्सीजन कैपेसिटी चेक करने के लिए करते हैं। तो इससे हम लोग को लगता है कि बच्चा किस इवेंट में कर सकता है। अगर देखते हैं कि नहीं, ये बच्चा नहीं अच्छा कर पाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा पढ़ाई में ठीक हो तो पढ़ाई की तरफ जाओ।
1: अच्छा,
0: हाँ, अगर फिजिकल के लिए करना है तो आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए आप उतना नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि आप स्पोर्ट्स न करो,
1: हाँ,
0: लेकिन शारीरिक मानसिक और स्वास्थ्य रूप के लिए आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स से जुड़ना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: आज
1: है।
0: के परिवेश में
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर इतना दबाव है मानसिक रूप से, कह दिया जो भी, या पेरेंट्स का या जो भी है, सभी का है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई, और फिजिकल और इनका जो शारीरिक विकास रुक रहा है, जिससे उनको आज के परिवेश को सहन नहीं कर पा रहे। देखिए आए दिन बच्चे
1: बदलते परिवेश में। बिल्कुल, खेलो इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है, है ना। अच्छा, खेलो इंडिया कार्यक्रम 3 स्तर या 4 स्तर पे, मैं समझता हूँ, हो रहा है, एक विश्वविद्यालय स्तर पे, स्कूल स्तर पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं।
0: हमारा 2 है सर, अब इसका जो पहला हमारा आ गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया,
1: अच्छा,
0: जिसमें 21 वर्ष से कम, और एक है अंडर 17, जिसके स्कूल से ही बच्चे, और हमारा यूथ जिसे नेशनल गेम्स होता है अंडर 18, उससे बच्चों का चयन करते हैं। तो इसमें स्कूल से और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी एसोसिएशन है उससे बच्चों का चयन करते हैं, उसका नेशनल पर होता है, उसमें नेशनल से चयन करके उस बच्चों को, अब एक स्कीम है, अब तो टेस्ट कर करके उन्होंने अपना खेलो इंडिया का एक स्कीम करके बच्चों को वो एडाप्ट कर रहा है।

0: ट्रेनिंग लगा रहे हैं,
1: अच्छा
0: उसमें भी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण करके वो अपने आवासीय जो एसटीसी का सेंटर है उसमें भी वो ले रहे हैं।
1: देवी जी, जैसे मैं थोड़ा सा पिछले प्रश्न पर ले जाऊंगा
0: जी
1: कि आपने जब बच्चे का चयन कर लिया, अपने स्पोर्ट्स
0: जी
1: कैंपस है उसके लिए, फिर क्या उसकी दिनचर्या होती है? आप कैसे उस शुरुआत से लेके, आपका कई स्तर होता होगा
0: जी
1: ट्रेनिंग
0: जी
1: का, है ना, तो कैसे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं?
0: हम लोग हर बच्चे की एज के हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल डिवाइड करते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे अंडर बच्चा अंडर 14 है तो उसका अलग होगा, अंडर 16 है तो अलग है, अंडर 19 अलग है, 20 अलग है, मेंस अलग है,
1: अच्छा
0: किस एज के लेवल के कंपटीशन में उसको जाना है उस
1: अच्छा
0: हिसाब से उसका ट्रेनिंग है। और डिपेंड करता हमारा कंपटीशन डेट कि नेशनल
1: अच्छा
0: कंपटीशन कब या इंटरनेशनल का कंपटीशन मेरा कब है,
1: कब है?
0: तो उस हिसाब से हम लोग तीन तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब ईयरली, मंथली और वीकली प्लान, उसको हम लोग मैक्रो और बोलते हैं मीजो।
1: अच्छा
0: ये प्लान है, अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन इसलिए लेके चलते हैं, अगर नहीं लड़के को जाना है कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में, तो उसका टारगेट हम लोग अभी विजन बना के चलते हैं कि इसको हमको धीरे धीरे हर साल कितना इम्प्रूव करना है उसको।
1: अच्छा
0: बीच में अगर कोई टूर्नामेंट जिससे आ गया हमारा नेशनल का इस तरह का, तो हम उसका ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारा जो ईयरली प्लान लेके चल रहे हैं वही रहेगा, लेकिन कंपटीशन सेशन आने के बाद थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ गया इस तरह लोड कम करके उसको चेंज कर।
1: ये तो हो गया आपका अलग अलग शेड्यूल बच्चे को।
0: जी
1: पहली बात तो आप ये बताएं कि जो बीच में कंपटीशन होते हैं, एक तो अंतर जनपदीय होता है और
0: जी
1: एक मंडलीय अंतरराज्यीय है
0: हाँ
1: ना,
0: अंतर्राज्य
1: तो इन कंपटीशनों के लिए क्या कोई अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, या आपकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है उसी में आप इंप्रूवमेंट करते चलते हैं?
0: ट्रेनिंग जो शेड्यूल रहता है उसी को इम्प्रूवमेंट करता है। बीच में अगर कोई स्टेट टूर्नामेंट आ गया
1: हाँ
0: तो हम लोगों को जिसे 10 दिन 15 दिन पहले पता चला, तो वही जो वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल है उनको चेंज करके स्पीड वर्क कराया जाता है। और बाकी मेन फोकस यही रहता है कि हमारा खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी में न जाए, जो कंपटीशन का टारगेट है वो मेन चीज है। और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो हम लोग का प्रातः और सायं दो चलता है सेशन,
1: अच्छा तकरीबन कितने घंटे का सेशन होता है, सुबह और शाम का?
0: 3 घंटे का सुबह और 3 घंटे का शाम का सेशन
1: शाम का
0: होता है।
1: सर?
0: लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो
1: हाँ
0: उनका 1-1.5 घंटे का जो एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो 7 साल से 8 साल, उसको कम 3 से 3.5 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है।
1: आपके जो आवासीय बच्चे हैं, लोकल होते होंगे बच्चे, वो
0: जी
1: ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर जाते होंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी उनकी खत्म हो जाती होगी, जो आपके परिसर में जो बच्चे रहते हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था कैसे की जाती है?
0: उनकी पढ़ने की व्यवस्था पूरी सरकार के द्वारा है। ये
1: अच्छा
0: बच्चे यहाँ आते हैं उनका जो हमारे सरकारी कॉलेज होते
1: हाँ
0: हैं जो कैंपस से हमारे नज़दीक हो, उस विद्यालय में उनका एडमिशन कराया जाता है।
1: जी
0: बच्चे उसमें आफ्टर ट्रेनिंग पढ़ने जाते हैं और उसके बाद पूरी फीस जो होती है सरकार का है, मतलब 3,000 रुपया पर ईयर,
1: पर ईयर के हिसाब से?
0: ये है सुविधा फीस की, और 2,000 मेडिकल की। और
1: अच्छा
0: बच्चे अगर कहीं खेलने जाते हैं तो उनकी जो अपना सरकारी फेयर है वो उनको मिलता है छात्रावास में।
1: देवी प्रसाद जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खेल नीति बनाई है, तो उस खेल नीति से कितना फर्क पड़ा है, आपके जो खेल प्रोग्राम है या जो प्रदेश का जो स्तर है वो किस हिसाब से बदला है?
0: हमारा 2023 में खेल नीति लागू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
1: जी
0: तब से हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तो अपना काम कर रहा था, जो हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है
1: जी
0: वो भी और एक्टिव है। अब स्पोर्ट्स खेल नीति आने से जो हमारे खेल विभाग के, क्योंकि सारे जो फाइनेंशियल खर्च हैं
1: जी
0: हमारा खेल विभाग करता है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट
1: अच्छा
0: सरकार हमारी करती है, और कोचेज भी कोचिंग देने काम हमारा स्पोर्ट डायरेक्टरेट करता है। एसोसिएशन का काम है कि टूर्नामेंट का डेट आयोजित करना अपना, उनको ऑफिशियल देना, और टीम ले जाने के लिए अपना टीम मैनेजर और करते
1: टूर्नामेंट
0: हैं,
1: का टोटल आयोजन जो होता है वो उसको मैनेज करते हैं,
0: मैनेज
1: समायोजित करते
0: करते
1: हैं?
0: हैं, और जिसे जो स्टेट के हमारे जो एसोसिएशन है, जो भारत सरकार के फेडरेशन है, तो वो डेट के अनुसार वो समय से आयोजन कराना। और ये भी हुआ कि जब से खेल नीति आने के बाद समय से हमारे आयोजन भी हो रहा है, समय से टीम भी जा रही है, हर चीज है
1: तो चीजें शेड्यूल्ड हो गई हैं ना?
0: शेड्यूल्ड हो गई है। और उसमें हम लोगों ने शिक्षा विभाग में इन्वॉल्व कर दिया है,
1: अच्छा
0: और जिसे हमारे कोचेज विद्यालयों में जाकर ट्रेनिंग देते हैं कि जो
1: हाँ,
0: बच्चे।
1: मैं अभी इस प्रश्न पर आऊंगा कि जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम में स्कूलों को शामिल किया गया कि स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया जाए, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है, आप कैसे स्कूलों में खेल को बढ़ावा दे रहे हैं?
0: हमारे यहाँ जितने कोचेज हैं
1: हाँ
0: सभी गेम के अलग अलग कोच हैं, अलग
1: हाँ
0: अलग विद्यालयों में प्रत्येक मंथ कम से कम 2 दिन कम से कम किसी न किसी विद्यालय में जाएं, वहां जाके ट्रेनिंग तो नहीं दे, बेसिक
1: हाँ
0: चीज बताएं और खेल के बारे में कैसे कैसे आए, किससे आपका इससे भविष्य बन सकता है, वहां से आए, वहां अगर संसाधन है तो ठीक, नहीं तो
1: ठीक है
0: बच्चा स्टेडियम में आके भी प्रैक्टिस कर सकता है।
1: अच्छा
0: ये हम लोग पूरा जानकारी और

0: खेलो इंडिया की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं, और जो खेल विभाग की जानकारी उनको सब बताते हैं।
1: खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आपके यहाँ जो अभी पिछले साल की जो अचीवमेंट्स हुई हैं उसके बारे में कुछ बताइए। इस कार्यक्रम के तहत आपने जो
0: जी
1: तैयारियां करवाई, तो हाल ही में जो बच्चे सफलता प्राप्त किए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम या अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स अकेडमी या
0: जी
1: प्रयागराज की जो
0: जी
1: उपलब्धि रही
0: जी जी
1: उसके विषय में थोड़ा सा बताएं।
0: खेलो इंडिया में हमारे यहाँ प्रयागराज की उपलब्धि अच्छी रही है।
1: अच्छा
0: एथलेटिक्स में भी, वॉलीबॉल में भी यूपी की टीम विनर रही
1: अच्छा
0: अंडर 17 में। उसमें हमारे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स छात्रावास के कम से कम 5-6 बच्चे थे,
1: अच्छा
0: और हमारे एथलेटिक्स छात्रावास के 3 बच्चों ने खेला, जिसमें 2 का मेडल था, एक पार्टिसिपेशन था। और हमारे स्थानीय बच्चे, ये नहीं कि केवल छात्रावास के,
1: जी
0: स्थानीय बच्चे भी हमारे गए। हम लोग टोटल एथलेटिक्स में 9 बच्चे गए थे यहाँ से, प्रयागराज से। पिछले
1: अच्छा
0: वर्ष की जो हमारा खेलो इंडिया हुआ था चेन्नई में, उसमें काला कि सबका अच्छा अचीवमेंट रहा। पोल वॉल्ट में भी हमारा रिजल्ट रहा, और गेम में जिसे वेट लिफ्टिंग में भी एक बच्चा था।
1: देव प्रसाद जी, एक बड़ा आधारभूत प्रश्न है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग का खर्च वहन करने में उनको समस्या होती है, वित्तीय रूप से उतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है?
0: हमारे यहाँ इस समय एक एकलव्य क्रीड़ा कोष है, तो जो बच्चे स्टेट में मेडल दिए हैं या नेशनल खेले हैं, तो वो एक फार्म है, वो जनपद के प्रत्येक स्टेडियम में मिलता है। वो बच्चा लेकर भर के अपने सर्टिफिकेट, जो उसकी अचीवमेंट है, वो अपने संबंधित एसोसिएशन के प्रदेश सेक्रेटरी से उसको वेरीफाई करा के, उसको अपने जो भी जनपद है वहां के क्रीड़ा अधिकारी या क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से वो खेल निदेशालय जाते हैं। तो उस बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में उनको पोषण सामग्री या इक्विपमेंट से संबंधित जो भी है, सरकार उस लेवल के, जिस लेवल का खिलाड़ी,
1: आर्थिक
0: उसके हिसाब
1: सहायता।
0: से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो खेलने में बड़े अच्छे होते होंगे और पढ़ने में भी उनकी ठीक पकड़ होती होगी, ऐसे में माता पिता जो हैं उनके वो उतना सपोर्ट नहीं करते होंगे बच्चों को, और आप चाहते होंगे कि बच्चा खेले, तो ऐसे में कैसे आप उनके माता पिता को कन्विंस करते हैं या राजी करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े खेल के फील्ड में? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं
0: जी
1: वहां ये
0: जी
1: परंपरा है ना कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा IITian बने या बच्चा डॉक्टर बने या बच्चा IAS ऑफिसर प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन बहुत कम ही माता पिता होंगे जो बचपन से ही ये चाहते होंगे कि हमारा बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने।
0: जो गार्जियन है, हम तो उनको कहते हैं, हम कहे आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा बच्चा का लायक न बने, लेकिन कम से
1: अच्छा
0: कम उसको एक स्वस्थ नागरिक तो बनने दीजिए, जिससे समाज के लिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि वो नहीं कि पढ़ने में ही ठीक है, उसको साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ठीक है, दोनों तरफ पहलू से वो विकास कर सकता है। तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं।
1: हाँ
0: अब गार्जियंस हम लोग का रोज आते हैं कि सर हमारा बच्चे को किसी तरह मोटिवेट करिए स्पोर्ट्स की तरफ। आज के युग में जब से ये हमारा कोरोना काल से सभी बच्चे मोबाइल की ओर डाइवर्ट हो गए
1: हाँ
0: हैं, ये
1: मोबाइल
0: सबसे बड़ा गार्जियंस के ऊपर बहुत बड़ा है। सभी गार्जियंस इससे परेशान है कि बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाए।
1: अच्छा
0: स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग उनको अच्छी दिशा में ला सकते हैं।
1: ला सकते हैं। हमारे रेडियो के माध्यम से आप यूथ को अगर कोई संदेश देना चाहें।
0: हमारा आकाशवाणी के माध्यम से सभी गार्जियंस और खिलाड़ियों को, जो यूथ लेवल के बच्चे हैं, वो किसी न किसी, जो ग्रामीण लेवल पर है, युवा कल्याण विभाग के मिनी स्टेडियम वहां जुड़े, और जो शहरी क्षेत्र में है या जो आ सकते हैं स्टेडियम में, उनसे आप जुड़े। दोनों टाइम न तो कम से कम एक टाइम स्पोर्ट्स के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों को समय दें, और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वहीं अच्छा विकास करेगा देश के लिए, भविष्य के लिए।
1: जी देवीलाल जी, आपने हमसे बात की और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी लाभकारी जानकारियां दी। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और न सही एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में बल्कि अपने जीवन शैली में खेल को शामिल करके एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में जीवन यापन जरूर करेंगे। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत और फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई खेल नीति जारी होने के बाद हमारे आसपास प्रदेश और देश में खेल का परिदृश्य बदला है और नए उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो खेल से जुड़ रहे हैं, न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए, मेडल लाने के लिए, और एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा के साथ नए उम्र के बच्चे नए नए खेल को स्वीकार कर रहे हैं और सरकारी तौर पर उनको जो इन खेलों की आधारभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बच्चे हैं, एक आर्यदेव हैं जो पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं और नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, दूसरे हैं नवीन।

0: इन यादव जो शॉटपुट यानी कि गोला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले मैं आरदेव आपसे जानना चाहूंगा कि
1: जी
0: आप
1: सर।
0: थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहां से शुरुआत की आपने खेल की, वो समय कौन सा था जब आपको लगा कि आपको पोल वॉल्ट खेलना चाहिए, कहां से शुरुआत की?
1: मेरा नाम आरदेव, मेरे पापा किसान हैं तो मैं गांव में रहता था। तो गांव में एक विद्यालय था सर, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। तो मेरे गांव के कुछ लड़के जाते थे तो मैं उनके साथ देखने गया था कि क्या
0: अच्छा।
1: होता है, स्पोर्ट्स कैसे होता है। तो वहाँ सर पोलवार सिखाते थे तो मैं देखा, वो काफ़ी हाइट से जंप कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा सर। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं सीखूंगा इसको, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सर कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से। तो लॉकडाउन लगने के बाद मैं यहाँ चला आया रूम लेके प्रैक्टिस करने। तो कुछ दिन तक यहाँ रूम लेके प्रैक्टिस किया, उसके बाद हॉस्टल का ट्रायल आया सर।
0: जो आप मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में
1: जी
0: प्रैक्टिस करते
1: जी
0: हैं ना?
1: जी सर।
0: अच्छा
1: तो मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया तो
0: अच्छा
1: जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: अच्छा
1: तो सिलेक्शन होने के बाद हमको अच्छे कोच मिले हैं और हमारे सरकारी व्यवस्था अच्छी मिली है सारी चीज़ें, तो जिसमें रह के हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं सर।
0: हाँ,
1: हम नेशनल खेल चुके हैं, 4 नेशनल मेडल रह चुका है मेरा सर।
0: 2019 से आपने शुरुआत की और
1: जी
0: 6 वर्षों में आपके पास 4 नेशनल मेडल हैं।
1: जिसमें 2 साल रेस्ट हो गया था कोविड की वजह से, लॉकडाउन
0: अच्छा
1: था तो
0: अच्छा
1: उसमें कुछ नहीं किया, घर ही था सर।
0: अच्छा कुल
1: जी
0: मिला के 4 साल में 4 नेशनल मेडल है, बहुत
1: जी सर।
0: अच्छी सफलता है, या यूँ कहें कि आप प्रतिभाशाली हैं। अर्देव जरा ये बताइए कि जिस हॉस्टल में आप रहते हैं, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम के हॉस्टल में आप रहते हैं,
1: जी
0: तो आपका जो खर्च है एक रोजमर्रा आप एक के जीवन के लिए, जो हॉस्टल है
1: जी
0: वहां रहने का खर्च, खाने का और एजुकेशन का, ये सब खर्चे कैसे मैनेज होते हैं आपके?
1: जी मेरे सारे खर्चे गवर्नमेंट देती है,
0: अच्छा
1: वो चाहे स्कूल फीस हो या मेडिकल का हो
0: अच्छा
1: या स्पोर्ट्स डाइट का हो या रूम किराए, सब मेरे सरकारी व्यवस्था है सर।
0: सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती
1: जी
0: है।
1: सर।
0: क्या रूटीन होता है आपका जब आप सुबह सो के उठते हैं, उसके बाद से दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है आपकी?
1: सुबह उठ के सर वही सारी जरूरी प्रक्रिया करते हैं,
0: अच्छा
1: उसके बाद हमारा असेंबली होता है 6 बजे,
0: हाँ
1: फिर वहाँ से हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा 3 घंटे तक वर्कआउट चलता है सर।
0: अच्छा
1: फिर वहाँ से आते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें स्कूल जाना रहता है सर, वहाँ हम 3 घंटे क्लास करके आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं सर, फिर शाम को प्रैक्टिस करने जाते हैं सर, फिर वहाँ से आते हैं, जो हमारी डाइट प्रोटीन रहती है हम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करते हैं सर, फिर डिनर होता है, उसके बाद फिर सोते हैं, रेस्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: डेली का ही रूटीन है सर।
0: कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मन नहीं लगता होगा कि मूवी देख लेते हैं या खेलने का मन ना हो, तो उस दिन क्या कुछ गैप करते हैं या फिर आप मन को मार लेते हैं?
1: नहीं सर, ऐसा ख्याल तो आता है परंतु जब कंपटीशन पास में होते हैं तो ख्याल कंपटीशन के भी आ जाता है, जैसे मूवी का आया ख्याल, फिर जस्ट
0: हाँ
1: उसका कंपटीशन के भी। अगर मैं मूवी देखने गया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो कंपटीशन में मेरे कंपटीटर जो आएंगे बाहर से
0: हाँ
1: वो हमसे बेहतर कर जाएंगे, तो ये सब सोच के दूसरा मन दबा के रख लेते हैं सर और प्रैक्टिस पे चले जाते हैं।
0: शरीर को फिट रखने के लिए जैसा कि आपने बताया कि आप सुबह वर्कआउट करते ही हैं, खाने पर कितना ध्यान रहता है आपका? क्या क्या चीज़ें आप खाते हैं या क्या चीज़ें खाने से अवॉइड करते हैं कि इन चीज़ों को खाने से नुकसान होता है तो ये चीज़ें नहीं खानी है?
1: खाने में सर बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाएं, ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए
0: अच्छा
1: जी, ये मार्केट वाली चीज़ कुछ नहीं लेनी चाहिए हमें, जितना हरी सब्जियां, फल
0: हाँ
1: या प्रोटीन कुछ होते हैं सर, ऐसे
0: अच्छा,
1: अंडे, केले, ये सब डेली का
0: प्रॉपर
1: रूटीन।
0: डाइट आप फॉलो करते हैं खुद को
1: जी
0: फिट करने
1: प्रॉपर
0: के
1: डाइट
0: लिए?
1: हमें डेली का रूटीन है ना सर, वो
0: अच्छा
1: गवर्नमेंट देती है।
0: अच्छा
1: जी सर
0: तो उसका एक डाइटिशियन होता होगा जो आपकी डाइट डिसाइड
1: जी,
0: करता
1: पूरा
0: होगा,
1: मेन्यू होता है
0: पूरा
1: हमारा,
0: मेन्यू होता है आपका,
1: उसी के हिसाब से चलता है डेली
0: उसके
1: सर।
0: हिसाब से। अब जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हारने का डर लगता है?
1: हारने का डर सर बना रहता है, जैसे कंपटीशन के पहले बना रहता है, पर जब कंपटीटर सामने होते हैं तो ये होता है सर, अगर डरेंगे तो हार जाएंगे, तो
0: हाँ
1: डरना नहीं है, डर हटा के सर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं सर।
0: बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बाकी
1: जी
0: रिजल्ट
1: सर
0: जो होगा वो देखा
1: जी
0: जाएगा।
1: सर, डरेंगे तो फिर अगला वाला हम पे भावी रहेगा सर।
0: हमारे साथ बैठे हुए हैं नवीन यादव, जो शॉटपुट के प्लेयर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। नवीन जी, कैसे आपने डिसाइड किया या पहली बार आपने कब गोला फेंक की प्रैक्टिस की, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा।
2: मैं पहले पढ़ाई करता था अपने पापा के पास, मेरे पापा फौज में सर,
0: जी
2: जलंधर में पोस्टिंग है पंजाब। तो सर वहाँ पे स्कूल जब ओवर होता था सर, ग्राउंड की तरफ जाते थे तो वहाँ पे देखते थे काफ़ी जो फौज के जो रहते थे सर, वो प्रैक्टिस करते रहते थे वहाँ, तो देखता रहता था मैं, तो देखते थे, मैं भी सोचा यार मैं भी कर सकता हूँ। तो
0: अच्छा
2: मैं गया, भैया सर क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आओ देखो फेंको, फिर फेंके तो काफ़ी थोड़ा अच्छा गया, तो कहें कि हाँ तुम कर सकते हो।
0: अच्छा
2: तो उन्होंने काफ़ी 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करवाया, फिर स्कूलों में स्कूल गेम होते हैं
0: अच्छा
2: तो वहाँ से मैं पार्टिसिपेट किया स्कूल गेम में उसी इवेंट से।
0: अच्छा
2: तो सर वहाँ पे मेरा मेडल लग गया, मैं SGFI तक गया। तो सर वहाँ से फिर एक मन बन गया कि हाँ यही गेम खेलना है।
0: तो इलाहाबाद फिर कैसे आना हुआ?
2: उसके बाद लॉकडाउन लगा, दो साल का, तो फिर सर पढ़ाई तो वहीं स्टॉप होगी, अपने घर आ गए, फिर अब गांव में रहने लगे, फिर वहाँ कोई ऐसा कोच नहीं था कोचिंग देने वाला,
0: कोई प्रॉपर मतलब
2: गाइड करने वाला
0: नहीं,
2: पूछा कई लोगों से क्या

0: कहीं मतलब कि हमारे यहाँ स्टेट में यूपी में कहीं प्रैक्टिस करने के लिए है, तो उन्होंने बताया कि जाओ यहाँ हॉस्टल है अपना इलाहाबाद में प्रयागराज में,
1: अच्छा
0: इन सर के पास जाओ, देवी सर के पास, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आया पूछा, फिर बताया गया कि हॉस्टल वगैरह जैसे कैंप वगैरह मिलता है हम लोग को ट्रायल देने पे, तो सर वहीं ट्रायल दिए, हुआ सिलेक्शन, सर के पास आए।
1: आपका क्या रूटीन होता है, क्या शॉटपुट का अलग कुछ टेक्निक होती
0: हाँ
1: है?
0: सर, उसके लिए सर बॉडी वेट का जरूरी है।
1: अच्छा, आपका बॉडी वेट क्या कम होना चाहिए, ज्यादा?
0: नहीं, ज्यादा, जितना बॉडी वेट हो उतना कम है।
1: अच्छा, मतलब उतना जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा।
0: जी सर।
1: अच्छा
0: सर इसमें वेट ट्रेनिंग चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह चाहिए सर। इसके
1: अच्छा
0: वजह से ज्यादा से ज्यादा डाइट भी चाहिए इसके लिए। जो सर शॉटपुट रहता है 7.26 kg का होता है जी सर, उसको फेंका जाता है जितना हो सके।
1: कोई स्पेशल टेक्निक होती है उसको
0: हाँ
1: फेंकने
0: सर,
1: की,
0: इसके लिए
1: कैसे
0: एक
1: फेंकते हैं?
0: सर्कल होता है सर,
1: हाँ
0: उसमें सर उस डिस्को पट होता है सर्किल,
1: हाँ
0: वही सर गोल घूम के फेंकना पड़ता है उसमें,
1: कंधे के ऊपर
0: कंधे पे
1: रखकर।
0: रख के और सर्किल पे घूमना पड़ता है सर,
1: अच्छा,
0: उसके लिए टेक्निक होती है।
1: क्या रूटीन होता है, सुबह कितने बजे सो के उठते हैं और फिर दिन भर कैसे बीतता है आपका?
0: सुबह सर वही 5:30 बजे लगभग उठ जाते हैं,
1: हाँ
0: उसके बाद अपना सब कुछ करके नीचे उतरते हैं, 6 बजे असेंबली होती है अपनी।
1: हाँ
0: असेंबली करने के बाद वार्म अप वगैरह करके फिर कोच को रिपोर्ट करके
1: अच्छा
0: अपना ट्रेनिंग जो सर बताते हैं हमारे ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जब खत्म हो जाती है फिर रिपोर्ट लगाते हैं सर को, ऊपर जाते हैं अपना डाइट लेते हैं सर, डाइट लें, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर स्कूल जाया जाता है। हाँ सर, फिर स्कूल आने के बाद खाना वगैरह खा के फिर रेस्ट करके फिर शाम की ट्रेनिंग।
1: नवीन, डेली रूटीन से अलग क्या हफ्ते में कोई रेस्ट डे भी होता है आपका?
0: रेस्ट डे तो नहीं होता सर, जैसे वैसे काफी जब फ्राइडे सैटरडे आता है
1: हाँ
0: सर, उस दिन बॉडी एकदम थक जाती है
1: अच्छा,
0: शुरू का वर्कआउट करते करते
1: हाँ
0: सर, उस दिन एकदम बॉडी चलती ही नहीं है,
1: अच्छा,
0: फिर भी सर उसमें थोड़ा बहुत गैप कर लेते हैं वर्कआउट में।
1: कैसे मैनेज करते हैं आप पढ़ाई अपनी?
0: प्रैक्टिस के बाद जाते हैं जो 2-3 घंटे इस क्लास करते हैं।
1: अरदेव, जरा आप बताएं क्या है पोल वॉल्ट?
2: पोल वॉल्ट जो है सर एथलेटिक में सबसे टेक्निकल गेम है सर। जब हम रनवे पे खड़े होते हैं पोल लेकर सर,
1: हाँ
2: तो जब पोल को ऊपर टांगते हैं हवा में, तो जो हमारा पहला स्टेप निकालते हैं वहां से सर, तो वहीं से हमें टेक्निक यूज करनी पड़ती है। 16 स्ट्राइड होता है हमारा रनवे पे रनिंग का, तो हर एक स्टेप पे हमको टेक्निक सर देखना, कितने पे पोल डाउन करना है,
1: अच्छा
2: किस लेवल पे हमको प्लांट करना है सर। तो जैसे सर और गेम होते हैं तो ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो पोल वॉल्ट है सर ये हमें हवा में काम करना रहता है टेक्निक से। सब में तो आपको सर पता है कि हम जमीन पे कर लेंगे, पर पोल वॉल्ट डेंजरस है सर, हवा में सब कुछ करना रहता है, टेक्निकल गेम है सर, तो बहुत सारा टेक्निक होता है सर।
1: आप भी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं अपना?
2: सुबह प्रैक्टिस के बाद आते हैं, ब्रेकफास्ट स्कूल गए सर, फिर रेस्ट किए, फिर प्रैक्टिस किए, फिर शाम को आके डाइट लिए थोड़ा बहुत सर, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई कर लिए शाम को सर, फिर डिनर करके सो जाते हैं।
1: अरदेव, नवीन आपने अच्छी जानकारी दी, आपके अनुभवों से हमारे युवा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अब मुझे यानी सुंदरम तिवारी को आज्ञा दीजिए, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, वाचन संपादन एवं प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र पर तैयार किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शुभम वर्मा का तबला वादन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे झप ताल और रूपक ताल। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं झप ताल।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मारू बिहाग में ख्याल गायन। कलाकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खां। तबले पर इनके साथ संगत की है गुलाम साबिर ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग मारू बिहाग में ख्याल गायन। कलाकार थे उस्ताद इकबाल अहमद खां। तबले पर इनके साथ संगत की गुलाम साबिर ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों